मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो में प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र स्मिता। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी।

0: स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना का शुभारंभ करते हैं समूह स्वर में इस देशगान से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। वंदना में आइए अब सुनते हैं पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले का ये भक्ति रचना।

वंदना में अभी अब आपने सुना पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले का ये शिव भक्ति रचना। अब लीजिए सुनिए उषा अमोनकर और साथियों के स्वरों में ये भजन।

उषा अमोनकर और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। वंदना में आइए अब सुनते हैं साधना सरगम और साथियों के स्वरों में ये भजन।

0: इस भजन के साथ ही आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं, दूसरों के अस्तित्व को भी स्वीकार करें। इस विषय पर डॉक्टर सुरेश सम्राट के विचार।
1: अर्थ प्रधान मानसिकता और शॉर्टकट से आगे निकल जाने की होड़ ने हमारे जीवन मूल्यों को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। हम किसी भी कीमत पर स्वयं को तो स्वीकार कराना चाहते हैं, परंतु दूसरे को स्वीकृति देने का बड़प्पन हम खोते जा रहे हैं। दूसरे को स्वीकृति देने का बोध स्वयं की पराजय जैसा आवास क्यों देने लगा है? यही वर्तमान समाज में पनपने वाली सबसे बड़ी विसंगति है। यही आत्मपराजय का भाव व्यक्ति व्यक्ति को अलग कर रहा है और इसी ने दूसरे की सफलता से ईर्ष्या का भाव पैदा होने वाला बीज बोया है। तभी तो आज समाज में यह कहावत प्रचलित हो गई है कि अब व्यक्ति अपने दुख से उतना ज़्यादा दुखी नहीं होता जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है। ईर्ष्या और जलन की यह भावना इतनी बढ़ गई है कि ऊपर की हंसी के पीछे छिपी कुटिलता अब साफ साफ अनुभव की जाने लगी है और इसी कुटिलता ने परस्पर अस्वीकृति के भाव को समस्त समाज में संचारित कर रखा है। दूसरे की सफलता की अस्वीकृति के भाव ने समाज में एक ऐसी दौड़ को जन्म दिया है जिसमें शामिल होकर सभी दिशाहीन होकर दौड़े जा रहे हैं। वे भी जो स्वयं को सफल मान रहे हैं और वे भी जो सफलताओं को अस्वीकृत किए जा रहे हैं। एक लक्ष्यहीन और अनिश्चित दिशा में दौड़ने की इस प्रतिस्पर्धा पर चर्चा भी होने लगी है। जहाँ भी दो विचारवान लोग मिलते हैं और जब भी उन्हें जीवन मूल्यों पर सोचने का अवसर मिलता है तो वे इस पर चर्चा जरूर करते हैं कि हम किस दिशा में दौड़े जा रहे हैं। चर्चा के इस निष्कर्ष के नाम पर हम उसे केवल एक गोल घेरे की दौड़ भर कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी चर्चाओं का अंत भी अक्सर इसी वाक्य से होता है कि आखिर हम किस दिशा में दौड़े जा रहे हैं। यह तथ्य सहज ही स्पष्ट कर देता है कि वर्तमान में निश्चय ही किसी अस्वीकृत दौड़ की ऐसी प्रतिस्पर्धा का देशकाल चल रहा है जिसमें शामिल होना हमारी व्यवस्था हो गई है। दौड़ में शामिल होने का सीधा सीधा मतलब अपनी झूठी शान के लिए अधिक से अधिक साधन जुटाना और इसके लिए किसी भी रूप में कैसे भी आर्थिक समझौते कर लेना हमारी नियति बन गई है। हम जिस आर्थिक स्तर पर हैं जल्दी से जल्दी उससे ऊपर जाना चाहते हैं और फिर उससे ऊपर वाले आर्थिक स्तर पर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कदाचरण, समझौते और लेन देन जैसी अनेक बुराइयों को हंसते मुस्कराते गले लगाने में हिचक नहीं होती। आश्चर्य की बात यह है कि उच्च शिक्षित वर्ग और सामान्य रूप से धनाढ्य माना जाने वाला समाज भी इसमें पीछे नहीं है। अर्थ की महत्ता ने संबंधों में दीवार और झरोके बना दिए हैं। जीवन मूल्यों को धनलिप्सा का ऐसा आवरण पहना दिया गया है कि उसके बिना ये मूल्य थोते और अर्थहीन लगने लगते हैं और इसी अनुभूति ने

0: सामाजिक समरसता पर परस्पर अविश्वास का विष घोला है। लक्ष्यहीन है दौड़, अब अर्थ जगत से निकलकर यश प्रतिष्ठा और शौहरत की दिशा में भी व्यापक हो गई है। साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में यश और प्रतिष्ठा के लिए शाश्वत जीवन मूल्यों को किस तरह चुनौती दी जा रही है, अब यह कोई छुपी हुई बात नहीं रह गई है। खुद को बड़ा कहना और दूसरे को नीचे गिराने की संस्कृति, इन क्षेत्रों का अब सामान्य सा आचार व्यवहार हो गया है। अर्थ जगत की तुलना में इन क्षेत्रों में आई है बुराई ज़्यादा चिंतनीय है, क्योंकि यह बौद्धिक जगत का प्रतिनिधित्व करती है। समय की मांग है कि ऐसी मानसिकता में परिवर्तन होना चाहिए। हम ऐसी स्पर्धा से स्वयं को दूर रखें जिसमें स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को गिराने की दुर्भावना शामिल हो। हम तभी बड़े माने जाएंगे जब पूरा समाज बढ़ेगा, पूरा राष्ट्र बढ़ेगा, और यह परस्पर विश्वास और सम्मान से ही संभव है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत दूसरों के अस्तित्व को भी स्वीकारें, इस विषय पर डॉक्टर सुरेश सम्राट के विचार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज की सामयिक चर्चा का विषय है जल संग्रहण की आधुनिक विधियां। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह।
1: जल का संरक्षण वर्तमान की महती आवश्यकता है। हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध कुल 1384 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी में 97% पानी खारा है, जो कि समुद्रों में है एवं हमारे लिए अनुपयोगी है, एवं कुल 2.6% पानी पीने योग्य उपयोगी है। इसमें भूगर्भीय जल 0.58%, ध्रुवीय बर्फ के रूप में 2.01%, नदियों एवं झीलों में 0.016% शामिल है। भारत में पीने योग्य पानी का 77% भाग सिंचाई में, 4.6% भाग घरेलू उपयोग में, 12% उद्योगों में और 11.4% अन्य विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त हो रहा है। दिनों दिन बढ़ रही जनसंख्या एवं गिरते वनाच्छादित क्षेत्र से जल उपलब्धता का संकट हम सभी के सामने है। ऐसी स्थिति में हम सभी का दायित्व है कि जल का अपव्यय न करें एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूक हों। वर्षा जल का यदि हमने संरक्षण कर लिया तो एक ओर भूमि कटाव या मृदा अपरदन की समस्या का समाधान होगा, वहीं दूसरी ओर गिरते भू जल स्तर को सुधारने में हमें सफलता मिलेगी। ग्रामों में पानी रोकने और संग्रहण के लिए जो संरचनाएं बनाई जाती हैं उन्हें रिच टू वैली यानी ऊपर से नीचे के सिद्धांत पर कार्यान्वित करें। खेतों में भी जल संग्रहण किसान भाई कर सकते हैं। इसमें कुंडी का निर्माण, डबरी, डगआउट पॉन्ड का निर्माण और कुइया खेत तालाब योजना, इनका लाभ लेते हुए किसान भाई इन संरचनाओं का निर्माण अपने खेतों में कर सकते हैं। और खेत में ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो कि खेत के ढलान वाले स्थान पर हो, वहां पर खेत तालाब, कुंडी, डबरी इत्यादि का निर्माण करना चाहिए। इससे फसल को भी जल उपलब्धता सुनिश्चित होती है और साथ ही भूमि जल का संवर्धन भी होता है और जो हमारे ट्यूबवेल और कुएं जो सूख रहे हैं उनमें पानी का बहाव प्रारंभ होता है, पानी में अभिवृद्धि होती है। नदी नालों पर पानी रोकने वाली संरचनाओं का निर्माण भी किया जाता है, जिसमें नाला बंधान, बोरी बंधान, नाला वियर, मिट्टी बंधान, स्टॉप डैम, भूमिगत बंधान जैसे डाइक कहते हैं और चेक डैम, इनका निर्माण जो नदी नाले जो कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आते हैं, उस पानी को हम यूं ही बहने नहीं देते बल्कि उनको हम अवरुद्ध कर पानी को रोकने का प्रयास करते हैं। काफी सहायक संरचनाएं होती हैं। बोरी बंधान बहुत ही सस्ता आसानी से अपनाया जाने वाला संरचना है। इस संरचना में बोरियां होती हैं, प्लास्टिक की बोरी हो या जूट की बोरी हो, इसमें आप रेत इत्यादि को भरकर जहां पानी का बहाव है उसके अवरुद्ध एक दीवार की तरह नीचे से ऊपर की ओर आते हुए जमा दी जाती है। इससे पानी का बहाव अवरुद्ध होता है और नाले के ऊपरी भाग में पानी एकत्रित होने लग जाता है। इस पानी का उपयोग हम फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और साथ ही इसके बनने से पानी जो भरा रहता है उसकी वजह से भूमि का जल संवर्धन होता है। कृत्रिम जल भरण हेतु संरचनाएं भी आजकल हमारे क्षेत्रों में अपनाई जाना चाहिए। उनमें एक तो गर्त या कूपक विधि है, दूसरा खाई का निर्माण है, फिर नलकूप रिचार्ज और कुएं द्वारा जल भू जल रिचार्ज एवं सोखता गड्ढा, ये प्रमुख विधियां हैं जिनके माध्यम से हम कृत्रिम रूप से मृदा के अंदर या भूमि के अंदर जल का संवर्धन कर सकते हैं। और ऐसी जल संवर्धन संरचनाओं के बनने से हमारी भूमि में जल स्तर में सुधार होता है। कृत्रिम जल भरण संरचनाओं में कुओं में भूजल रिचार्ज, सोखता गड्ढा निर्माण

0: और नलकूप रिचार्ज अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जिन्हें ग्रामीणों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। कुओं में भूजल रिचार्ज के लिए वर्षा जल को मोड़कर कुएं के पास लाया जाता है। कुएं से लगभग 3 मीटर दूर जमीन में हम 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर तली में लगभग 1 मीटर मोटी बोल्डर की परत, उसके ऊपर बजरी 0.75 मीटर पौन मीटर के आसपास हम बजरी की परत लगाएंगे। उसके बाद रेत की परत 0.6 मीटर बिछाई जाती है। इससे छने हुए वर्षा जल को गड्ढे की तली से एक पाइप की मदद से कुएं के अंदर प्रवेश कराकर पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार यह जल भूजल भंडारों को संबोधित करता है। एक और तकनीक है नलकूप रिचार्ज। इसके लिए नलकूप के चारों ओर 27 घन मीटर या सुविधाजनक अन्य साइज का गड्ढा बनाया जाता है। इसमें नारियल रस्सी लिपटा छिद्रित केसिंग पाइप डालकर उसके चारों ओर नीचे से ऊपर क्रमशः बोल्डर या पेबल और बजरी एवं उसके बाद रेत बिछाई जाती है, जिससे वर्षा जल का रिसाव फिल्टर होने के बाद आसानी से होता है व भू जल की वृद्धि होती है। आओ हम सब मिलकर करें जतन, क्योंकि जल है अनमोल रतन।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की सामयिक चर्चा का विषय था जल संग्रहण की आधुनिक विधियां। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
4: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो, और जो तो वही गीत है जाके हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजाते थे, और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में सुनवाऊ थी।
5: हाँ, खूब ही सही चीज ना तुमने, जो वही लोक गीत है, और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
4: काय ऐसो का होगा जिज्जी,
5: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते
6: हैं। ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
7: अथ वार्ताः। संसदः प्रावृट् सत्रम् अद्यारभ्य अगस्तमासस्य 13 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति। 25 दिनानां सत्रेऽस्मिन् 21 उपवेशनानि भविष्यन्ति। सत्रे अनेकानि महत्वपूर्णानि विधेयकानि चर्चायै अंगीकरणाय च उपस्थापितानि भविष्यन्ति इत्यपेक्षते। अद्य लोकसभायां सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या संशोधन विधेयकं 20-26, राज्यसभायां च

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज़्यादा नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर

0: अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्रवाई को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इन तीनों देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मॉल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। स्पेन ने अतिरिक्त समय में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में यह खिताब जीता था और इस जीत के साथ ही स्पेन एक समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 पर आप सुन सकेंगे अमित शर्मा उपमन्यु से काव्य पाठ। 7:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 8:30 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे वैशाली मोघे के गाए कुछ भक्ति गीत। सुबह 9:00 आप सुनते हैं सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 पर आप आनंद ले सकेंगे शास्त्रीय संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे शावनी सिंडे का गायन। राग होगा नट भैरव, आपके साथ तबला पर संगत करेंगे नफीस अहमद। 10:05 पर आप आनंद लेंगे अपने ही पसंद की फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। सुबह 11:00 से रात 11:00 तक सभी कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। हमारे शाम की सभा आरंभ होगी 5:00 युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी से। ये कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 5:33 पर, 6:30 पर और 8:30 पर। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे 6:00। 7:20 पर हमारे श्रोता साथी सुनते हैं अपना कार्यक्रम चौपाल। ये कार्यक्रम हमारे ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होगी। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस, विश्व शतरंज दिवस और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। साथ ही आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवाया जाएगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। 9:30 पर आप सुन सकेंगे अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 10:00 आप सुनेंगे संसद के मानसून सत्र 2026 के अंतर्गत संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाइयों का प्रसारण। 10:30 पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम राग रंजनी का। श्रोताओं, ये थे हमारी दोनों ही सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को दी बधाई। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू, 24 जुलाई तक चलेगा। अब तक कुल 1756 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त। प्रदेश में समान नागरिक संहिता की दिशा में बड़ा कदम, कैबिनेट ने यूजीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को दी मंजूरी, आज विधानसभा में होगा पेश। और मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 90% हिस्से में अगले 4 दिन हल्की बारिश का जताया अनुमान, दमोह मंडला और डिंडौरी में आज भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में भारत का यह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम की काबिलियत और विज्ञान के प्रति जुनून ने देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने लिथुआनिया में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में पदक जीतने वाली भारतीय टीम को भी बधाई दी। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कल विधानसभा पहुंचकर सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सत्र के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद अब तक कुल 1756 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल की भी कई सूचनाएं मिली हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूजीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल के पास जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूजीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। अब ये विधेयक आज से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। यूजीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,
1: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। जो उत्तराधिकारी आमतौर पे होते हैं, इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी। और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश के 10,54,000 किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। ये राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ट्रांसफर की गई। कृषि मंत्री इंदल सिंह कंशाना ने बताया कि प्रदेश में 2016 से 2025 तक फसल बीमा योजना के तहत करीब 30,942 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल झाबुआ में बलराम कृषि महोत्सव के तहत किसानों से ऑनलाइन चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को 3,00,000 रुपए तक का कृषि ऋण 0% ब्याज पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि झाबुआ जिले में करीब 3,125 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले का कड़कनाथ मुर्गा और टमाटर देश भर में पहचान बना रहे हैं। ये महोत्सव अब अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी आयोजित होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बैतूल जिले में महिलाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिले के 12 क्लस्टर लेवल फेडरेशन और खेती ऑर्गेनाइजेशन के बीच 4 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन हुआ है। इससे 300 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं जुड़ेंगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं बैतूल से हमारे संवाददाता मयंक भार्गव। पेश एक रिपोर्ट।
3: बैतूल जिले की 300 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्राकृतिक खेती के जरिए आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े की मौजूदगी में 12 क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF और खेती ऑर्गेनाइजेशन के बीच करीब 4 करोड़ का MOU हुआ है। परियोजना के

0: तहत महिलाओं के यहाँ नेट शेड स्थापित किए जाएंगे, जहाँ वे साल भर सब्जियां और अन्य उद्यान की फसलों का उत्पादन कर सकेंगी। कलेक्टर ने कहा कि परियोजना जिले में महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं संस्थानों से समन्वित रूप से कार्य करने और कार्यक्रम को प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जीवन ज्योति CLF की सचिव दीदी राधिका भगत ने बताया कि इस योजना से दीदियों की आय बढ़ेगी।
1: जो फसल अपन लगाते हैं उसमें इल्लिया, कीटनाशक, सारी प्रकार की बीमारियां होती है। सेटनेट में यह बीमारियां नहीं होती और फसल सुरक्षित रहती है, जिससे दीदियां अच्छी आय अर्जित कर सकती है। अब इसी प्रकार की प्राकृतिक खेती करके अपना परिवार को स्वच्छ और सुरक्षित रख सकती है।
0: बैतूल से मयंक भार्गव।
2: प्रदेश पुलिस ने बीते 6 दिनों में संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 70 लाख रुपए से अधिक की चोरी की गई संपत्ति बरामद कर 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुना पुलिस ने चेन चोरी के 8 मामलों का खुलासा कर 3 अंतर्राज्यीय गिरोहों के 13 आरोपियों को पकड़ा। वहीं भोपाल GRP ने ट्रेनों में चोरी करने वाले गैंग के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिवपुरी, बड़वानी, सीहोर और खरगोन में भी पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। बैतूल जिले से मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत कल करीब 260 श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने बुजुर्ग यात्रियों का स्वागत कर हरी झंडी दिखाई। प्रदेश की पन्ना टाइगर रिजर्व में कल एक 4 वर्षीय बाघ की मौत हो गई। बाघ का शव किशनगढ़ कोर क्षेत्र के ब्रजपुरा वन परिक्षेत्र में मिला है। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। उप संचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि बाघ के शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट नहीं मिली है, इसलिए प्रथम दृष्टया यह प्राकृतिक मौत लग रही है। पन्ना जिले की मझगवा हीरा खदान से एक बड़ा हीरा मिला है। ये हीरा 13.16 कैरेट का है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। वर्ष 2024 में खदान का संचालन दोबारा शुरू होने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। टैलेंट सर्च अभियान के तहत एथलेटिक्स के चयन ट्रायल्स आज से 22 जुलाई तक भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में होंगे। इसमें बालक और बालिका दोनों वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश के करीब 90% हिस्से में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। इस दौरान 4 से 5 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आज दमोह, मंडला, डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि भोपाल, इंदौर सहित 47 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए 3रे वनडे मैच में भारत को 27 रनों से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहली बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 388 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने शतक लगाया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव आज और कल 2 दिवसीय शिवपुरी प्रवास पर आएंगे। इस दौरान वे जनप्रतिनिधियों और आमजन से बातचीत करेंगे। बालाघाट में जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर ने हाल ही में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की शालाओं, छात्रावासों और आश्रमों का औचक निरीक्षण किया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत खंडवा जिले में ऑटो रैली, पोस्टर अभियान, नुक्कड़ नाटक, छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। वहीं मंडला जिले की बिछिया पुलिस ने अवैध गांजे की खेती का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डिंडौरी में आकांक्षी विकासखंड महेंद्रवानी के ग्राम सारसटोली में पशु चिकित्सा शिविर और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जबलपुर में केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए 314.18 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित पर्यटन क्विज 2026 की जिला स्तरीय प्रतियोगिता 7 अगस्त को शहर के एक्सलेंस स्कूल में आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: 4.5 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:20 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए अमित शर्मा उपमन्यु से काव्य पाठ।
1: पहली कविता का शीर्षक है नई राह। कभी हवा से भी हल्का लगता है प्रेम, रंग बन सवार होता है तितली पर, चुन लिया जाता है गुलाब से शहद की तरह, बनता है बाग के फूलों में और इत्र सा महकता है सांसों में हम दोनों की। कभी समंदर से भी भारी होता है, तले में बैठता चला जाता है, सूरज सा जलता है फलक पर, धरती को भी जलाता है, रेत सा खटकता है आँखों में हम दोनों की। ऐसे ही एक भारी दिन व्यथित हो मैं अपना थैला उठाता हूँ और तुमसे दूर चला जाता हूँ। जीवन में शांति खोजता मैं एक पेड़ के नीचे पहुँचता हूँ, एक सेब मेरे सर पर गिरता है और मुझे न्यूटन याद आता है। वक्त के साथ जोड़ और मजबूत न हो तो प्रेम शाख से टूट जाता है। जीवन में संतुलन खोजता मैं समंदर किनारे पहुंचता हूँ, वहाँ आर्किमिडीज को बैठा पाता हूँ, वह मुझे अपनी खोज सुनाता है। जब प्रेम के ऊपर लगाया जाने वाला बल उसके नीचे की सतह से भारी हो जाता है, प्रेम अतल गहराई में हमेशा के लिए खो जाता है। जीवन में आदर्श खोजता मैं आगे बढ़ता हूँ, रास्ते किनारे बॉयल, चार्ल्स और गे लुसाक अपनी अपनी खोज सुना रहे हैं और आदर्श गैस की खूबियां बता रहे हैं। मैं चाव से सुनता जाता हूँ। अंत में वे सामूहिक घोषणा करते हैं, असली जिंदगी में कोई भी गैस आदर्श नहीं होती। मैं भौचक्का रह जाता हूँ। पीछे के जंगल से डार्विन की आवाज़ गूंजती है, बदलो या नष्ट हो जाओ। मैं गहरी सोच में पड़ जाता हूँ। पुराना थैला बाहर ही छोड़ मैं नई राह से घर लौट आता हूँ। सत्य के दांत नहीं होते, सत्य कभी मरता नहीं, विलंबित हो जाता है भीष्म की काल चयनित मृत्यु की तरह, अबूझ हो जाता है मकड़ी के जाले की तरह, धुंधला जाता है किसी मोतियाबिंदी आँख की तरह, पर मरता नहीं, बस एक अधमरे सांप की तरह रेंग कर किसी ओट में छुप जाता है फिर से बाहर आने को, एक भौंडे वक्त पर अनचाही आँखों के सामने किसी पुराने प्रेम पत्र की तरह। सत्य कभी मरता नहीं, अन्यायी उसे दौड़ा सकते हैं थका नहीं, कोड़े दे सकते हैं जख्म नहीं, रुसवाई दे सकते हैं फांसी नहीं, क्योंकि सत्य के पैर नहीं होते, पीठ नहीं होती, गला भी नहीं। सत्य की ओट में स्वर्ण मृग के छलावे, अश्वत्थामा हतह की अति मंद ध्वनियाँ और विकास के मानचित्रों की अट्टालिकाएँ छुपी हो सकती हैं। कभी इसे सुन के भी अनसुना कर दिया जाता है उस अभागन स्त्री सा जिसे भोगते सब हैं, स्वीकार कोई नहीं करता। जब इसका गर्वोन्मत्त गरल वमन किया जाता है और नहीं होता कोई महावीर नीलकंठ इसे स्वीकार करने, तो वो भटकता है कुछ क्षण के लिए धरा पर और फिर ऊपर उठने लगता है। सत्य बहुत हल्का होता है, उसके हृदय में पाप नहीं होता। वो उठते उठते पृथ्वी की सीमा से बाहर जा ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है विश्वात्मा। जब अंतरिक्ष यात्री जाएंगे ब्रह्मांड में तो वह उन्हें गूंजता सुनाई देगा वहाँ, शब्दशः वैसा ही जैसा ठुकराया गया था, बिना वायु भी, क्योंकि सत्य के फेफड़े नहीं होते। आश्चर्य है सत्य क्यों काटने दौड़ता है सबको,

बावजूद इसके कि सत्य के दांत नहीं होते। प्रश्नों के अर्थ पर, तुम अपना अर्थ बूंद बूंद गिराना धरती पर, धारा तो खाली कर देती क्षण भर। मेरा आधा अर्थ है मिट्टी में, आधा किसी बादल के अंदर। वो बरसेगा सावन भादों और फूटेगा फूल पत्ती अंगूर सेब अनार में, रंग महक रस शिल्प में, और लेगा नया अर्थ रक्त बन कहीं कहीं, तय करेगा सागर की दूरी जहां और भी अर्थ आते होंगे, और फिर वे सब मिल रचेंगे एक नया अर्थ। पर प्रश्न रहते हैं शाश्वत, रहेंगे शाश्वत, बस बदलते रहेंगे उत्तर। हाथ से डोर छूटते ही गुब्बारे चल देते हैं अपनी यात्रा पर अनंत की ओर। मैं देखता रहता हूं उनको बढ़ता हुआ मेरी विस्मृति की ओर। कुछ शब्द समंदर में बहाई गई बोतल बंद पहचानों की तरह धीरे धीरे जबानों से दूर चले जाते हैं। आखिरी बचे कुछ सौ लोगों के साथ एक भाषा चुपचाप बैठी घूरती रहती है अपनी कुछ सौ कदम दूर खड़ी मौत को। टीबी की डूबती खांसी, कैंसर के बुझते चेहरे भी किसी क्रॉसवर्ड पहेली की तरह बस एक तारीख की ओर इशारा करते हैं। पर कई लोग बस यूं ही कहीं चले जाते हैं एकदम, और फिर खंजर की तरह कलेजे में बार बार उतरते हैं उनकी नेम प्लेट के कोने, उनके फ़ोन नंबर के सारे विषम अंक और फोटो में उनकी खिलखिलाती आंखें। जो बच्चे निकले थे सुबह स्कूल या खेल के मैदान के लिए, अगर वे लौटते नहीं गोधूली तक भी, उसके बाद भी नहीं, कभी भी नहीं, तो उन घरों में क्षितिज पर ही टंगा रहता है सूरज हमेशा के लिए, एक पवित्र सवालिया निशान की तरह। टूटते सितारों से भरी आकाश गंगा के एक ध्रुव तारे को सहेजे रहती हैं दो पनीली आंखें। गति के नियम इस कविता का एक भाग है। यह साथ चलने का नुकसान है, तुम मुझे अब मुड़कर नहीं देख सकती, तुम्हारी नर्म हथेलियों की नमी में भींज जाता हूं, हाथों की रेखाएं जुड़कर ठहरी झील की सतह पर कमसिन लहरों सी मुस्कुराती हैं। पीछे मुड़कर ढूंढती थी तो आंखों में फिक्र का तूफान होता था, जैसे कुछ खो गया हो तुम्हारा। मुड़कर देखती और हमारी नजरें मिल जाती तो एक मुस्कुराहट होती थी होठों पर मामूली सी, जैसे फिर से पा लिया तुमने मुझे और यह बात मुझ तक न पहुंचे। खोना और पाना मसला नहीं है दरअसल, मुड़ना अधूरेपन का एहसास था एक दूजे बिन। वह एहसास जरूरी है हथेलियों को नर्म और मुलायम रखने के लिए। कभी रह जाना पीछे भी बुरा नहीं, साथ चलने का हुनर कायम रखने के लिए। धूप का धर्म, ओस की बूंद सी झर जाती है रात सुबह की घास पर, चिड़ियों में चहचहाने लगता है भोर का पवित्र रंग, रात की सारी खुशबुएं घुल जाती हैं सिरहाने पड़े बालों में, बिस्तर छोड़ देते हैं उनींदे सपने मेरी आँख खुलने से पहले, सलवटों में उलझ

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अमित शर्मा उपमन्यु से काव्य पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त स्मिता।

दोस्तों, कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ ऐसे गीत जो आधारित है चांद पर। आपको ज्ञात हो कि आज है अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस, और आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं उसी खूबसूरत हमसफर के नाम, जिसने सदियों से कवियों की कल्पना को उड़ान दी, प्रेमियों के दिल की धड़कनें बढ़ाई और अनगिनत अदाकारों की लेखनी को अनगिनत अमर गीत दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चांद की। चांद जो कभी महबूब के चेहरे की चमक बन जाता है और कभी किसी के इंतज़ार का साथी, तो कभी दिल की अनकही भावनाओं का मौन साक्षी। आइए इसे दिलकश एहसास के साथ शुरू करते हैं आज की संगीतमयी महफिल। किसी की खूबसूरती की तारीफ अगर करनी है दोस्तों, तो उसे बेहतर उपमा भला क्या ही होगी जब उसे चौदहवीं के चांद की तुलना की जाए। इसी ख्याल को बेहद नफासत और मोहब्बत से सजाया गया है, और हमारे पहले गीत में आइए सुनते हैं इसी अंदाज़ को।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म चौदहवीं के चांद का ये प्यारा सा गीत। शब्द, संगीत और गायकी का ऐसा संगम जो हर बार दिल को नई ताजगी से भर देता है। ऐसे गीत कभी पुराने नहीं होते दोस्तों, क्योंकि इनमें बसती है सच्ची मोहब्बत की खुशबू। अब पेश है एक और सदाबहार नगमा, जिसमें चांद केवल आसमां का नहीं बल्कि किसी के दिल की धड़कन बन जाता है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वरों में फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये गीत।

0: श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अनाड़ी से। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और आवाज लता मंगेशकर की है।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
5: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
4: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
5: कार नहीं तो

0: फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
2: RBI कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: दोस्तों, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चांद की अपनी एक अलग ही चाल है दोस्तों, कभी धीमा शांत और कभी मन को सुकून देने वाली। इस सौम्यता के प्रतीक चांद को स्वर दिया है अगले गीत में। आइए सुनते हैं फिल्म अनाड़ी का ये गीत, जिसे अपने मधुर स्वरों से सजाया है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे चांद, तारे और हवाएं भी प्रेम की इस कहानी में शामिल होकर मुस्कुरा रहे हों। और दोस्तों, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा चेहरा ज़रूर होता है जिसे देखकर चांद भी अपनी चमक पर इतराना छोड़ दे। इसी भाव को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में व्यक्त करता है हमारा आज का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कश्मीर की कली से। आइए सुनते हैं इस गीत को मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आकाशवाणी ग्वालियर आपकी सेवा में है।

0: प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: श्रोताओं, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत पल वह होता है जब बरसों की तलाश पूरी हो जाए और दिल कह उठे जिसे ढूंढ रहे थे वह मिल गया। उस अनमोल एहसास को बेहद मधुर शब्दों और सुरों से पिरोया गया है इस अगले गीत में। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म आशिक से। आवाज़ कुमार सानू की है।

आज के इस संगीतमयी महफिल के अंतिम गीत की। प्यार में किए गए वादे और अपने प्रिय के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा हिंदी फिल्मी गीतों की सबसे बड़ी पहचान रहा है। जब दिल सच्चा हो तो चांद और तारे भी दूर नहीं लगते, इसी खूबसूरत कल्पना को साकार करता है हमारा आज का अगला गीत। आइए सुनते हैं, इस गीत को हमने लिया है फिल्म यस बॉस से। जय जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने, आवाज़ अभिजीत की है।

इन्हीं मधुर सदाबहार और दिलकश गीतों के साथ चांद की चांदनी में सजी हमारी आज की ये संगीत यात्रा यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा।
4: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में UCC विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
5: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
4: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्डोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्डोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
4: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
5: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है।

0: टॉक न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाऊ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस टुडे। गवर्नमेंट सीक्स कोऑपरेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill, tribal communities to be kept outside its purview. flash floods and landslides claim

0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं वैशाली मोगे के गाए कुछ भक्ति गीत। फिलहाल अब समय है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद फिर लौटेंगे कुछ संत वाणियों के इसी मधुर और आध्यात्मिक सफर के साथ।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं भक्ति की एक अविरल धारा। अब हमें राम नाम की महिमा का स्मरण कराएगी और अब हम सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की ये काव्य रचना वैशाली मोगे की आवाज़ में।

संत कबीरदास जी ने अपने दोहों और पदों के माध्यम से सत्य गुरु और आत्मज्ञान का संदेश जन जन तक पहुंचाया। आइए सुनते हैं इन्हीं की कालजयी रचना वैशाली मोगे की आवाज़ में।

भक्ति की इस यात्रा का अंतिम पड़ाव हमें भगवान शिव जी की आराधना तक ले जाता है। इसी भावना के साथ प्रस्तुत है संत ब्रह्मानंद जी की ये भक्ति रचना वैशाली मोगी की आवाज़ में।

इन्हीं मधुर और आध्यात्मिक सुरों के साथ आज का ये सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 98वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कल विधानसभा पहुंचकर सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल के पास जगदीशपुर में कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के 10,54,000 किसानों के खातों में 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। बैतूल जिले में मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत कल करीब 260 श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने बुजुर्ग यात्रियों का स्वागत कर हरी झंडी दिखाई। प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में कल एक 4 वर्षीय बाघ की मौत हो गई। बाघ का शव किशनगढ़ कोर क्षेत्र के ब्रजपुरा वन परिक्षेत्र में मिला। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रदेश के करीब 90% हिस्से में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। इस दौरान 4 से 5 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। और पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए 3रे वनडे मैच में भारत को 27 रनों से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

सूचनाओं, समाचारों और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं आपकी दोस्त स्मिता। दोस्तों, आज की ये जो सुनहरी दिन की शुरुआत है, इस शुरुआत में हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई सफलताओं का संदेश लेकर आए और आज का दिन खुशियों, उत्साह और सकारात्मक सोच से भरपूर हो। आज के

कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज की ही तारीख से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में। आज की तारीख यानी 20 जुलाई और आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस और विश्व शतरंज दिवस। इन दोनों ही दिवसों के बारे में कुछ जानकारियां लेकर हम आए हैं आपके साथ। दोस्तों, एक ऐसा दिन जो मानव की जिज्ञासा, साहस और वैज्ञानिक उपलब्धि का प्रतीक है, वो है 20 जुलाई। आकाश में चमकता चांद सदियों से कवियों की कल्पना, प्रेमियों की भावनाओं और वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी चांद ने मानव को किस तरह से ऊंचाई दी और मानव इतिहास का एक ऐसा अध्याय भी लिखा जिसने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में हर वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें वर्ष 1969 के उस गौरवशाली पल की याद दिलाता है जब अपोलो 11 मिशन के माध्यम से नील आर्मस्ट्रांग और ब्रिज अल्ड्रिन पहली बार चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे। आइए अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस का इतिहास, महत्व और चांद से जुड़ी कुछ बेहद रोचक जानकारियां। दोस्तों, चांद केवल रात का उजाला नहीं बल्कि मानव के साहस, जिज्ञासा और सपनों की उड़ान का प्रतीक है। हर वर्ष हम आज की ही तारीख को ये दिवस मनाते हैं। इस दिन मानव इतिहास का वो यादगार उपलब्धि हम याद करते हैं जब 20 जुलाई को ये नासा के अपोलो 11 मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष यात्री पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतरे थे और वो ऐतिहासिक शब्द आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करता है। ये शब्द नील आर्मस्ट्रांग के थे। यह एक व्यक्ति का छोटा सा कदम है लेकिन मानवता की बहुत बड़ी छलांग है। वाकई में ये जो शब्द थे इसमें काफ़ी एक वजन भरा है। जैसे आप देखिए ना, एक छोटी सी उपलब्धि, एक छोटा सा कदम ही नहीं, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी हम मानव के लिए। चांद पर पहुंचने की बात जो कभी हम सोच नहीं सकते थे उसे साकार भी करके दिखाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 में इस दिन को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस घोषित किया ताकि अंतरिक्ष विज्ञान, अनुसंधान और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। अब आइए जानते हैं चांद से जुड़ी कुछ रोचक बातें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद पर जो गुरुत्वाकर्षण है यानी ग्रेविटी फोर्स की अगर बात की जाए तो चांद पर ग्रेविटी पृथ्वी के ग्रेविटी का 1/6 भाग है। मतलब अगर हम एक छलांग यहाँ पृथ्वी पर लगाएं तो अनुमान लगाइए कि इसलिए वहाँ की जो ग्रेविटी है उसकी तुलना में लगभग 6 गुना ऊंची छलांग हम चांद पर लगा सकते हैं। और चांद का वातावरण यानी वहाँ का एटमॉस्फेयर भी यहाँ के बराबर नहीं है, इसलिए वहाँ ना हवा चलती है, ना बारिश होती है और ना ही आवाज़ सुनाई देती है। और चंद्रमा पर छोड़े गए अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के निशान लाखों वर्षों तक वैसे ही बने रहते हैं क्योंकि यहाँ निशान मिटाने के लिए ना तो हवा है ना तो पानी। दोस्तों, चांद हर वर्ष पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। हमारे साहित्य, संगीत और कविता में भी चांद का विषय बड़ा विशेष स्थान रखता है और कभी यह बहुत सारी भावनाओं को लेकर, बहुत सारी कल्पनाओं को लेकर और सौंदर्यता के साथ हम सभी में रचा बसा है। लेकिन विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि जिस चांद को हम सदियों तक दूर से निहारते रहे वहाँ तक पहुँचने का सपना भी साकार किया जा सकता है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस पर हम भी ये संकल्प लें कि जिज्ञासा, विज्ञान और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाएंगे और अपने सपनों को भी चांद जितनी

ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करेंगे। इसी संदेश के साथ सुनते हैं ये मधुर गीत, जिसमें चांद की खूबसूरती और प्रेम की मिठास दोनों ही समाई है।

श्रोताओं कहते हैं कि हर चाल सोच समझ कर चलिए, क्योंकि जीवन भी शतरंज की बिसात की तरह है, जहां धैर्य, बुद्धिमता और सही निर्णय ही सफलता की राह बनाते हैं। ऐसे ही विचार के साथ आज का जो हम विषय आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है विश्व शतरंज दिवस। तो शतरंज दिवस के लिए आज का दिन बड़ा ख़ास है, क्योंकि हर वर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है और यह दिन 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने इसे 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। दोस्तों, शतरंज केवल एक खेल नहीं बल्कि धैर्य, दूरदर्शिता, रणनीति और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम है। ये खेल हमें ये सिखाता है कि जीवन में हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि एक सही चाल हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। आज जब विश्व भर में स्कूलों, खेलों, संस्थाओं और शतरंज क्लबों द्वारा कुछ प्रतियोगिताएं, कुछ कार्यशालाएं और कुछ ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से इस दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य यही है कि हम रणनीति, राजनीति की सोच, शिक्षा, रचनात्मकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो आइए इस विश्व शतरंज दिवस पर हम भी संकल्प लें कि जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य, विवेक और सकारात्मक सोच के साथ करेंगे। दोस्तों, शतरंज हमें सिखाता है कि हमें हर चाल के पीछे कुछ आशाएं भी रखनी चाहिए। जो हम ये चालें चलते हैं शतरंज के खेल में, इसी तरह से जीवन में भी कई बार हमें कई तरह के कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना हमें इस खेल के माध्यम से भरपूर सीख लेना चाहिए, क्योंकि यही सकारात्मक सोच जीत के जज्बे को और मजबूत करती है। तो आइए सुनते हैं एक गीत फिलहाल इस कार्यक्रम में।

0: श्रोताओं, अब वक्त है एक छोटे से विराम का, तो आइए सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त स्मिता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन असाधारण व्यक्तित्वों की जिन्होंने अपने समर्पण, परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से न केवल हमारे मध्य प्रदेश

0: बल्कि पूरे भारत का मान बढ़ाया है। अवसर है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों का, जिसमें मध्य प्रदेश की 4 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया है। श्रोताओं, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में गिने जाते हैं और हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ये सम्मान उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान और चिकित्सा, समाज सेवा, खेल, उद्योग, पर्यावरण, पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देकर समाज और राष्ट्र के जीवन को समृद्ध बनाया हो। और वर्ष 2026 में हमारे मध्य प्रदेश के लिए यह गौरव का विषय रहा है कि राज्य की 4 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। इस वर्ष से किसी भी व्यक्ति को पद्मभूषण, लेकिन पद्मश्री प्राप्त इस महान व्यक्तित्व को उपलब्धियां और आप को हम शेयर करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं भोपाल के श्री कैलाश चंद्र पंत की। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान दशकों से प्रेरणा स्रोत रहा है। वे एक प्रतिष्ठित पत्रकार, लेखक और चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में जागरूकता, संस्कृति, चेतना और मानवीय मूल्यों का ये जो धारणा है वो सशक्त किया। शिक्षा और साहित्य के प्रति उनका जो समर्पण है वो नई पीढ़ियों के लिए एक नया आदर्श है। पद्मश्री सम्मान उनके लंबे और सार्थक योगदान का राष्ट्रीय सम्मान है। दोस्तों, अब बात करते हैं बैतूल के श्री मोहन नागर की, जिन्होंने बहुत ही नेक काम किया और उन्हें वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। वाटरमैन से आपको समझ में आ गया होगा कि हम बात करेंगे कुछ जन सेवा के साथ जुड़े जल संरक्षण की। जी हाँ, उन्होंने जल संरक्षण को केवल एक अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया। वर्षों तक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को वर्षा संचयन, भू जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए प्रेरित किया। उनके अथक प्रयासों से अनेक गांवों में सूखे तालाब फिर से लबालब हो गए, कुएं फिर से जीवित हो गए और लोगों के जीवन में नई उम्मीद भी जागी। आज जब पूरी दुनिया जल संकट की चुनौती से जूझ रही है तो ऐसे में उनका कार्य और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम ऐसे वाटरमैन को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम कैलाश चंद्र जी पंत को भी बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि नए उन्होंने एक ऊर्जा स्थापित की नई पीढ़ी में। फिलहाल हम बात करेंगे और भी कुछ महान विभूतियों की जो हमारे मध्य प्रदेश से ही जुड़े हैं और सम्मानित हैं पद्मश्री अवार्ड से। फिलहाल कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अब बात करते हैं एक और शख्सियत की। वैसे आप जानते ही होंगे कि हमारी संस्कृति केवल पुस्तकों और स्मारकों में नहीं बल्कि हमारी लोक परंपराओं में भी जीवित है। हमारी लोक गीतों में, हमारी लोक संस्कार में, हमारे आसपास की जो माहौल है उसमें लोक संस्कृति रची बसी हुई है। ऐसे ही एक महान परंपरा के संरक्षक थे सागर के स्वर्गीय श्री भगवान दास रैकवार, उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने बुंदेलखंड की पारंपरिक अखाड़ा संस्कृति और बुंदेली मार्शल आर्ट को जीवित रखने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका यह सम्मान उन सभी लोक कलाकारों और परंपराओं के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान को जीवंत बनाए हुए हैं। तो हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं इनके घर के सभी सदस्यों को और हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को, क्योंकि बुंदेलखंड की अखाड़ा संस्कृति और बुंदेली मार्शल आर्ट आज भी हमारे बीच उसी तरह खिलखिला रही है जैसे पहले थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं श्री नारायण व्यास की, जिन्हें पुरातत्व के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिला। पुरातत्व केवल प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को समझने का भी एक माध्यम है। श्री व्यास जी ने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, शोध और उनके महत्व को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत को सुरक्षित रखने का प्रेरणादायक उदाहरण है। तो दोस्तों, ये जो हमारे ये महान लोग हैं हमारे बीच, ये हमारे ही धरोहरों को बचाने के लिए, हमारे ही लिए सब ये कार्य कर रहे हैं। ऐसे में हम को भी इसी ये प्रेरणा मिलती है कि इसी राह पर एक नई दिशा लेकर आएं और इन सभी विरासतों से जुड़ें। यदि हम पिछले वर्ष यानी 2025 की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के दो और गौरवशाली नाम भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए थे। लोक गायक भेरू सिंह चौहान को लोक संगीत और कला के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान मिला था। उनके गीतों ने मालवा और निमाड़ की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। वहीं शालिनी देवी होलकर को हथकरघा व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया था। उन्होंने पारंपरिक हस्तशिल्प और हस्तकरघा कला को एक नई पहचान देकर अनेक कारीगरों के जीवन में नई आशा का संचार किया। प्रिय श्रोताओं, ये इन सभी व्यक्तियों के बारे में एक बात समान हमें दिखाई दे रही है कि इनकी सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा का परिणाम है। तो दोस्तों, इन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि उद्देश्य समाज का कल्याण हो तो समिति संसाधन भी असाधारण परिणाम दे जाती है। तो आज आवश्यक है कि हम भी इन विभूतियों से प्रेरणा लें और चाहे वह शिक्षा हो, साहित्य हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण की रक्षा हो, अपनी सांस्कृतिक विरासत की संरक्षण की बात हो या समाज सेवा की, हर क्षेत्र में हमारा छोटा सा प्रयास भी राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आइए इन सभी पद्मश्री विभूतियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई दें और उनके उज्ज्वल प्रेरणादायी जीवन से सीख लेते हुए अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करने का संकल्प लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए अनुमति और हम इस वादे के साथ आपसे विदा ले रहे हैं कि कल फिर कुछ नए विषयों पर चर्चा होगी और कुछ नगमे आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी को स्मिता का प्यार भरा नमस्कार।

मॉर्निंग ग्वालियर, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शावनी शेंडे का गायन। राग है

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया शावनी शेंडे का गायन। राग था नट भैरव। तबले पर संगत कर रहे थे नफीस अहमद। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। कटनी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मानसून की। जिले में इस साल मानसून की रफ्तार पिछले साल के मुकाबले काफी धीमी रही है। 1 जून से 19 जुलाई तक जिले में सिर्फ 245.4 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 606 मिलीमीटर बारिश हुई थी। सलीमनाबाद में सबसे ज्यादा और बड़वारा में सबसे कम बारिश दर्ज की गई। अब बात एक और बड़ी और ऐतिहासिक परियोजना की। कटनी के सलीमनाबाद में बन रही देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग अब लगभग पूरी हो चुकी है। करीब 12 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में सिर्फ 2 मीटर खुदाई बाकी है। सुरंग पूरी होने के बाद पहली बार बरगी बांध का पानी बिना किसी पंप या लिफ्ट के सीधे विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी इस मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। करीब 15 साल से बन रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना से हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। सुरंग के जरिए कटनी सहित जबलपुर, मैहर, सतना, पन्ना और रीवा जिले के 1450 गांवों तक नर्मदा का पानी पहुंचेगा। इससे करीब 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। अकेले कटनी जिले की 21,823 हेक्टेयर जमीन को पहली बार नर्मदा का पानी मिलेगा। जिला प्रशासन का ये कहना है कि परीक्षण के बाद अक्टूबर 2026 से पानी की आपूर्ति शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। कटनी जिले में बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए दस्तक और स्टाफ डायरिया अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग और आंगनवाड़ी की संयुक्त टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों की स्वास्थ्य जाँच कर रही है। बच्चों को ORS, जिंक की गोलियाँ, विटामिन ए और आयरन सिरप भी दिया जा रहा है। बारिश के पानी को बचाने के लिए नगर निगम ने शहरवासियों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की अपील की है। निगम का कहना है कि बारिश की हर बूंद भविष्य के लिए बेहद कीमती है। घरों, दुकानों, संस्थानों और सरकारी भवनों में

0: वर्षा जल संचयन की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे भूजल स्तर बढ़ेगा और आने वाले समय में पानी की कमी से राहत मिलेगी। कटनी जिले के ग्रामीण इलाकों में अब शौचालय निर्माण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आज से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान जिन पात्र परिवारों के पास अब तक शौचालय नहीं है उनका सर्वे किया जाएगा। ऐसे परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए सरकारी सहायता भी दी जाएगी। खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को नई सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि डीएपी की जगह 3 बोरी एसएसपी और 20 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इससे खाद का खर्च कम होगा और फसल को जरूरी पोषक तत्व ही मिलेंगे। एसएसपी में फास्फोरस के साथ सल्फर और कैल्शियम भी मिलता है जिससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। कटनी में दिव्यांगजनों के लिए निशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 37 पात्र हितग्राहियों का परीक्षण कर उन्हें जरूरत के अनुसार उपकरण देने के लिए चयनित किया गया। इसके बाद बरही और डीमरखेड़ा में भी ऐसे शिविर लगाए जाएंगे। जिले के सभी पात्र दिव्यांगों का चरणबद्ध तरीके से परीक्षण कर उन्हें उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। कटनी पुलिस को बेहतर कार्यप्रणाली के लिए बड़ी उपलब्धि मिली है। जिले के 13 पुलिस थानों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय और 2 एसडीओपी कार्यालयों को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ये सम्मान साफ सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन, बेहतर व्यवस्था और जनता के अनुकूल माहौल के आधार पर दिया गया है। अब बात पशुपालकों के लिए चलाई गई खास पहल की। कटनी जिले में 13 से 18 जुलाई तक दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान विभाग की टीमों ने 5,515 पशुपालकों के घर पहुंचकर आधुनिक पशुपालन की जानकारी दी। पशुओं की बेहतर नस्ल, संतुलित आहार और दूध उत्पादन बढ़ाने के आसान तरीके भी बताए गए। विभाग का कहना है कि आधुनिक तकनीक अपनाने से पशुपालकों की आय बढ़ेगी और डेयरी व्यवसाय अधिक लाभकारी बनेगा। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे कटनी जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
3: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है आपका अपने पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में साथ हूँ मैं आपकी दोस्त स्मिता। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो हमारे श्रोता साथी फरमाइश करते हैं, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेटी आलिया, आयान बाबू, ग्राम बहरामपुर टेमा, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से शीतल रेडियो श्रोता संघ से हैं हमारे श्रोता साथी डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समर राज आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता और वर्मा। जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, कीर्ति भारती, वर्षा सुमन, माधुरी किरण। आइए आपके पसंद पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जोशीला से। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने, आवाज़ किशोर कुमार की।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म मौसम से। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने, आवाज़ भूपेंद्र की है। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी जो हमें लिखते हैं मैसेज। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुटी बुलेंद शहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सहानवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार के सदस्य, मुकाम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंडरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बानू बी मुलानी, बादशाह मुलानी और समस्त मुलानी परिवार। यही गीत सुनना चाहते हैं चौटाल हरियाणा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म आनंद से। गीत के बोल लिखे हैं योगेश ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है सलील चौधरी ने, आवाज़ मन्ना डे की है। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, साहिबा मुजावर, मिखाइल जैनब मुजावर, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजियान शीर, साजिद और साहिद। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म आनंद से।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं अपने ही पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म घरौंदा से। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाए है जयदेव कुमार ने और आवाज़ भूपेंद्र और रूना लैला की है। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ, अंबई तहसील सिल्लोड जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्रजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के, गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र सिंह बिजारनिया, राजपाल सिंह बिजारनिया, अभिषेक सिंह बिजारनिया, योगेश सिंह बिजारनिया, पूजा सिंह बिजारनिया, आरजू सिंह बिजारनिया और नव्या बिजारनिया, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म घरौंदा से।
2: दीवाना।
3: एक दीवाना शहर में।
2: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: कार्यक्रम में फिर आप सभी का स्वागत है। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म घर से। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है RD बर्मन ने, आवाज़ें हैं किशोर कुमार की। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी। आसलगांव बाजार जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन माठे, संजय माठे, ज्ञानेश्वर माठे, देवेंद्र भटकर जी। नई बस्ती गुंज डुंडवारा से मोहम्मद

0: या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म का नाम है छोटी सी बात। योगेश गौड़ के लिखे इस गीत को सलील चौधरी ने संगीत से सजाया है, आवाज़ लता मंगेशकर की है। और ये गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता साथी ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। कवर कॉलोनी बड़वाह से जिला खरगोन एमपी से लिखते हैं प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म छोटी सी बात से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म मिली से। योगेश गौड़ के लिखे इस गीत को एक बार फिर एसडी बर्मन ने ही गीत से सजाया है। संगीत इसका एसडी बर्मन का है और आवाज़ किशोर कुमार की। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी, जिला नांदेड़ ऐताला महाराष्ट्र से, शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल, गांधी चौक रोपार पंजाब से, हरदेव मिक्का, बलविंदर वीरक।

जय तेग वीरक और मिक्का वीरक। छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फुलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, आमना आसमा परी, इकबाल अहमद फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म मिली से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म मासूम का गीत। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत रचना आरडी बर्मन की है, आवाज अनूप घोषाल की। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, तहसील

मलकापुर ग्राम महसवाड़ी से, महाराष्ट्र से लिखते हैं शत्रुघ्न सांडे, वकील वाल्मीकि थांडे, नीना जी थांडे और स्वप्निल थांडे।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं अपने ही पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है

इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, समर राज आर्यन। जिला किशनगंज बिहार से

रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, वर्षा सुमन, माधुरी किरण, मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, ये हमें लिखते हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौक हुटनी बुंदेल शहर से। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता साथी फुल चिंचोली तालुका पंडरपुर से जाकिर, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज और गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद, साहिबा, मिखाइल, जैनेब, मुजावर, फातिमा कॉलोनी।

और गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद साहिबा मिखाइल जैनेब मुजावर फातिमा कॉलोनी मिखाइल जैनेब मुजावर फातिमा कॉलोनी

0: दिल्ली में संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण भारत में भी एक संकट का बहुत बड़ा कारण रहा था। इसके बाद भी भारत 7.7% की ग्रोथ से आगे बढ़ा, ये भारत के सामर्थ्य का परिचय है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं तथा मर्यादा का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्रवाई में भाग लेंगे। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र भी आज से प्रारंभ हो रहा है। 24 जुलाई तक चलने वाले इस 5 दिवसीय सत्र में राज्य सरकार द्वारा 2026-27 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट के साथ समान नागरिक संहिता सहित कुल 14 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल के पास जगदीशपुर में कैबिनेट की बैठक हुई। प्रदेश पुलिस ने बीते 6 महीनों में संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 70 लाख रुपए से अधिक की चोरी की गई, संपत्ति बरामद कर 33 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में जनजातीय चित्रकार की प्रदर्शनी जारी है। इसमें भील जनजातीय चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी 30 जुलाई तक रहेगी और टैलेंट सर्च अभियान के तहत एथलेटिक्स के चयन ट्रायल्स आज से 22 जुलाई तक भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में होंगे। इसमें बालक और बालिका दोनों वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: सर, मैं नेपाल पुलिस से तिलक राणा बोल रहा हूँ।
2: तिलक राणा जी कहाँ से?
3: नेपाल पुलिस सागर।
2: सागर जिले से?
3: सागर से जी।
2: जी, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
3: सर आज मुझे वो वाला सुना दीजिए आप, क्या कहते हैं वो कौन थी का?
2: वो कौन थी फिल्म का नाम है।
3: हाँ,
2: और गीत
3: लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज में है।
2: हाँ,
3: वो गीत के बोले छोड़ एक तरह तेरे प्यारे का दामन, ये हाँ, बता दे कि हम कहाँ जाएं।
2: जी, बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया है तिलक जी, आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचाते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हाँ, कौन बोल
1: हेलो
0: रहे
1: हेलो
0: हैं?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते। थोड़ा सा आपकी आवाज़ ब्लास्ट हो रही है, थोड़ा सा दूर से बोलिए।
1: जी
0: हाँ, नाम बताएं अपना।
1: मैं नंदिनी तिवारी बात कर
0: नंदिनी तिवारी जी,
1: रही हूँ। जी
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगी, कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी मैं सागर से बोल रही
0: जी,
1: हूँ। मूवी का नाम है MS धोनी।
0: MS धोनी। और
1: जी इसका कौन तुझे यूं प्यार करेगा ये वाला। जी
0: कौन तुझे यूं प्यार करेगा? चलिए, आपकी
1: डेडिकेट
0: पसंद।
1: रानू दीदी को और आपको रहेगा
0: चलिए, गीत आप तक पहुंचाते हैं
1: उर्मी
0: कार्यक्रम
1: पापा
0: में
1: को
0: फोन
1: भी।
0: करने के लिए। धन्यवाद नंदिनी जी।

0: खातेगांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ सर।
1: चौदहवीं का
0: मेरे
1: चांद
0: मालिक ने
1: गीत के बोल
0: रूठे
1: फिर से।
0: रूठे मेरे सरकार नजर आते हैं,
1: रूठे रूठे मेरे सरकार नजर आते
0: सरकार
1: हैं,
0: नजर आते हैं। हाँ वहीदा रहमान पर फिल्माया सर
1: जी। तो ये गाना आपकी पसंद का है, ये गाना कुछ खास वजह है जिसके कारण ये गाना पसंद हो आप?
0: मेरे को बहुत पुराना, बहुत पहले से ही पसंद है सर।
1: अच्छा चलिए, आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: बदले मेरे सरकार नजर आते।
1: फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार सर।
1: नमस्ते
2: सर, मुझको गाना सुनना है।
1: जी बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचाएंगे। पहले अपना नाम बताइए।
2: सर दशरथ रजक दमोह से बोल रहा है।
1: दशरथ रजक दमोह से।
2: हाँ।
1: तो कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं आज?
2: सर हमें राजा हिंदुस्तानी का।
1: राजा हिंदुस्तानी फिल्म का कौन सा गीत?
2: आए हो मेरी जिंदगी में तुम।

0: नमस्कार।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नेत्राम खोजा बोल रहा जी, कोठिया से
0: कोठिया कहाँ पर है जी? कोठिया
1: जो है गाड़र वाला पास।
0: गाड़र वाला?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, क्या करते हैं मेघराम जी आप?
1: मैं करता हूँ जी, मोटर वायरिंग भरता हूँ।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। और कौन सा गीत आज आप पसंद कर रहे हैं?
1: हम सुन रहे हैं जी परदेसी वालों का ना,
0: परदेसी वाला कौन सा?
1: जो हमको ऐसे कर दो जो हमको भूल ना जाना।
0: फिल्म का नाम बता पाएंगे?
1: फिल्म का नाम नहीं है जी पता।
0: अच्छा, हमको भूल न जाना।
1: हाँ जी,
0: और एक आध कोई गीत बताइए जिसको हम पूरा कर सकें।
1: मेरे बालक हैं दो,
0: जी
1: एक नाव शिवम बालक नाव,
0: जी
1: और एक को नाव शिवम और एक को नाव सत्यम।
0: चलो शिवम सत्यम दोनों ये गीत सुनेंगे,
1: हाँ जी,
0: लेकिन एक
1: मोटर
0: गीत,
1: वायरिंग भी नहीं सुको दे में ना।
0: जी, एक गीत और बता दें आपको कौन सा सुनना, अगर ये ना मिले तो हम कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
1: वो सुना दो तेरे तुनक तुनक तुन्ना सुनो पाऊनी बिन्ना।
0: अच्छा, तुनक तुनक तुन्ना वाला है ना?
1: हाँ जी।
0: चलिए चलिए, आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचाते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: हाँ।

0: बेचारा उसका इंतजार कर रहा है।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है
2: जी। मेरी किन से बात हो रही है आज?
1: मैं विजयकांत नायक बोल रहा हूँ
2: जी। मैं अरविंद अग्रवाल।
1: अरविंद जी कहाँ से?
2: जी श्रीनगर जिला महोबा से।
1: श्रीनगर जिला महोबा से
2: जी।
1: वहाँ पर कैसा आप प्रसारण किस तरह से सुनते हैं?
2: जी ऐप से सुनते हैं, मोबाइल ऐप से।
1: अच्छा, ऐप से। और दूसरे फोन करें गीत सुने कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर से भी रिले होता होगा?
2: जी छतरपुर से भी सुन सकते हैं।
1: जी जी जी अरविंद जी, कौन सा गीत आज पसंद करते हैं?
2: जी आज फिल्म का नाम रहेगा स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ।
1: स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ
2: जी।
1: और फिल्म के साथ साथ इसके बोल भी बताइएगा।
2: ये सूरज चांद सितारे।
1: ये सूरज चांद सितारे।
2: जी
1: चलिए, अच्छा गीत आपने पसंद किया है, आपके पसंद का गीत आप तक पहुंचाते हैं। और जैसा
2: थोड़ी
1: जी
2: जी मेरे अब कल मेरे बेटे का जन्मदिन था, इसलिए उसको डेडिकेट करना है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: फोन करें कि
1: हेलो
0: सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: सर, मैं गजेंद्र अहिरवार सागर से मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं।
0: गजेंद्र अहिरवार सागर से।
1: हाँ सर,
0: गजेंद्र जी कौन सा गीत पसंद करते हैं आज?
1: साजन फिल्म का
0: साजन फिल्म का कौन सा गीत?
1: देखा है पहली बार।
0: साजन की आंखों में प्यार।
1: हाँ
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा ये गीत। आपकी पसंद
1: हाँ सर,
0: बहुत अच्छी है, आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचाते हैं। और अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्या करते हैं?
1: सर कंपनी में काम करते,
0: और रेडियो सुनते हैं?
1: रेडियो सुनते हैं।
0: चलिए, आप सभी श्रोताओं इस तरह से प्यार बनाए रखते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। आपकी

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार। फ़ोन करें गीत सुने कार्यक्रम में फ़ोन लगाया आपने।
1: जी,
0: हाँ कौन बोल रही हैं?
1: मैं निशिका बात कर रही हूँ।
0: नीतिका कहाँ से?
1: मैं भोपाल
0: अच्छा कौन सा गीत तो आज पसंद करती हैं?
1: तो मूवी ना में किसी का वार किसी की जान है, नहीं हो लगता दिल।
0: नहीं हो लगता दिल। चलिए आपकी पसंद पूरी करने की हम कोशिश करते हैं नीतिका जी। कार्यक्रम में फ़ोन लगाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।

श्रोताओं फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में। जिन श्रोताओं ने हमें फोन लगाए उनकी पसंद हमने पूरी की और उनकी पसंद के गाने सुनवाए। कार्यक्रम के अंत में एक गीत हमारी पसंद का हम आपको सुनवाना चाहते हैं। उम्मीद है आपको गीत पसंद का। सुनिए हमारी पसंद का ये सुमधुर गीत और मुझे

0: विजयकांत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: ये आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: दम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: Cinesena!
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों सक्रिय हों तो वो बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। जब दोनों फायदेमंद होते हैं तो

से देश का कल्याण होता है और सभी जीवों का भला होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं तथा मर्यादा का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र भी आज से प्रारंभ हो गया है। 24 जुलाई तक चलने वाले इस पांच दिवसीय सत्र में राज्य सरकार द्वारा 2026-27 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट के साथ समान नागरिक संहिता यूसीसी सहित कुल 14 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल के पास जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। प्रदेश के 90% हिस्से में अगले चार दिनों तक हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। इस दौरान 4 से 5 जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है और टैलेंट सर्च अभियान के तहत एथलेटिक्स के चयन ट्रायल्स आज से 22 जुलाई तक भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में होंगे। इसमें बालक और बालिका दोनों वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपके पत्रों के माध्यम से आपकी पसंद के गीत आपको सुनाते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म जूली से, स्वर किशोर कुमार के हैं, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राजेश रोशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें बेरड़ी से आई है। श्रोता हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु। अगली श्रोता राजा बाजार बिहिया से हैं, सुरेश केशरी, पूनम केशरी और प्रतीक। इन्हीं के साथ हैं नया बाजार बिहिया से राजेश केशरी, पंकज और रोहन केशरी। सुनते हैं आपकी पसंद गीत।

पंकज उदास और साधना सरगम के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मोहरा से। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीतकार हैं विजू शाह। इस गीत के लिए फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरिंगी से। श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। अगली श्रोता कवर कॉलोनी बड़वाह से हैं प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज शिमाली। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, इस फिल्म से अगला गीत सुनेंगे हेमलता के सुर में। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सपना संगीता रोड इंदौर से। श्रोता हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म तीसरी मंजिल से। गीत लिखा मजरूह ने, संगीतकार हैं आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है घंटाघर चौक खंडवा से। श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया।

उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म मृत्युदंड से। गीत लिखा जावेद अख्तर ने, गीत को संगीतबद्ध किया आनंद मिलिंद ने। फरमाइश हमें आई है गोला बाजार बक्सर से। श्रोता हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। इन्हीं के साथ हैं गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर जैतेक और मीका बिरक।

एक जरूरी सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल। सूचना समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कंतारे का पांचवा भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे के लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

लीजिए सुनिए कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का पांचवां भाग। अभी तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महल छोड़कर चले जाते हैं। राजा का प्रिय अश्व नीलमणि आचार्य नागदत्त के आश्रम पहुंच जाता है। राजा भर्तृहरि वृक वन पार करके पैठार गांव पहुंचते हैं। भोले भाले ग्रामीणों के आग्रह पर वे महादेव शंकर के किरात अवतार की कथा सुनाते हैं, जिसमें भगवान शिव अर्जुन से वचन लेते हैं कि जिन अस्त्रों का हिंसक पशुओं पर उपयोग होता है उसका संधान शश अथवा मृगों पर नहीं करना चाहिए। अतीत की घटनाओं से उद्विग्न अनिरुद्ध राजा भर्तृहरि से वाद विवाद करता है।

0: किरात और अर्जुन की कथा के बाद जैसे भरथरी के मानस में अनिरुद्ध द्वारा उठाए गए प्रश्न गूंज रहे हों।
1: मैं ही हूं अनिरुद्ध, मैं कह रहा हूं कि हमारे ग्रामीण भी परंपरा से प्रबल धनुर्धर होते आए हैं, किंतु हमारी भी एक वर्जना है। एक ही तीर से शूकर या किसी हिंसक वृक या व्याघ्र को हम धराशायी कर देते हैं। क्या हमारे ग्रामजनों को अपने अस्त्र का प्रयोग हिंस्र पशुओं की तरह हिंस्र मनुष्यों पर भी नहीं करना चाहिए? भगवान शंकर के पाशुपत का विवेक और न्याय क्या कहता है देवता?

0: रीत जाते हैं। क्या हमारे ग्रामजनों को अपने अस्त्र का प्रयोग हिंस पशुओं की तरह हिंस मनुष्यों पर भी नहीं करना चाहिए? भगवान शंकर के पाशुपत का विवेक और न्याय क्या कहता है देवता?
1: ये सब इसलिए कह रहा हूं कि शायद देव का आशीर्वाद ही फलित हो जाए। पुराना अनिरुद्ध अपने आप में वापस लौटे पूरी ऊर्जा और कौशल के साथ। जनसमाज के साथ साथ राज्य के लिए भी उसकी ऊर्जा बहुत उपयोगी होगी। अभी तो वो राजा को शत्रु मानता है और राज्य को भी। अब आप भोजन और विश्राम के लिए अपने अपने घरों को जाएं। देवता मेरी मढ़िया पर ही रहेंगे, उनके भोजन और विश्राम की व्यवस्था वही है। अनिरुद्ध के प्रश्नों का उत्तर भी अवधूत यथा समय देंगे। अनिरुद्ध, तुम दीप दंड लेकर आगे की राह दिखाओ। चलें
2: चलें चलें
3: चलें
1: इस दिशा में देव, इस दिशा।

0: देवता, हमने गांव के बाहर नागफनी और दूसरी कांटेदार झाड़ियों की ये बाड़ बना रखी है। इसे सघन रखा जाता है ताकि हिंस्र पशु गांव में घुस ना आए। यही हमारी सुरक्षा है। इस ओर चलें देवता, सामने ही है सेवक की मढ़ैया।
1: पधारें देव, आसन ग्रहण करें।
2: ओह, ये स्वर तो वयसिका की स्मृति दिलाता है। कौन है ये तरुणी, मधुर मदिर, वयस्क स्वर की स्वामिनी?
3: ये शची है देवता, देखने में छुई मुई सी कोमल, लेकिन पूरी सिहनी है प्रभु।
0: अभी वह 20 की है, लेकिन शची और वृंदा दोनों ही 100 हाथ दूरी से लक्ष्य भेदने की क्षमता रखती हैं।
3: मुखिया ने ही हमें सिखाया है।
2: साधु साधु, शची और वृंदा, वयसिका और चंपा,

0: मामूली देवता।
1: आहार ग्रहण करें मान्यवर।
2: आप लोग भी तो आहार ग्रहण करें।
3: हाँ हाँ जी, अनिरुद्ध आओ। वृंदा, हमारा भोजन संपन्न हुआ, ये बासन समेट लो। अनिरुद्ध, आज मैं यहाँ महाराज की सेवा में रहूंगा, तुम तंदुल नोन आदि को लेकर मेरे स्थान पर गांव की परिक्रमा कर लेना। महाराज पधारे, उधर आपके लिए खटोला डालना है।
2: और तुम्हारी शयन का क्या प्रबंध है मुखिया?
3: यही आपके पास, नीचे धरती माता की गोद में। धरती की शैया और निरभ्र नील आकाश का ओढ़ना, यही तो कृषक का सर्वस्व है देव।

0: देव, यदि अभी शयन की इच्छा ना हो तो मैं अनिरुद्ध के विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।
1: कह तो चुके हो तुम मुखिया।
0: हाँ, इसकी दृष्टता बार बार मन को साल रही है। उसे इस तरह उद्दंडता नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी विवश है। एक ज्वालामुखी उसके भीतर ही भीतर सुलग रहा है। कभी कभी कभी विस्फोट के साथ फूट पड़ता है।

0: ये केवल अनिरुद्ध के मन का ही नहीं, उन सब के मन का ज्वालामुखी है देव। हम सब उसे भोग रहे हैं। हाँ, हमें तो भोगना है जैसा हमारे पूर्वजों ने भोगा, हमने भोगा, वृंदा और अनिरुद्ध ने भोगा।
1: वृंदा और अनिरुद्ध ने?
0: उनके दंश बहुत त्रासद हैं देव। मैंने आपको गांव पर दस्युओं के आक्रमण और लूटपाट के विषय में बताया था। फिर उनके पीछे पीछे आने वाले राज्य कर की उगाही के लिए राजकर्मी आए और गहरा घात पीछे छोड़ गए।
1: क्या हुआ था मुखिया, क्या हुआ था, विस्तार से कहो।
0: एक दुःस्वप्न जैसा घटित हो रहा था देव। समूचा ही जनपद विगत वर्ष के दुष्काल से पीड़ित प्रभावित था। चोरी चकारी की घटनाएं निरंतर बढ़ रही थी। दस्यु दल अभी अभी सब कुछ छीन ले गए थे। अभी अश्वारोही राज्यकर्मी आ पहुंचे। उन्हें राजा का प्रतिनिधि मानकर हमने दुर्दिनों के लिए सहेज कर रखे अन्न से उनकी अभ्यर्थना की, उनके लिए मद्यपान की व्यवस्था की, किंतु करों का भुगतान करने के हमारी सामर्थ्य नहीं थी देवता।

राजकर्मियों का एक विशाल दल गांव में ही ठहर गया। उसकी हठ थी कि वो कर लिए बिना टलेगा नहीं। ये गांव वालों के लिए सांसद का समय था। कहते तो किससे कहते, उन्हें तो भोगना था।

0: कुछ मध्यपाश्वारोही ग्रामीण तरुणों को हांके के लिए बहोर कर आखेत के निमित्त अरण्य में निकल गए थे। लौटते हुए उन्होंने नदी के किनारे हमारे किशोरियों तरुणियों को घेर लिया। वृंदा भी वहां थी, 7 महीने के गर्भ से। उनके पास हसिया पुलिस कुछ भी नहीं था, प्रतिरोध कैसे करती। सैनिकों ने उनकी विवशता का लाभ उठाया। क्या कहूं देव, बचने के लिए वृंदा कोस भर भागी, उसका गर्भ खंडित हो गया। देव कुछ थी जो नदी में कूद गई, अनेक नर पशुओं की वासना की बलि चढ़ गई। हाँ देव, विधि का विधान ही अविश्वसनीय रहा होगा।
1: विधि का विधान नहीं, मनुष्य की पाश्विकता कहो वीरभद्र। मानव देह में पिशाच, नर पिशाचक।
0: अधम राजकर्मी हमारा मान रौंद कर राजधानी चले गए। मध्यान्ह में जब हमारी बेटियां लौटी तो हम घटनाक्रम से अवगत हुए। वृंदा तब भी नहीं लौटी थी। हम वृद्ध जन उसकी खोज में लगे। कुछ वन में युवकों तक समाचार पहुंचाने गए। हमारे कुछ युवकों ने आतताइयों का पीछा किया, लेकिन वो तो हमारी पहुंच से बहुत दूर निकल गए थे। महाराज, उस दिन यदि वो नराधम हमें मिल जाते

0: वो जीवित रहते और ना हमारा ग्राम ही बचता।
1: ग्राम? ग्राम क्यों मुखिया?
0: राज सत्ता सर्वशक्तिमान होती है देवता, राज्य का यही वास्तविक चेहरा है। विद्रोह वो सहन नहीं कर पाता। विद्रोह तो क्या, असहमति के प्रति भी वो असहिष्णु होता है। उस दिन हमने अनुभव किया कि पलायन से अतिरोध अधिक श्रेयस्कर है। कम से कम आने वाली पीढ़ियां तो हमें कायर नहीं कह सकेंगी।
1: फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ मुखिया?
0: और हम सब विद्रोही हो गए। राज सत्ता का स्वीकार, पलायन नहीं, समर्पण नहीं, केवल असहमति, केवल अतिरोध।

उस दिन से हमारे युवक विद्रोही हो गए हैं। अनिरुद्ध तो लंबी अवधि तक विक्षिप्त रहा, सदा इस प्रश्न के उत्तर को लेकर बेचैन के पाशुपात का प्रयोग हिंसक मनुष्यों पर क्यों नहीं, आपसे उसने यही पूछा है। बैठार के अवंती से कोई संबंध अब नहीं रहे हैं। राज्य का प्रत्येक कर्मचारी यहां से बचता है, बैठार से अवंती कोई नहीं जाता। भर्तृहरि के यशस्वी साम्राज्य में बैठार वैसे ही है जैसे रावण की लंका में विभीषण का घर।

0: हृदय में जाने क्यों ये विश्वास जाग रहा है कि आपके आशीर्वाद से अनिरुद्ध अपने आघातों को भूल जाएगा।
1: तुमने कुछ उपाय किए मुखिया?
0: हम उपायों को क्या जाने, हम कर भी क्या सकते हैं। आप जैसे तपस्वियों की बात और है। आप ठान लें तो राज्य क्या धरा ही उलट पुलट हो सकती है। हमें तो बस भोगना है, चाहे अनचाहे। अनिरुद्ध किंकर्तव्य विमूढ़ है, उसे पाशुपात का रहस्य समझा दें देवता।
1: महेश्वर शुभ ही करेंगे, मैं भी हर संभव प्रयास करूंगा। मैं अपना संसार पीछे छोड़ आया हूं, फिर भी लगता है कि वो दबे पांव पीछे पीछे चला आ रहा है। अच्छा, रात बहुत बीत गई है, अब आप भी विश्राम करें।
0: अनिरुद्ध की चिंता है और उन तरुणों की भी जो क्रोध में अपने बोध से भटक गए हैं। इस चिंगारी की अनदेखी मुझसे नहीं होती।

0: उड़ गया। देखिए तो मैं कि कैसी झड़ी लगी है, रात से ही बादल बरस रहे हैं। दो संवत्सर से प्यासी धरती रस से सराबोर हो रही है। ये आपकी शरण रज का प्रताप है मालेवर।
1: मुखिया, पहले भी मैं कह चुका हूं कि मैं कोई सिद्ध साधक नहीं हूं। मैं अपने गृह और संसार को त्याग कराने वाला आप ही के जैसा एक साधारण मनुष्य हूं। आप विश्वास क्यों नहीं करते?
0: देव, मैं जानता हूं कि चमत्कारी सिद्ध ऐसी ही अटपटी वेशभूषा का व्यवहार करते हैं ताकि लोग उन्हें बावरा समझें और दूर रहें। आप तपस्वी हैं, आपके पास सिंहासनों को लात मारने का सामर्थ्य है। मेरु सागर भी आपका मार्ग नहीं रोक सकते। अरे, शची आ रही है।
2: प्रणाम देवता। मुखिया, मुझे विलंब तो नहीं हुआ? आज्ञा करें, मुझे क्या करना है?
0: समय पर ही आई हो शची। हम लोग खेतों की ओर निकल रहे हैं। वर्षा का जल भरा होगा, मेड़ बंध आदि ठीक करने होंगे ना। यहाँ महाराज की सेवा में तुम्हें रहना है।
1: शची, ओह, शची को देखकर क्या हो जाता है भर्तृहरि तुम्हें? नरेश के रूप में तुम आत्म वंचक रहे, साधु वेश में भी प्रवंचना से मुक्त नहीं हो पाए हो। कामिनी और कंचन के पंख में धसे फंसे घृणित कीट। वीरभद्र, मैं भी साथ चलता हूं। प्रातः क्रिया स्नान ध्यान करना होगा।
0: जैसे प्रभु की इच्छा। चलिए महाराज, चाहे तो शची को भी साथ ले लें, वापसी में मार्गदर्शन कर सकेगी।
1: आवश्यकता नहीं है, मैं आ जाऊंगा अकेला ही। हाँ, और भस्म उपलब्ध हो सकेगी?
0: आपकी धुनी की व्यवस्था यहीं ओसारे में हो जाएगी। जब तक लौटेंगे शची यहाँ उपले लगा देगी और आँच जला देगी। कोई अन्य आवश्यकता हो तो शची को आगे दें। शची, तपस्वी जी का ध्यान रखना।
2: जी मुखिया जी।
1: लगता है ग्रामीणों का दल लौट कर आ पहुंचा है। वीरभद्र, कहाँ गए थे ये सब?
0: अनिरुद्ध को खोजने। कल रात से ही पता नहीं कहाँ है। यही करता है वो, अपनी सनक में अकेला ही भटकता रहता है। फिर अभी तो कारण भी था, रात में हुई धृष्टता के कारण आपके सामने आने में सकुचा रहा होगा। बहुत संवेदनशील भी है। अब चले महाराज, इस और आए। शची, महाराज के लौटने तक सारी व्यवस्था कर लेना।
2: मैंने कह दिया ना, मैं सब कुछ कर दूंगी। आप निश्चिंत रहे मुखिया जी।
1: मुखिया, मैं देख रहा हूं कि सभी गांव वाले हसिया, खुरपी, दराती, दंड, परुष आदि से सज्जित हैं। कुछ तो धनुष बाण और तेंगा भी लिए हुए हैं। ऐसा क्यों?
0: इन सब जीवों की आसपास उपस्थिति का आभास इन्हें स्वाभाविक लगता है। यद्यपि इस घोर वर्षा काल में अश्वारोही दस्युओं और राजसेवकों

0: का यहाँ आना दुष्कर है, किंतु पहले की दुर्घटना अनुभव कोश में अमिट है। वो निरंतर सजग और सन्नद्ध रहते हैं।
1: पुरुषों की भांति स्त्रियां भी?
0: हाँ, मैंने आपको वृंदा और शची के विषय में बताया था। शची खड़ग संचालन और धनुर्विद्या में समान रूप से पटु है देव, उसकी तरह अन्य भी।
1: शची, ओह, शची को देखकर क्या हो जाता है भर्तृहरि तुम्हें? वीरभद्र, अब हमारे प्रस्थान का समय आ गया है, हमें जाना होगा यहां से। आप हमें मार्ग और दिशा की जानकारी देंगे?
2: कहां जाएंगे सन्यासी? मार्ग ही नहीं मिलेगा, चारों ओर जल ही जल है। समतल सतह के कारण यह अनुमान भी संभव नहीं है कि इस प्लावन की गहराई कहां तक है। पग पथ पर डूबे हुए हैं, केवल पादपों के उठे हुए शीर्षों से आभास होता है कि इधर राह हो सकती है। आप तो घिर गए हैं देवता, वो भी हमारे सौभाग्य से।
1: किंतु मुझे जाना ही होगा।
0: 3-4 दिन तक तो यह संभव नहीं है देव। इंद्र की अनुकंपा से आपके सानिध्य का यह सुअवसर हमें मिला है। हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, कथाएं, नीतियां, जीवन के अनुभव। महाराज, यहां से पथ मुड़ता है, उस ओर नदी है, हमारे खेतों की राह इधर से है, आप पहुंच तो जाएंगे।
1: हाँ वीरभद्र, मैं चला जाऊंगा।
0: कृपया अधिक विलंब न लगाएं और गांव छोड़कर जाने का अभी ना सोचें। अनिरुद्ध के प्रश्न का उत्तर उसे अभी नहीं मिला है, उसे आपके वात्सल्य की आवश्यकता है देवता।

अभी आप महेश कटारे के उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो प्रस्तुति का पांचवा भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। वाचक सुनील वैद्य, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, शचि विभा श्रीवास्तव, वीरभद्र राकेश जैमिनी और वृंदा सरोज शर्मा। संयोजक राकेश ढोंडियाल, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

0: आपको याद होगा कि कोई राजा भर्तृहरि के अश्व नीलमणि को घायल अवस्था में आचार्य नागदत्त के आश्रम में छोड़ जाता है। नीलमणि यहाँ ठीक हो जाता है। उसे अवंती पहुंचाने का दायित्व चंद्र।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 होने को है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाऊ में मॉल्डोवा की राष्ट्रपति माया सेंडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्डोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मॉल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। दिल्ली में संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है, जो कि 13 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्थक और तथ्य आधारित चर्चा का आह्वान किया है। सत्र में 7 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे, जबकि बदले राजनीतिक समीकरणों और नए सिटिंग अरेंजमेंट के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी आज से प्रारंभ हो गया है। 24 जुलाई तक चलने वाले इस 5 दिवसीय सत्र में राज्य सरकार द्वारा कुल 14 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रदेश पुलिस ने बीते 6 दिनों में संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 70 लाख रुपये से अधिक की चोरी की गई संपत्ति को बरामद कर 33

आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पन्ना जिले की मझगवां हीरा खदान से एक बड़ा हीरा मिला है। यह हीरा 13.16 कैरेट का है और इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये आंकी गई है। प्रदेश में आज दमोह, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि भोपाल और इंदौर सहित 47 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। और भोपाल के मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में जनजाति चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी 30 जुलाई तक जारी रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

समय पर जांच स्वस्थ जीवन की पहचान। श्रोताओं, स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वीकार कीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा दुबे का नमस्कार। श्रोताओं, रोग का इलाज करने से बेहतर है बीमारी को रोकना। स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए पहले से सावधानी बरतना सबसे अच्छा उपाय है। बीमारियों को गंभीर होने से पहले रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। किसी भी छिपी हुई बीमारी का समय पर पता लगाकर सही इलाज और लाइफस्टाइल में बदलाव के जरिए बड़ी बड़े खतरे जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज़ को टाला जा सकता है। श्रोताओं, कई गंभीर बीमारियां शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखाती, पर हाँ, रेगुलर जांच से इनका पता शुरू में ही लग जाता है। अगर बीमारी शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए तो उसके इलाज का खर्च और शारीरिक परेशानी एडवांस स्टेज के मुकाबले काफ़ी कम होती है। सामान्य तौर पर हम सभी को डॉक्टर की सलाह से कुछ बेसिक टेस्ट करवा ही लेने चाहिए, जैसे CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे शरीर में खून की कमी या एनीमिया का पता चल जाता है। साथ ही ब्लड में यदि किसी तरह का इन्फेक्शन फैल रहा हो तो वह भी मालूम हो जाता है। इसलिए अपने डॉक्टर से परामर्श कर समय समय पर अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। श्रोताओं, अपने सेहत की देखभाल करें और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के जरिए बीमारी की पहचान करके सही इलाज सही समय पर शुरू करें। फिलहाल लीजिए म्यूजिक थेरेपी, तन और मन की अच्छी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: श्रोताओं, अब समय हो गया है भेंट वार्ता का। आइए आपको सुनवाते हैं फिजियोथेरेपी से बेहतर स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर प्राची साठे से मनीष गजभिये की बातचीत।
1: स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में स्वागत है आपका, मैं हूं मनीष गजभिये। श्रोताओं, फिजियोथेरेपी चिकित्सा विज्ञान की एक ऐसी महत्वपूर्ण विधा है जो न केवल चोट या बीमारी के बाद शरीर को जल्दी स्वस्थ होने में मदद करती है, बल्कि व्यक्ति को पुनः अपनी सामान्य दिनचर्या में लौटाकर एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। फिजियोथेरेपी के माध्यम से स्वास्थ्य को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्राची साठे को। प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
3: प्राची जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में कि आखिर फिजियोथेरेपी क्या है और यह कितनी ज्यादा जरूरी है अगर हम मानव स्वास्थ्य की बात करें तो।
2: नमस्कार। फिजियोथेरेपी मेडिसिन की एक ऐसी विधा है जिसमें मूवमेंट या फिर हमारे शरीर की हालचाल से संबंधित उपचार किए जाते हैं। इसमें मुख्यतः उन बीमारियों का उपचार किया जाता है जो मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति हैं जिनके हाथों पैरों में जकड़न है, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई इंजरी हो गई है जिसके बाद उनको हाथों पैरों में कोई परेशानियां हैं, उस तरह के उपचार हम फिजियोथेरेपी में मुख्यतः रूप से करते हैं। फिजियोथेरेपी का अगर हम बात करें तो हर फील्ड में एक अलग स्पेशलाइजेशन है जिसका कि अलग तरह से उपचार किया जाता है। मानव स्वास्थ्य के संबंध में तो इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। मानव स्वास्थ्य हर उन चीज़ों से संबंधित होता है जो कि व्यक्ति को उसी दिशा में वापस कार्यरत करने में हेल्प करे जिसमें वो पहले से कार्य कर रहा था। उसके नॉर्मल कार्य से थोड़ा भी अगर वो डेविएट होता है तो उसको वापस उसी विधा में जाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों में आते हैं। डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में हमें कई बार उन चीज़ों की ज़रूरत हमें समझ में नहीं आती जो स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं अगर हम स्वस्थ हैं। पर अगर आपका स्वास्थ्य से समझिए आपका सर दर्द ही हो रहा है तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि सर दर्द से निवारण के लिए हमें किस डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। तो उसी तरह से अगर हमें मूवमेंट रिलेटेड कोई भी परेशानियां हैं तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट से संबंधित किसी एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके उस संबंध में उससे निराकरण कराना चाहिए।
3: जी, बहुत अच्छी बात की आपने। और निश्चित तौर पर फिजियोथेरेपी जो है बहुत अहम भूमिका निभा रही है अगर हम मानव स्वास्थ्य की बात करें तो। और हम आपसे जानना चाहेंगे आजकल किन समस्याओं में लोग सबसे ज्यादा फिजियोथेरेपी की जरूरत महसूस कर रहे हैं।
2: समस्याओं में तो हर तरह की मनीष जी समस्याएं हो सकती हैं। फिजियोथेरेपी की जो विधाएं हैं वो बहुत अलग अलग हैं, इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे कार्डियो रेस्पिरेटरी, मेरा खुद का स्पेशलाइजेशन जैसे स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स संबंधित विधाओं में, या ऑर्थोपेडिक संबंधित विधाओं में, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर संबंधित विधाओं में, अलग अलग चीजों में इसका अलग अलग रोल होता है। तो जिस प्रकार पहले समस्या आती है उस तरह से स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास कोई पर्सन जा सकता है। जैसे कि आजकल देख रहे होंगे कि स्ट्रोक की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है जिसमें कि शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। उस पैरालिसिस के बाद भी फिजियोथेरेपी में ऐसे उपाय हैं जिससे कि नॉर्मल

0: नॉर्मल डे टू डे लाइफ में और उसके पुराने जो कार्यरत है जिस क्षेत्र में उसमें उसे वापस जाने में मदद मिले। तो कई तरह की हमें ऐसी स्पेशल टेक्निक्स हैं हमारे पास जिससे कि हम उस स्ट्रोक से संबंधित पर्सन का भी वापस बैक टू नॉर्मल जाने में उनको मदद कर सकते हैं
1: जी।
0: इसी तरह से कार्डियो रेस्पिरेटरी संबंधित, इसके अलावा स्पोर्ट्स से संबंधित हम बात करें तो स्पोर्ट्स में तो फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस तरह से है कि सुबह से लेकर शाम तक कभी भी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत हो सकती है, कभी भी इंजरी हो सकती है। अगर पर्सन खेल के आ चुका है उसके बाद भी उसके मांसपेशियों में जकड़न रहती है जिसका निराकरण फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग विधाओं में, अलग अलग ब्रांचेस में और अलग अलग स्पेशलाइजेशन के थ्रू हम फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में कार्य करते हैं
1: जी। और बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी कितनी ज्यादा उपयोगी है?
0: आपने देखा होगा कि बुजुर्ग अपने घर के एनवायरमेंट में जितना मूवमेंट करते हैं उतना ही कभी कभार बहुत हो जाता है। डे टू डे लाइफ में उनको मोबिलिटी प्रदान करने के लिए और एक मूवमेंट के पैटर्न को बनाए रखने के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके स्पेशलाइजेशन को हम जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी कहते हैं जिसमें कि वृद्ध जनों के समस्याओं से रिलेटेड उनको एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। हम बैलेंस के ऊपर काम करते हैं वृद्धजनों में, उनकी मोबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, उनकी मांसपेशियों की जो स्ट्रेंथ होती है उसको बनाए रखने के लिए, उनकी कोशिकाओं की मोबिलिटी को बनाए रखने के लिए हम अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस उनको बताते हैं
1: जी।
0: तो अगर हम मूवमेंट से रिलेटेड बात करें तो अगर जितना वृद्ध जन डे टू डे लाइफ में मूवमेंट करते रहेंगे उनकी बाकी की समस्याएं भी हमने ये देखा है कि कम होती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज उनको कराते रहेंगे तो ये समस्याएं जिनसे वो जनरली पीड़ित रहते ही हैं ये समस्याएं उनको फिर कम आती हैं।
1: अब जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या फिजियोथेरेपी सिर्फ चोट लगने पर ही जरूरी होती है?
0: ऐसा नहीं है मनीष जी, फिजियोथेरेपी का रोल उसके भी अलावा है। जैसे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, जनरल मोबिलिटी बनाए रखने के लिए या फिर मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए, मसल्स का एंड्योरेंस बनाए रखने के लिए, हमारे हार्ट और मांसपेशियों संबंधित स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए फिजियोथेरेपी का इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारा रोल गांव-गांव में जाके जागरूकता फैलाना भी है ताकि और लोगों को फिजियोथेरेपी के महत्वता की पता चले और उसके बारे में और लोग जागरूक हो सकें और ना केवल डॉक्टर के पास बल्कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास आकर भी अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें
1: जी।
0: तो इसका दोनों ही चीजों में बहुत इम्पोर्टेंस है
1: जी। मान के चले किसी का सामान्य स्वास्थ्य है, वह भी क्या फिजियोथेरेपी के माध्यम से अपना स्वास्थ्य बेहतर कर सकता है?
0: जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिजियोथेरेपी के माध्यम से नॉर्मल स्वास्थ्य को भी अच्छा किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जॉइंट की मोबिलिटी की, तो जॉइंट की मोबिलिटी बनाए रखने में फिजियोथेरेपिस्ट का जो नॉलेज है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप जनरल एक्सरसाइजेस करेंगे डे टू डे लाइफ में, जैसे हम बचपन में पीटी किया करते
1: बिल्कुल,
0: थे
1: बिल्कुल।
0: वैसे ही अगर आज युवा भी इस प्रकार की रेगुलर एक्सरसाइजेस करता है तो उसकी जागरूकता बनाए रखने में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मैं मानती हूँ कि ना केवल इंजरी होने पे या फिर कोई बीमारी होने पे ही फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंट रोल है बल्कि उसके अलावा भी जागरूकता बनाने में और डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी और मोबिलिटी बनाए रखने में भी फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंट रोल है
1: जी। प्राची जी, अभी आपने युवाओं की बात करी तो अक्सर अभी देखा गया कि आज के दौर में युवा जो है अत्यधिक मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं जिससे कि उनको स्वास्थ्य संबंधी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेगी कि वह किस तरह से इस तरह की परेशानियों से निजात पा सकते हैं या उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए?
0: आज के युग में मैं युवाओं को ये नहीं कह सकती कि आप इन सारी चीज़ों का उपयोग ना करें, पर इन सारी चीज़ों के उपयोग का जो समय है वो निर्धारित ज़रूर किया जा सकता है। आज का युवा रात को देर रात 2 या 3 घंटे ये सारे गैजेट्स का उपयोग करते हैं जिसकी वजह से जकड़न संबंधित समस्याएं, मांसपेशियों संबंधित समस्याएं आती हैं। इसके अलावा आँखों से संबंधित परेशानियाँ भी शुरू हो गई हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इन सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का उपयोग बाधित तो नहीं करना चाहिए पर कुछ समय निश्चित करके इनको उपयोग करना चाहिए। जो ये सारे गैजेट्स हैं, इनका उपयोग फिजियोथेरेपी के फील्ड में भी हो रहा है, जैसे वीआर करके, या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हम पेशेंट्स को देते हैं, ये सारी चीज़ें उपयोगी हैं, पर इनका निर्धारित समय में उपयोग हम अगर करें तो ये हमारे लिए उपयोगी साबित होंगी।
1: जी प्राची जी, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स का फर्क कितना ज़्यादा पड़ा है फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में, और वो कितनी ज़्यादा कारगर है?
0: कई फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स भी होते हैं जिन पे स्पेशल टेक्नोलॉजी की अलग अलग मशीनें उपलब्ध होती हैं, तो ये मशीनें घर पे उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। किसी भी प्रकार की बीमारी या फिर इंजरी अगर हुई है किसी पर्सन को, तो उसके लिए कुछ दिनों तक फिजियोथेरेपी क्लिनिक या फिर उससे संबंधित हॉस्पिटल में पर्सन को जाना चाहिए और उसका एक प्रॉपर असेसमेंट और उसकी डायग्नोसिस जो फिजियोथेरेपिस्ट करके दे रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ दिन एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में जरूरी होती है। अगर ये सही ढंग से पेशेंट को समझ आ जाती है या पर्सन को समझ आ जाती है कि हमें एक्सरसाइज किस तरह से करनी है, तो फिर वो एक्सरसाइजेस घर पे भी की जा सकती हैं। कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट की उपस्थिति में ही करना जरूरी होती हैं, जिनको फीडबैक की जरूरत होती है कि फिजियोथेरेपिस्ट देखे कि क्या ये एक्सरसाइजेस सही ढंग से की जा रही हैं या नहीं। और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जिनको कि घर पे भी बहुत आराम से किया जा सकता है, घर पे उपस्थित चीजों की मदद से भी। तो हम कुछ एक्सरसाइजेस घर के लिए भी बताते हैं और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट के प्रोफेशनल हेल्प के साथ ही की जाती हैं। तो दोनों की उपयोगिता अलग अलग होती है, केवल घर पे या फिर केवल क्लिनिक में ही हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करें ऐसा नहीं होता। तो हमें दोनों की उपयोगिता समझनी है।
1: जी अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमें कब तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करना चाहिए या किस कंडीशन में हमें उनसे संपर्क करना चाहिए?
0: स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी समस्याएं होती हैं उसका सबसे पहला जो पर्सन होता है जो उसको रिस्पॉन्ड करता है वो फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है। तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही उस समस्या के निराकरण के लिए एथलीट आते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट उनको बाकी की विधाओं के पास भेजते हैं, जैसे आपको मेडिसिन के डॉक्टर की आवश्यकता है या फिर आपको रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है या फिर आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होता है उसको सबसे पहले रिस्पॉन्ड करना होता है अपने प्लेयर की इंजरी को, उसके बाद ही बाकी जगह जा सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरी विधाओं की भी अगर हम बात करें तो ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट भी इसी प्रकार के कार्य से संबंधित होते हैं कि अगर उनको घुटने में किसी प्रकार का दर्द है किसी पेशेंट को, तो वो सबसे पहले जाके फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास वो सारी नॉलेज और वो सारे स्किल्स होते हैं जिसकी मदद से वो उस बीमारी को पता लगा सकता है। अगर उस बीमारी का पता हमें फिजिकल एग्जामिनेशन या मतलब छू के या फिर अलग अलग तरह के मूवमेंट करके अगर डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो उनको डॉक्टर के पास रेफर कर सकते हैं या फिर रेडियोलॉजिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं कि आप इन इन चीजों के ऊपर एक्सरे, एमआरआई या फिर ये सारी चीजें करवा लीजिए ताकि आपका करेक्ट डायग्नोसिस हो जाए।
1: जी जी जी।
0: तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी या फिर डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट को ही आप जाके अप्रोच कर सकते हैं।
1: जी कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते प्राची जी, श्रोताओं के लिए आपका एक सरल स्वास्थ्य मंत्र क्या होगा?
0: सरल स्वास्थ्य मंत्र ये है कि आप जितना मूवमेंट कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में उतना करते रहिए, जिससे आपकी मांसपेशियां स्वस्थ रहेंगी, निरोगी रहेंगी और आपका मूवमेंट प्रॉपर रहेगा, जिससे आपको कोई बीमारी नहीं हो पाएगी।
1: जी प्राची जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आपने फिजियोथेरेपी से बेहतर स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर प्राची साठे से मनीष कजबीये की यह बातचीत सुनी। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अब समय है क्रम हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। आज हम बात करेंगे एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी के बारे में। यह टेक्नोलॉजी एक पहनने योग्य उपकरण है। यह मनुष्य की प्राकृतिक ताकत, सहन शक्ति और गतिशीलता को बढ़ाता है। यह तकनीक सेंसर, मोटर और AI से संचालित होती है। यह तकनीक चिकित्सा से लेकर औद्योगिक और सैन्य क्षेत्रों में भी इंसानी क्षमता को पावर दे रही है। आखिर यह तकनीक इंसान की पावर कैसे बढ़ा रही है? दरअसल एक्सोस्केलेटन धातु और प्लास्टिक जैसे सख्त पदार्थों से बने होते हैं। ये लकवा या रीढ़ की हड्डी की चोट वाले मरीजों को खड़े होने और चलने में मदद करते हैं। लकवा की समस्या हो या स्पाइन में समस्या हो, ऐसे मरीजों को दोबारा चलने में मदद मिलती है। यह तकनीक दिमाग और पैरों के बीच बिगड़े हुए तंत्रिका तंत्र को सुधारने में भी उपयोगी है। निश्चित तौर पर यह तकनीक चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया एक सराहनीय कार्य है। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले चरण में चलते हैं और सुनते हैं एक और मधुर गीत।

अब बारी है हेल्थ टिप्स की। श्रोताओं, सेहतमंद बने रहने के लिए कुछ माइक्रो हेल्थ हैबिट्स यानी ऐसी छोटी आदतें अपनाना बेहतर हो सकता है जिसे रोज करना आसान भी हो। जैसे सुबह उठते ही 250 से 300 ml पानी पिए, जिससे रात भर का डिहाइड्रेशन दूर हो सके। दिन भर छोटी छोटी मूवमेंट करते रहें, जैसे खड़े होना, चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर टहलना। खाने के तुरंत बाद की गई वॉक से हमारा वजन नियंत्रित रहता है तथा इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी मजबूत होता है। इसलिए खाने के बाद तुरंत लेटे नहीं, कम से कम 10 मिनट का वॉक तो ज़रूर करें। श्रोताओं, जीवन जीने का सही तरीका यह है कि अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। बीमारी के दौरान बीता हर पल हमें स्वास्थ्य की कीमत बता देता है। स्वास्थ्य और खुशी का रहस्य है समय पर सोना, सही खाना और तनाव से दूर रहना। श्रोताओं, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। घड़े की सुइयों का इशारा समझते हुए हम समेटते हैं आज का कार्यक्रम। तो दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त पूर्णिमा दुबे को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, सुनते हैं कुछ संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे देवीदास कुशवाहा और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। पहले सुनते हैं देवीदास कुशवाहा और साथियों का गाया ये भजन।

0: देवीदास कुशवाहा साथियों के गाए इस भजन के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे भारती विश्वनाथन की गाई गजलें।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दो बज चुके हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत साहेब बीबी और गुलाम। लीजिए पहला गीत सुनिए इस फिल्म से। आवाज गीता दत्त की, शकील बदायनी का गीत है और संगीत हेमंत कुमार का।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 24 जुलाई तक चलने वाले सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट के साथ समान नागरिक संहिता यूसीसी सहित कुल 14 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। समान नागरिक संहिता के मुख्य प्रावधानों के तहत एक से अधिक विवाह वैध नहीं होगा। महिलाओं और पुरुषों को समान उत्तराधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक महीने के अंदर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। वहीं विवाह का पंजीकरण अब गांव स्तर तक भी अनिवार्य होगा। जनजाति समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे पूर्व आज विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सहभागिता की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। संसद का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए अपने 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मानसून हो या फिर मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मानसून सत्र के पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि संसद में कई अनुभवी सदस्य मौजूद हैं। वे किसी भी दल के हों, लेकिन उनके अनुभवों की आवश्यकता सदन को हमेशा रहती है।
2: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
1: राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज से ई बसों का 5 दिवसीय ट्रायल रन शुरू हो गया है। बैरागढ़ स्थित डिपो से निकली इन बसों का संचालन 3 प्रमुख मार्गों पर किया जा रहा है, ताकि अगस्त माह से आम यात्रियों के लिए इनकी नियमित सेवा शुरू हो सके। भोपालवासियों को जल्द ही प्रदूषण मुक्त और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है। आज सुबह बैरागढ़ डिपो से ई बसों को 3 अलग अलग रूटों पर ट्रायल के लिए रवाना किया गया। गौरतलब है कि एक दिन पहले रविवार को जगदीशपुर में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्रिमंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इन्हीं 3 ई बसों में सवार होकर पहुंचे थे। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी बनी हुई है। प्रदेश के करीब 90% हिस्से में 23 जुलाई तक हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान 4 से 5 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। आज दमोह, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 47 जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। इस अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सहेजे। इस अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्धार तथा रिचार्ज पिट व चेक डैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर जोर दिया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के शासकीय आईटीआई में सत्र 2026-27 की रिक्त सीटों पर प्रवेश व चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 25 जुलाई तक आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण या सुधार कर सकते हैं। जबलपुर नगर निगम द्वारा पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रांझी के उमरिया क्षेत्र की 20 एकड़ शासकीय भूमि पर नगर वन विकसित किया जाएगा। गुना में माय भारत द्वारा राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान चलाया जा रहा है। और नर्मदापुरम जिले में चलाए जा रहे दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत कलेक्टर ने ग्राम रोहना पहुंचकर पशुपालकों से संवाद किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the house to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the house.
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
5: मालदोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मालदोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई तीन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
6: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
7: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

नमस्कार। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला नगमा खानदान फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, नक्श लयालपुरी का गीत और संगीत खयाम का। इस गीत को पसंद किया है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेंड महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, श्रीमती वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी धोनी गवाणकर परी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। तो सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये।

पैद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश गटनकर, वैशाली गटनकर, छत्तीसगढ़ देवी भटारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश, इन सब ने सुनना चाहा है। काला पत्थर फिल्म का ये नगमा, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, साहिर का गीत और राजेश रोशन का संगीत।

गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, करिश्मा कामले, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। आप सबने पसंद किया है मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का ये नगमा। अनुशी के बोलों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

0: सपना संगीत इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन तानिया और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर महनाज जहां आप सबने पसंद किया है प्रेम जारी फिल्म का ये नगमा आवाज किशोर कुमार की नीरज का गीत और एस डी वर्मन का संगीत
1: तुझको लिखी रोज पाती कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू

तुझसे नहीं तू पास आए आनीन रोका आनीन ठोका दुनिया ने हंसकर पुकारा तस्वीर थी लेकिन ये मैं आया तब से किनारा हाँ बादल बिजली चंदन पानी

किशोर कुमार की आवाज में आप सुनिए रंगोली फिल्म के नगमा। शैलेंद्र के लिखे गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को पसंद किया है दौलत मुरादाबाद से जाफिर हुसैन, नईमा बेगम, कासिमी, नदीम अली, सुनील दासी, कंवर कॉलोनी बड़भासी, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा कटी पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी का गीत और राहुल देव वर्मा का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता है गांधी चौक से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक, मीका विरक, शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार, कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पैंडा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा, श्वेता, दिशा और लवि श्रीवास्तव, जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम।

इसके साथ ही आपकी फरमाइश संपन्न करने की अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत को। नमस्कार, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा के दौरे पर हैं। उन्होंने भारत और मोल्दोवा के बीच कृषि रसद एवं अवसंरचना, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, एआई और नवाचार सहित पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 24 जुलाई तक चलने वाले सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट के साथ समान नागरिक संहिता यूसीसी सहित कुल 14 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। संसद का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चारधाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चारधाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थयात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। पन्ना जिले की मझगवां हीरा खदान से एक बड़ा हीरा मिला है। यह हीरा 13.16 कैरेट का है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। प्रदेश में आज दमोह, मंडला और डिंडोरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल और इंदौर सहित 47 जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ की बारिश हो सकती है। और भोपाल के मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में जनजाति चित्रकार की प्रदर्शनी जारी है, जिसमें भील जनजाति चित्रकार सुनीता पवार के चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी 30 जुलाई तक संचालित रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 180.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर

अच्छा, 5 बजकर 2 मिनट पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5 बजकर 30 मिनट पर, 6:30 बजे और रात 8 बजकर 35 मिनट पर। आजकल ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6 बजकर 40 मिनट पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुन सकते हैं शाम 6:35 पर। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण है फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। सुर्खियों में कार्यक्रम सुनेगा रात 8:15 बजे और रात 8:30 बजे विधानसभा समीक्षा। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम रात 9:30 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुसारित जाएगा और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी। ये थे आपके सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 106.3 मीटर, साथ ही डीटीएच चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी सभा यही संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव 106.3 मीटर पर आप हमारा प्रसारण सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है जिसमें आप सुनेंगे देवीदास कुशवाहा और साथियों के गाए बुलदेवी लोकगीत।

कुशवाहा साथियों के गायस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी। सुनिए भारती विश्वनाथ की गायी गजलें।

भारती विश्वनाथन की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत तमाशा फिल्म से अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजें, इरशाद काबिल का गीत और ए आर रहमान का संगीत।

0: मध्यान्ह में जब हमारी बेटियां लौटी तो हम घटनाक्रम से अवगत हुए। वृंदा तब भी नहीं लौटी थी। हम वृद्ध जन उसकी खोज में लगे। कुछ वन में युवकों तक समाचार पहुंचाने गए। हमारे कुछ युवकों ने आतताइयों का पीछा किया, लेकिन वो तो हमारी पहुंच से बहुत दूर निकल गए थे। महाराज, उस दिन यदि वो नराधम हमें मिल जाते तो न तो वो जीवित रहते और न हमारा ग्राम ही बचता।
1: ग्राम? ग्राम क्यों मुखिया?
0: राज सत्ता सर्वशक्तिमान होती है देवता। राज्य का यही वास्तविक चेहरा है। विद्रोह वो सहन नहीं कर पाता। विद्रोह तो क्या, असहमति के प्रति भी वो असहिष्णु होता है। उस दिन हमने अनुभव किया कि पलायन से अतिरोध अधिक श्रेयस्कर है। कम से कम आने वाली पीढ़ियां तो हमें कायर नहीं कह सकेंगी।
1: फिर क्या हुआ मुखिया?

और हम सब विद्रोही हो गए। राज सत्ता का स्वीकार पलायन नहीं, समर्पण नहीं, केवल असहमति, केवल अतिरोध।

उस दिन से हमारे युवक विद्रोही हो गए हैं। अनिरुद्ध तो लंबी अवधि तक विक्षिप्त रहा, सदा इस प्रश्न के उत्तर को लेकर बेचैन के पाशुपात का प्रयोग हिंसक मनुष्यों पर क्यों नहीं, आपसे उसने यही पूछा है। बैठार के अवंती से कोई संबंध अब नहीं रहे, राज्य का प्रत्येक कर्मचारी यहां से बचता है, बैठार से अवंती कोई नहीं जाता। भर्तृहरि के यशस्वी साम्राज्य में बैठार वैसे ही है जैसे रावण की लंका में विभीषण का घर।

0: जाने क्यों ये विश्वास जाग रहा है कि आपके आशीर्वाद से अनिरुद्ध अपने आघातों को भूल जाएगा।
1: तुमने कुछ उपाय किए मुखिया?
0: हम उपायों को क्या जाने, हम कर भी क्या सकते हैं। आप जैसे तपस्वियों की बात और है। आप ठान लें तो राज्य क्या धरा ही उलट पुलट हो सकती है। हमें तो बस भोगना है, चाहे अच्छा है। अनिरुद्ध किंकर्तव्य विमूढ़ है, उसे पाशुपात का रहस्य समझा दें देवता।
1: महेश्वर शुभ ही करेंगे, मैं भी हर संभव प्रयास करूंगा। मैं अपना संसार पीछे छोड़ आया हूं, फिर भी लगता है कि वो दबे पांव पीछे पीछे चला आ रहा है। अच्छा, रात बहुत बीत गई है, अब आप भी विश्राम करें।
0: उचित है देव, मुझे अनिरुद्ध की चिंता है और उन तरुणों की भी जो क्रोध में अपने बोध से भटक गए हैं। इस चिंगारी की अनदेखी मुझसे नहीं होती।

0: उड़ गया। देखिए तो मैं कि कैसी झड़ी लगी है, रात से ही बादल बरस रहे हैं। दो संवत्सर से प्यासी धरती रस से सराबोर हो रही है। ये आपकी चरण रज का प्रताप है मान्यवर।
1: मुखिया, पहले भी मैं कह चुका हूं कि मैं कोई सिद्ध साधक नहीं हूं, मैं अपने गृह और संसार को त्याग कराने वाला आप ही के जैसा एक साधारण मनुष्य हूं। आप विश्वास क्यों नहीं करते?
0: देव, मैं जानता हूं कि चमत्कारी सिद्ध ऐसी ही अटपटी वेशभूषा का व्यवहार करते हैं ताकि लोग उन्हें बावरा समझें और दूर रहें। आप तपस्वी हैं, आपके पास सिंहासनों को लात मारने का सामर्थ्य है, मेरु सागर भी आपका मार्ग नहीं रोक सकते। अरे शची आ रही है।
2: प्रणाम देवता। मुखिया, मुझे विलंब तो नहीं हुआ? आज्ञा करें, मुझे क्या करना है?
0: समय पर ही आई हो शची। हम लोग खेतों की ओर निकल रहे हैं, वर्षा का जल भरा होगा, मेड़ बंध आदि ठीक करने होंगे ना। यहां महाराज की सेवा में तुम्हें रहना है
1: शची। ओह शची को देखकर क्या हो जाता है भर्तृहरि तुम्हें? नरेश के रूप में तुम आत्म वंचक रहे, साधु वेश में भी प्रवंचना से मुक्त नहीं हो पाए हो। कामिनी और कंचन के पंख में धसे फंसे घृणित कीट। वीरभद्र, मैं भी साथ चलता हूं, प्रातः क्रिया स्नान ध्यान करना होगा।
0: जैसे प्रभु की इच्छा। चलिए महाराज, चाहे तो शची को भी साथ ले लें, वापसी में मार्गदर्शन कर सकेगी।
1: आवश्यकता नहीं है, मैं आ जाऊंगा अकेला ही। हाँ, और भस्म उपलब्ध हो सकेगी?
0: आपकी धुनी की व्यवस्था यहीं ओसारे में हो जाएगी। जब तक लौटेंगे शची यहाँ उपले लगा देगी और आँच जला देगी। कोई अन्य आवश्यकता हो तो शची को आगे दें। शची, तपस्वी जी का ध्यान रखना।
2: जी मुखिया जी।
1: लगता है ग्रामीणों का दल लौट कर आ पहुंचा है। वीरभद्र, कहां गए थे ये सब?
0: अनिरुद्ध को खोजने, कल रात से ही पता नहीं कहां है। यही करता है वो, अपनी सनक में अकेला ही भटकता रहता है। फिर अभी तो कारण भी था, रात में हुई धृष्टता के कारण आपके सामने आने में सकुचा रहा होगा। बहुत संवेदनशील भी है। अब चले महाराज, इस और आए। शची, महाराज के लौटने तक सारी व्यवस्था कर लेना।
2: मैंने कह दिया ना, मैं सब कुछ कर दूंगी, आप निश्चिंत रहे मुखिया जी।
1: मुखिया, मैं देख रहा हूं कि सभी गांव वाले हसिया, खुरपी, दराती, दंड, परुष आदि से सज्जित हैं। कुछ तो धनुष बाण और तेंगा भी लिए हुए हैं, ऐसा क्यों?
0: इन सब जीवों की आसपास उपस्थिति का आभास इन्हें स्वाभाविक लगता है। यद्यपि इस घोर वर्षा काल में अश्वारोही दस्युओं और राजसेवकों का यहां आना दुष्कर है, किंतु पहले की दुर्घटना अनुभव कोश में अमिट है। वो निरंतर सजग और सन्नद्ध रहते हैं।
1: पुरुषों की भांति स्त्रियां भी?
0: हाँ, मैंने आपको वृंदा और शची के विषय में बताया था। शची खड़ग संचालन और धनुर्विद्या में समान रूप से पटु है देव, उसकी तरह अन्य भी।
1: शची, ओह शची को देखकर क्या हो जाता है भर्तृहरि तुम्हें? वीरभद्र, अब हमारे प्रस्थान का समय आ गया है, हमें जाना होगा यहां से। आप हमें मार्ग और दिशा की जानकारी देंगे?
2: कहाँ जाएंगे सन्यासी? माल भी नहीं मिलेगा, चारों ओर जल ही जल है। समतल सतह के कारण यह अनुमान भी संभव नहीं है कि इस प्लावन की गहराई कहाँ तक है। पग पथ पर डूबे हुए हैं, केवल पादपों के उठे हुए शीर्षों से आभास होता है कि इधर राह हो सकती है। आप तो घिर गए हैं देवता, वो भी हमारे सौभाग्य से।
1: किंतु मुझे जाना ही होगा।
0: तीन चार दिन तक तो यह संभव नहीं है देवता। इंद्र की अनुकंपा से आपके सानिध्य का यह सुअवसर हमें मिला है। हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, कथाएं, नीतियां, जीवन के अनुभव। महाराज, यहां से पथ मुड़ता है, उस ओर नदी है, हमारे खेतों की राह इधर से है, आप पहुंच तो जाएंगे।
1: हाँ वीरभद्र, मैं चला जाऊंगा।
0: कृपया अधिक विलंब न लगाएं और गांव छोड़कर जाने का अभी ना सोचें। अनिरुद्ध के प्रश्न का उत्तर उसे अभी नहीं मिला है, उसे आपके वात्सल्य की आवश्यकता है देवता।

अभी आप महेश कटारे के उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो प्रस्तुति का पांचवा भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। वाचक सुनील वैद्य, भर्तृहरि, अरविंद बिलगैया, शचि, विभा श्रीवास्तव, वीरभद्र, राकेश जैमिनी और वृंदा सरोज शर्मा। संयोजक राकेश ढोंडियाल, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको याद होगा कि कोई राजा भर्तृहरि के अश्व नीलमणि को घायल अवस्था में आचार्य नागदत्त के आश्रम में छोड़ जाता है। नीलमणि यहाँ ठीक हो जाता है। उसे अवंती पहुंचाने का दायित्व चंद्रसेन को सौंपा जाता है। अगले भाग में चंद्रसेन और नीलमणि के साथ हम अवंती चलेंगे।

0: नमस्कार, मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन ही राज्य सरकार ने सदन में समान नागरिक संहिता यूसीसी सहित कई विधेयक पेश किए। मंत्री गौतम टेटवाल ने मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2026, मध्य प्रदेश उपकर संशोधन अध्यादेश 2026 सदन के पटल पर रखे। वहीं संसद का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो गया। 25 दिन चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी के पुनर्गठन के बारे में निर्देश लें। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चारधाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर सुरक्षा कारणों को देखते हुए चारधाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी संदेश का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने नए मसौदा नियम बनाए हैं जिनके कारण 11 करोड़ टीवी चैनल बंद हो जाएंगे तथा केबल और डीटीएच शुल्क 4 से 6 गुना बढ़ जाएंगे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के भिंड, मुरैना, अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और टैलेंट सर्च अभियान के तहत एथलेटिक्स के तहत के चयन ट्रायल्स आज से 22 जुलाई तक भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में हो रहे हैं, जिसमें बालक और बालिका दोनों वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

साथियों, अभी आपने सुना गीत फिल्म ये जवानी है दीवानी से, जिसमें स्वर थे रेखा भारद्वाज और विशाल ददलानी के। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की करते हैं। दोस्तों, आज इंटरनेशनल मून डे है, जो कि हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। दरअसल बात 20 जुलाई 1969 की है, जब अमेरिका की अपोलो 11 मिशन में के तहत नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन नाम के दो अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। इसी ऐतिहासिक और गर्व से भर देने वाले कामयाबी को हमेशा याद रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2021 में एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके बाद 20 जुलाई 2022 को पहली बार ये खास दिन पूरी दुनिया में मनाया गया। इस दिन को शुरू करने का असली मकसद सिर्फ पुरानी कामयाबी का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि आज की नई पीढ़ी को स्पेस साइंस से जोड़ना और भविष्य में चाँद पर इंसानों को बसाने और वहाँ रिसर्च करने के नए रास्तों पर चर्चा करना है। बात करें इस दिन को मनाने के मोटिव के बारे में, तो इसमें सबसे पहला है ऐतिहासिक कामयाबी को याद रखना। दोस्तों, ये दिन 20 जुलाई 1969 को चांद पर रखे गए इंसानी पहले कदम का जश्न मनाता है, ताकि दुनिया हमेशा नील आर्मस्ट्रांग की इस महान सफलता और विज्ञान की ताकत को याद रख सके। इसमें दूसरा है नई पीढ़ी को विज्ञान के लिए प्रेरित करना। इसका एक बड़ा मकसद स्कूल और कॉलेज के बच्चों को स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ाने और अंतरिक्ष यात्री बनाने के सपनों को पूरा करने के लिए हौसला देना है। दोस्तों, इसमें आखिरी है दुनिया में एकता बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र इस दिन के जरिए संदेश देता है कि अंतरिक्ष किसी एक देश का नहीं है, इसीलिए दुनिया के सभी देशों को आपसी मतभेद भुलाकर चांद की खोज में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। साथियों, ऐसे हमने जाना इंटरनेशनल मून डे के बारे में। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत फिल्म हॉलीडे से, जिसमें स्वर थे कुणाल गांजेवाला के, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है प्रीतम का। दोस्तों आइए अब जानते हैं इंटरनेशनल चेस डे के बारे में, जो हर साल 20 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक विशेष दिन है। ये दिन दुनिया में शतरंज की सबसे बड़ी संस्था इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की याद में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को फ्रांस के पेरिस शहर में हुई थी। इस खास दिन की शुरुआत और इसका इतिहास FIDE के गठन के बाद आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे बड़ी आधिकारिक मान्यता दी और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस घोषित कर दिया। दोस्तों आज दुनिया के 175 से ज़्यादा देशों में बड़े बड़े ऑनलाइन और ऑफलाइन टूर्नामेंट आयोजित करके इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है। बात करें इस खेल के इम्पोर्टेंस की, तो इसमें सबसे पहला है दिमाग को तेज़ और एक्टिव रखना। शतरंज खेलने से हमारे दिमाग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ये हमारी सोचने की क्षमता और मेमोरी को तेज़ करता है। दोस्तों नियमित रूप से इसे खेलने से बुढ़ापे में अल्जाइमर का ख़तरा बहुत कम हो जाता है। वहीं दूसरा है सही फैसले लेने की कला सीखना। शतरंज का खेल हमें असली ज़िंदगी में भी सही और गलत का फैसला लेना सिखाता है। इस खेल में खिलाड़ी को अपनी चाल चलने से पहले उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचना पड़ता है। इससे इंसान में दूरदर्शिता आती है और वो लाइफ में भी सोच समझ कर कदम उठाता है। दोस्तों इसमें अगला है धैर्य और फोकस बढ़ाना। चेस खेलने के लिए कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है। ये खेल हमें शांत रहना, सब्र करना और मुश्किल समय में भी बिना घबराए समस्याओं का हल निकालना सिखाता है। वहीं बात करें इस दिन को मनाने की, तो इंटरनेशनल चेस डे को मनाने का सबसे अच्छा तरीका छोटे बड़े टूर्नामेंट्स करवाना है। इस दिन दुनिया भर के स्कूल, कॉलेज और लोकल क्लब्स में बच्चों और बड़ों के लिए खास चेस कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं। साथ ही इंटरनेट पर भी लोग एक साथ आकर ऑनलाइन मैच खेलते हैं। इस खास मौके पर दुनिया के बड़े बड़े मास्टर खिलाड़ी इंटरनेट पर लाइव आकर नए लोगों को चेस खेलने और जीतने की ट्रिक सिखाते हैं। दोस्तों इस तरह हमने जाना इंटरनेशनल चेस डे के बारे में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत फिल्म तू झूठी मैं मक्कार से, जिसमें स्वर थे अरिजीत सिंह और चरण के। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं प्रीतम। साथियों आइए अब जानते हैं सिंथेटिक मीडिया क्या होता है और इससे होने वाले खतरों के बारे में। बात करें सिंथेटिक मीडिया की तो इसका सीधा मतलब है ऐसे डिजिटल कंटेंट जिससे इंसानों ने कैमरे या रिकॉर्डिंग से नहीं बनाया हो, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार या फिर बदला गया है। जब कंप्यूटर प्रोग्राम और एआई का इस्तेमाल करके कोई ऐसी फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो या टेक्स्ट बनाया जाता है जो दिखने में और सुनने में बिल्कुल असली लगता है, उसे सिंथेटिक मीडिया कहते हैं। इसे बनाने के लिए किसी असली इंसान या असली जगह की ज़रूरत नहीं होती है। ये तकनीक इतनी उन्नत है कि इसके ज़रिए बनाए गए काल्पनिक चीज़ें भी पूरी तरह असली और सच लगती हैं। जैसे डीप फेक्स, इसमें किसी की वीडियो में एक इंसान के चेहरे की जगह दूसरे इंसान का चेहरा इस तरह लगा दिया जाता है जिससे पहचानना मुश्किल हो जाए। डिजिटल लोग या एंकर जो असल में दुनिया में मौजूद नहीं हैं लेकिन वीडियो में खबर पढ़ते या बात करते दिखाई देते हैं। दोस्तों इसमें अगला है वॉइस क्लाउनिंग। किसी इंसान की सिर्फ कुछ सेकंड की आवाज़ सुनकर एआई के ज़रिए हूबहू उसकी आवाज़ नकली बनाकर तैयार कर लेना। दोस्तों इसमें अगला है एआई आर्ट और इमेजेस। इसमें सिर्फ लिखकर या टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर ऐसी तस्वीरें बनाना जो दिखने में बिल्कुल असली फ़ोटो जैसी लगे। आइए बात करते हैं कि इससे हमें क्यों बचना चाहिए। दोस्तों सिंथेटिक मीडिया सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये तकनीक असली और नकली के फ़र्क को पूरी तरह ख़त्म कर देती है, जिससे किसी को भी आसानी से धोखा दिया जा सकता है। और इसमें स्कैमर्स आपकी आँखों और कानों को ऐसा धोखा देते हैं कि आप चाहकर भी शक नहीं कर पाते। दोस्तों सिंथेटिक मीडिया के ज़रिए होने वाले स्कैम्स देश भर में हो रहे हैं और इसमें सबसे पॉपुलर स्कैम आते हैं नकली और इमरजेंसी वॉइस कॉल। आजकल स्कैमर सिर्फ 5 से 10 सेकंड की ऑडियो सैंपल देकर एआई की मदद से किसी की भी हूबहू आवाज़ बना लेते हैं। इसके बाद वे आपके माता पिता या करीबी को फ़ोन करते हैं। फ़ोन पर रोने या घबराने की आवाज़ में कहा जाता है कि मैं मुसीबत में हूँ, मुझे तुरंत पैसे भेजो। आवाज़ बिल्कुल अपने इंसान जैसा होने के कारण परिवार वाले घबरा जाते हैं और बिना सोचे समझे तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। बता दें कि सिर्फ आवाज़ ही नहीं बल्कि वीडियो कॉल पर भी धोखा दिया जा रहा है, जिसे डिजिटल अरेस्ट या फिर अथॉरिटी फ्रॉड कहते हैं। दोस्तों इसमें ठग किसी बड़े पुलिस ऑफिसर, सीबीआई अधिकारी या बैंक मैनेजर का नकली चेहरा बनाकर आपको वीडियो कॉल करते हैं और आपको डराते हैं कि आपके नाम से कोई गैरकानूनी पार्सल मिला है या फिर आपका अकाउंट बंद होने वाला है। ऐसे में लोग सामने वाले को असली ऑफिसर मानकर डर जाते हैं और अपनी पूरी डिटेल्स उन स्कैमर को देकर अपना बैंक अकाउंट खाली कर बैठते हैं। दोस्तों आगे जानेंगे कि इन फ्रॉड से किस तरह से बचा जा सकता है, लेकिन आइए पहले सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे गीत फिल्म स्काई फोर्स से, जिसमें स्वर थे सतिंदर सरताज और जरा खान के। गीतकार हैं श्लोके लाल और संगीतकार तनिष बागची। साथियों, अब जान लेते हैं कि इन फ्रॉड और स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं। सिंथेटिक मीडिया के फ्रॉड से बचने का सबसे सीधा तरीका ये है कि किसी भी हड़बड़ी वाले फ़ोन या फिर वीडियो कॉल पर तुरंत भरोसा ना करें और शांत दिमाग से काम लें। जब भी कोई करीबी फ़ोन पर पैसे मांगे तो उसे खुद से कॉल करके सच्चाई का पता लगाएं। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा कोई धोखा हो जाता है तो बिना डरे तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करके साइबर पुलिस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, ताकि आपके पैसे सुरक्षित रहें। साथियों, समय हो गया है रोज़गार सूचना का। IBPS द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर के 6715 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम के आखिरी गीत का, आइए सुनते हैं।

0: युवा श्रोता भी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।

ये प्रतिदिन आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम नमस्कार भोपाल प्रतिदिन सुबह 7:20 से।

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत रश्मि सिंह का लिखा हुआ है, जीत गांगुली ने इसे संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम खामोशियां, आवाज़ अरिजीत सिंह की।

कार्यक्रम का अगला गीत यंगिस्तान फिल्म से है, जिसे गाया अरिजीत सिंह ने। जीत गांगुली का संगीत है। इस गीत को लिखा कौशर मुनीर ने।

अगला गीत हमने लिया राहत फ़तेह अली खां की आवाज़ में। इसको लिखा अमजद इस्लाम अमजद ने, संगीत शशि का, फिल्म का नाम पाप।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले ही दिन राज्य सरकार ने सदन में समान नागरिक संहिता और यूसीसी सहित कई विधेयक पेश किए। मंत्री गौतम टेटवाल ने मध्य प्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2026, मध्य प्रदेश उपकर संशोधन अध्यादेश 2026 सदन के पटल पर रखा। वहीं संसद का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो गया। 25 दिन चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और टैलेंट सर्च अभियान के तहत एथलेटिक्स के चयन ट्रायल्स आज से 22 जुलाई तक भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में हो रहे हैं, जिसमें बालक और बालिका दोनों वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है, लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी, तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
2: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीली कील से लिखते थे जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
2: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
2: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओ, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, शीर्षक है न्याय।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
3: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है। अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है। और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
4: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
3: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
5: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
6: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
3: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
5: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
7: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
5: क्या सुंदर होना और सबका

0: प्यारा होना कोई दोष है?
1: प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
0: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
0: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
0: क्यों दे दूं?
4: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
0: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
7: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
0: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
4: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
7: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
8: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
7: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
8: महाराज, मेरा आग्रह है

0: हंस को यहां इस आसन पर बैठाया जाए।
1: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
2: ये हंस कैसे बताएगा?
3: गद्दी पे बैठ कर
4: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
3: इसके पास
4: नहीं
3: जा रहा
4: देवदत्त
3: है।
0: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
5: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
1: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
0: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
6: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
1: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
7: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज की जय हो,
9: महाराज की जय हो,
10: महाराज की जय हो।
11: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद चांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए है। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम् आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: वत्स श्वेत केतु।
1: आज्ञा दत्त,
0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
0: मैं समझाता हूं
1: जी।
2: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।
0: श्वेत केतु।
1: जी पिताजी।
0: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी।
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उस

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जीतात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: राह फलता।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है। तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबा कोचर प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत दबंग फिल्म से लिया है, जिसे गाया राहत फतेह अली खान ने। फैज़ अनवर के बोलों को संगीतबद्ध किया साजिद वाजिद ने।

0: रब ने बना दी जोड़ी इस फिल्म के गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है प्रदेश का गौरव किंग ऑफ मैंगो नूर जहां आम। आलेख श्री अनिल वशिष्ठ, आप जनसंपर्क विभाग में सहायक जनसंपर्क अधिकारी हैं।

भारत को आमों का देश कहा जाता है और मध्य प्रदेश इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला प्रमुख राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश की जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और विविध भौगोलिक परिस्थितियां आम उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जाती हैं। यही कारण है कि यहां दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर, आम्रपाली, अल्फांसो और तोताफरी जैसी अनेक प्रसिद्ध किस्मों के साथ साथ एक ऐसी अनोखी किस्म भी पैदा होती है जिसने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है। ये विशेष किस्म है नूरजहां आम, इसे किंग ऑफ मैंगो भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा क्षेत्र में पैदा होने वाला नूरजहां आम अपने विशाल आकार, अद्वितीय स्वाद और आकर्षक स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। इसे दुनिया के सबसे बड़े आमों में गिना जाता है। सामान्यतः एक नूरजहां आम का वजन लगभग 2 से 5 किलोग्राम तक होता है। इसका आकार इतना बड़ा होता है कि एक ही आम पूरे परिवार के लिए पर्याप्त माना जाता है। इसका रंग, सुगंध और मिठास लोगों को पहली नजर में आकर्षित कर लेते हैं। बाजार में इसकी मांग विशेष रूप से बड़े शहरों और विदेशों में अधिक है। एक आम की कीमत 1500 से 3000 रुपए तक होती है। नूरजहां आम केवल अपने आकार के कारण ही नहीं बल्कि अपनी दुर्लभता के कारण भी विशेष माना जाता है। इसके पेड़ों पर सीमित संख्या में फल आते हैं, इसलिए इसकी कीमत सामान्य आमों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। कई बार एक फल ही हजारों रुपए में बिक जाता है। यही कारण है कि आम किसानों के लिए लाभकारी फसल के रूप में उभर रहा है। कठीवाड़ा का मौसम और वातावरण इस किस्म के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है, जिससे यहाँ पैदा होने वाले फल विशेष गुणवत्ता वाले होते हैं। माना जाता है कि नूरजहां आम की यह प्रजाति वर्षों पहले अफगान क्षेत्र से भारत पहुंची और बाद में 5वें-6वें दशक में मध्य प्रदेश के मालवा और आदिवासी अंचल झाबुआ में विकसित हुई। अलीराजपुर जिले के ग्राम जूना कठीवाड़ा स्थित शिव बावड़ी आम फार्म के कृषक श्री भरतराज सिंह यादव बताते हैं कि उनके पिता स्वर्गीय रणवीर सिंह यादव लगभग 55 से 60 वर्ष पहले गुजरात के बनमाह क्षेत्र से नूरजहां आम का पौधा लेकर आए थे। उन्होंने अपने खेत में इस पौधे को लगाया और वर्षों की मेहनत से इसे संरक्षित किया। यही पौधा आगे चलकर पूरे क्षेत्र की पहचान बन गया। श्री यादव के अनुसार उनके पिता ने क्राफ्टिंग तकनीक से एक विशेष पौधा तैयार किया था जिसकी वर्तमान आयु लगभग 20 से 25 साल है। इसके अतिरिक्त भरतराज सिंह यादव द्वारा तैयार किए गए 11 ग्राफ्टेड पौधे आज 3 से 5 वर्ष की अवस्था में विकसित हो रहे हैं। आज ये मध्य प्रदेश की विशेष पहचान बन चुकी है। कठीवाड़ा क्षेत्र में नूरजहां आम की ख्याति वर्षों पुरानी है। इसकी विशिष्टता को देखते हुए वर्ष 1999 और 2010 में इसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों ने न केवल किसानों का उत्साह बढ़ाया

के अलीराजपुर जिले को भी राष्ट्रीय पहचान दिलाई। धीरे धीरे यह आम मध्यप्रदेश के उद्यानिकी पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। नूरजहां आम का इतिहास मालवा और पश्चिम भारत की सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि मुगल काल में बड़े आकार और विशेष स्वाद वाले आमों को शाही बागों में विशेष महत्व दिया जाता था। इसी परंपरा से जुड़ी यह किस्म समय के साथ गुजरात और अलीराजपुर झाबुआ अंचल तक पहुंची। आदिवासी बाहुल इस क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और तापमान नूरजहां के लिए अनुकूल सिद्ध हुए, जिसके कारण ये किस्म यहां अच्छी तरह विकसित हुई। झाबुआ और अलीराजपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका संरक्षण किसानों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी किया जा रहा है। विदेशों में भी नूरजहां आम की विशेष मांग देखी जा रही है। विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे खाड़ी देशों में भारतीय प्रीमियम आमों की अच्छी मांग रहती है। वहां बड़े आकार और आकर्षक स्वरूप वाले आमों को विशेष पसंद किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार और उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत पौधों, ड्रिप सिंचाई और फल प्रसंस्करण के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे प्रदेश में आम उत्पादन बढ़ने के साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। आज मध्यप्रदेश का आम केवल स्वाद का प्रतीक नहीं बल्कि किसानों की समृद्धि, कृषि नवाचार और प्रदेश की वैश्विक पहचान का माध्यम बन चुका है। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।

प्रदेश का गौरव किंग ऑफ मैंगो नूरजहां आम। आजकल में अभी आप सुन रहे थे अनिल वशिष्ठ का आलेख, वाचन दीपा सिंह का था। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं शेख महजबी अलमास। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है ग्वालियर से, जहां लाडली लक्ष्मी योजना जिले में बेटियों के सम्मान, शिक्षा और सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। जिले में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 1,00,000 से अधिक बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया जा चुका है। पेश है हमारे ग्वालियर संवाददाता नवीन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के लिए अच्छी पढ़ाई के साथ उनके भविष्य को सवारने का काम कर रही है। ग्वालियर जिले में भी लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के सम्मान, शिक्षा और सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। जिले में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 1,00,000 से अधिक बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया जा चुका है। इस योजना से लाभान्वित होकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं ग्वालियर की तनुष्का भदौरिया। तनुष्का कहती हैं,
2: इस योजना के माध्यम से मुझे शिक्षा के हर पड़ाव पर, जैसे 6वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश करने का सरकार की ओर से निरंतर छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। इस वित्तीय मदद के कारण मेरे माता पिता पर मेरी पढ़ाई का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ा और मैं बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर पाई हूँ।
1: तनुष्का कहती हैं कि सबसे बड़ी खुशी ये है कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सरकार द्वारा मुझे एकमुश्त 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये राशि मेरे स्वावलंबन की नींव बनेगी।
2: सबसे बड़ी राहत यह बात की है कि जब मैं 21 वर्ष की आयु की पूरी कर लूंगी तब सरकार की ओर से मुझे एक बड़ी एकमुश्त राशि भी मिलेगी, जो मेरे भविष्य की योजनाओं या पढ़ाई या फिर विवाह में एक मजबूत आधार बनेगी। इस योजना से हम सभी बेटियों को बहुत ही मदद मिली है। सरकार से मैं यही कहना चाहूंगी कि यह लाडली लक्ष्मी योजना हमेशा चलती रहे, जिस कारण हम बेटियां आगे बढ़ते हैं।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव।
0: हमारी दूसरी खबर है डिंडोरी जिले से, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में जल संचय एवं जन भागीदारी के माध्यम से विभिन्न जल स्रोतों के जीर्णोद्धार

0: एवं संरक्षण का व्यापक कार्य किया गया। जिले में इस अभियान के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के परिणाम स्वरूप डिंडोरी ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं डिंडोरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया।
1: डिंडोरी जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में जल संचय एवं जन भागीदारी के माध्यम से विभिन्न जल स्रोतों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण का व्यापक कार्य किया गया। जिले में इस अभियान के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के परिणाम स्वरूप डिंडोरी जिले ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत, विकास खंड एवं तहसील स्तर पर बड़े पैमाने पर तालाब, स्टाफ डैम, नाला, खेत तालाब, डगवेल, नदी नाले, नहर, सोकपिट, कंटूर ट्रेंच, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं स्प्रिंग ड्राफ्ट जैसे कार्य संपादित किए गए। साथ ही शासकीय एवं अर्ध शासकीय भवनों में भी वर्षा जल संचयन की व्यवस्थाएं विकसित की गई। अभियान के तहत जिले की 364 ग्राम पंचायतों में जन भागीदारी से जल संरक्षण के कार्य संपन्न हुए, जिसमें कुल 31,21,200 घन मीटर जल संग्रहण क्षमता का विकास हुआ है। इस साल कम बारिश होने से निर्मित संरचनाओं की उपयोगिता दिखाई दे रही है और इनमें जल संचय होने लगा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।
0: हमारी अगली खबर है इंदौर जिले से, जहां बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता मनीष दुबे।
2: इंदौर जिले के सभी शहरी और ग्रामीण विकास खंडों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाएं पहुंचाने के लिए दस्तक अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी है। अभियान में उच्च संवेदनशील क्षेत्रों, शहरी मलिन बस्तियों, दूरस्थ एवं दुर्गम बस्तियों, खानाबदोश परिवारों, ईट भट्टों, बंजारा बस्तियों और निर्माणाधीन स्थलों पर रहने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान के तहत जिले भर में 4 लाख से अधिक बच्चों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 350 से अधिक दस्तक दल गठित किए गए हैं। अभियान के जमीनी क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर तरुण गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया।
3: इंदौर जिले में दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 14 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें आशा, आंगनवाड़ी और ANM के संयुक्त दल के द्वारा 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उनके जांच की जाएगी। साथ ही प्रत्येक बच्चों को जिंक और ORS प्रदाय किया जाएगा और दस्त में ORS के महत्व के बारे में समझाया जाएगा। 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए का अनुग्रहण भी किया जाएगा, जो कि इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। गंभीर रूप से ग्रसित बीमारी से बच्चों की पहचान DSS टूल के माध्यम से की जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा। गंभीर अवस्था में होने पर उनको रेफरल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इस दौरान गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की भी आकलन किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई करके उनका उपचार आंगनवाड़ी स्तर पर या NRC के माध्यम से इलाज किया जाएगा।
2: गौरतलब है कि प्रदेशव्यापी इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाना, बाल्यकालीन बीमारियों की समय पर पहचान एवं उपचार सुनिश्चित करना और 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को आवश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं उपलब्ध करवाना है। इस अभियान में 6 माह से कम आयु के शिशुओं में स्तनपान को बढ़ावा देने, 6 माह बाद पूरक आहार शुरू कराने और बच्चों के पोषण एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहार परिवर्तन के लिए भी जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है जबलपुर से, जहां नशे से दूरी है जरूरी अभियान चलाया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी।
4: नशे की लत केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है। कई लोग इससे बाहर निकलना तो चाहते हैं, लेकिन अकेले संघर्ष करते करते हार मान लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस उम्मीद का मजबूत सहारा बन रहा है। यहां लोग पूरी गोपनीयता के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। नशे की बीमारी से जुड़ी इस समस्या पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सक डॉक्टर OP राय चंदानी भी मानते हैं कि
5: अल्कोहल या नशा प्रवृत्ति या अल्कोहल डिपेंडेंट या बाकी नशों के बारे में ये बोला जाता है कि ये एक मानसिक बीमारी के अंतर्गत आता है। अब इस बीमारी के कारण होते हैं बायोलॉजिकल, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर और ब्रेन के पाथवे से हैं, साइकोलॉजिकल, जो कि पर्सनालिटी और इंसान के व्यक्तित्व से संबंधित है, और सोशल, जो कि सामाजिक है। जहां पे भी कोई वल्नरेबल व्यक्ति है और इन तीनों इटियोलॉजी से कनेक्ट होता है, वो अल्कोहल डिपेंडेंस की बीमारी हो सकती है।
4: इस कार्यक्रम से जुड़े संयमित सदस्य कहते हैं,
6: मैंने शराब के कारण अपना परिवार, सम्मान और आत्मविश्वास खो दिया, लेकिन ए से जुड़ने के बाद, अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ

0: कि मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ मिले सहयोग और अपनापन ने मेरी जिंदगी बदल दी है। आज मैं संयमित हूँ और हर उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि मदद मांगने में कभी संकोच न करे, नई शुरुआत हमेशा संभव है।
1: आइए मध्य प्रदेश शासन के नशे से दूरी है जरूरी अभियान को जन जन का संकल्प बनाएं और एक स्वस्थ संयमित एवं नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
2: अब हम अगली खबर के लिए रुख करते हैं गुना जिले की तरफ, जहां कलेक्ट्रेट को ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी।
3: गुना कलेक्ट्रेट एवं SDM कार्यालय गुना को उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्य प्रणाली एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इस संबंध में जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आकाशवाणी को जानकारी देते हुए बताया,
4: गुना में जो हमारा कलेक्टर ऑफिस है उसको और यहाँ पे जो हमारा SDM और तहसील ऑफिस है, इसके लिए ISO 9001 के लिए अप्लाई किया था। उसकी कुछ कंडीशंस होती है, कुछ फॉलोअप होते हैं पॉइंट्स, उसका पालन किया है और वो उसका सर्टिफिकेट मिला। तो अब गुना कलेक्टर ऑफिस और हमारा SDM और तहसील ऑफिस दोनों ISO 9001 की कैटेगरी में आ गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उसके पैरामीटर्स पे उसका हमारी टीम बहुत अच्छा काम करेगी, जिसका फायदा हमारी आम जनता को जो यहाँ पे आती है उससे मिलता है। इसके पीछे उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम लोग एक प्रोसेस बेस्ड सिस्टम को आधार बना के रखते हैं और इंडेक्सिंग होती है, लिस्टिंग होती है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, फाइलिंग प्रॉपर रखी जाती है, तो उससे फाइल को ढूंढना भी आसान होता है, किसी को देना भी आसान होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं और मैं अपनी पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने ISO के जो नॉर्म्स थे उसके हिसाब से काम किया और हमको सर्टिफिकेट मिला।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी।
2: अब हम चलते हैं नर्मदापुरम जिले की तरफ, जहां 8 अगस्त से शुरू हो रही नागद्वारे यात्रा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता तनुष तिवारी।
5: नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा की हरी भरी वादियों और घने जंगलों के बीच स्थित नागद्वारी धाम एक बार फिर शिव भक्ति के रंग में रंगने जा रहा है। 8 से 17 अगस्त तक आयोजित होने वाली यह ऐतिहासिक यात्रा प्रदेश ही नहीं देश की सबसे कठिन और आस्था से जुड़ी धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। पचमढ़ी से लगभग 12 किलोमीटर का दुर्गम पहाड़ी मार्ग पार कर श्रद्धालु भगवान शिव और नाग देवता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यही कारण है कि नागद्वारी को प्रदेश का अमरनाथ भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र विशेषकर विदर्भ से बड़ी संख्या में शिव भक्त हर वर्ष इस यात्रा में शामिल होते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर यहां श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा सैलाब उमड़ने की संभावना है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की है। यात्रा मार्ग पर कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन, चिकित्सा शिविर, एम्बुलेंस, पेयजल, स्वच्छता, पार्किंग और सुचारू यातायात की व्यवस्था की जा रही है। मेले के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा, चिकित्सा दलों की तैनाती, एंटी वेनम की उपलब्धता और आपातकालीन सेवाओं के विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से तनुष तिवारी।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी अगली खबर धार से है, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस वर्ष भी आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को भव्य रूप से निकाली गई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा, भक्ति, आस्था और उत्साह के साथ भाग लिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं धार से हमारे संवाददाता सुनील सचान।
6: पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य धार जिले में सकल हिंदू समाज और श्री सांवरे सेठ भक्त मंडल के तत्वाधान में परंपरागत रूप से धार में निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस वर्ष भी आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को भव्य रूप से निकाली गई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा, भक्ति, आस्था और उत्साह के साथ भाग लिया। ऐतिहासिक गौशाला के समीप से प्रारंभ हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के विग्रहों को आधुनिक रथ में विराजित करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर की गई। इसके बाद महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती सावित्री ठाकुर सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और दर्शन पूजन कर आरती की। आरती के पश्चात भगवान जगन्नाथ के रथ को आगे खींचने के लिए श्रद्धालु रथ की रस्सी को थामने के लिए लालायित नजर आए। यात्रा के आगे आगे श्रद्धालु मार्ग को बुहारते हुए चल रहे थे, साथ ही भजन मंडलियां भजन कीर्तन करते हुए और बड़ी संख्या में रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु भजनों पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। श्रद्धा का आलम यह था कि रथ यात्रा को अपने गंतव्य श्री सांवरे सेठ मंदिर तक की 4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगभग 6 घंटे का समय लग गया। जगह जगह यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रथ यात्रा धारनगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए देर शाम त्रिमूर्ति नगर के श्री सांवरे सेठ मंदिर पहुंची। जगन्नाथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर

0: श्री सांवरिया से भक्त मंडल के सदस्य और रथ यात्रा प्रभारी श्री अशोक मनोहर जोशी ने बताया कि
1: जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे हाथ, उड़ीसा पुरी की तर्ज पर आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जिस प्रकार वहाँ जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकल रही है, उसी अनुक्रम में आज हमारे भोजशाला से सांवरिया सेठ भक्त मंडल और सकल हिंदू समाज के तत्वावधान में रथ यात्रा प्रारंभ हुई। रथ यात्रा का विभिन्न जगह स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से रस्सी खींचकर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की और जगन्नाथ रथ यात्रा में आसपास के अंचल के ग्रामीण लोग बड़ी मात्रा में उपस्थित हुए और रथ यात्रा विभिन्न मार्गों से होती श्री सांवरिया सेठ मंदिर पर विश्राम हेतु पहुंची है। यहां पर भगवान श्री सांवरिया सेठ और जगन्नाथ भगवान की आरती होकर छप्पन भोग का प्रसाद वितरित किया गया।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को हैं, कुछ देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कर कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनाव में स्टेफान सेल मारी सी सिफेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रपति नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के साथ काम करने की बड़ी संभावना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनाव में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की ये यात्रा पहली राजकीय यात्रा है। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक ब्रिक्स में आर्थिक विकास को समर्थन देने वाले स्थिर, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित ढांचे को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नव निर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:05 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले डालते हैं नज़र इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम संसद समीक्षा रात 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से। 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। विधानसभा समीक्षा होगी 8:30। 8:35 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। कुछ और फिल्मी नगमे आप सुन सकते हैं 10:15। 9:30 पब्लिक स्पीक हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाएंगे 10:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा कमलेश तिवारी का ध्रुपद गायन। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नज़र कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां, गीत संगीत और समय के साथ। सुरमई सवेरा फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:30। सुगम संगीत में 9:15 पर सुनिएगा चारुलता अत्रिवाले की गई कुछ गजलें। शब्द सागर ये कार्यक्रम होगा सुबह 9:30, जिसमें कल आप सुन सकते हैं परिचर्चा, विषय होगा हिंदी में आत्मकथा लेखन, प्रतिभागी शशांक, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव और राजेंद्र शर्मा। जिले की चिट्ठी इसे सुनिएगा सुबह 10:00 और 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर। ग्राम सभा कार्यक्रम में शाम 7:21 पर कल आप सुन सकते हैं संतरे की उत्पादन तकनीक एवं बाहर नियंत्रण, विषय पर डॉक्टर लाल सिंह से ली गई भेंटवार्ता। ये थे आकाशवाणी भोपाल के कल के कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नज़र आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, इसका प्रसारण समय सुबह 11:00 है। 12:00 आपकी फरमाइश संग्रहालय से इस कार्यक्रम में दिन में 12:30 सुनिएगा कामिनी काय कांतारे का भाग 6। महिला कार्यक्रम दोपहर 1:00 होगा। कल का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी इंदौर की ही प्रस्तुति में 1:30 पर सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर होगा सुगम संगीत।

दो बजे फिल्म संगीत, 2:30 बजे सुनिएगा आपकी फरमाइश। युवावाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:02 पर। कल का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा। शाम 5:33 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे कल शाम 6:30 बजे। 6 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8 बजे संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। 8:30 बजे होगी विधानसभा समीक्षा। 9:30 बजे उर्दू कार्यक्रम कहकशा में सुनिएगा कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम महफिले समा। 10:00 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स पर, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, समान नागरिक संहिता सहित विभिन्न विधेयक पेश। संसद के मानसून सत्र की भी हुई शुरुआत, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया गया। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ पूर्व अनुमोदन में प्रदेश को मिला राष्ट्रीय सम्मान। और अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन ही राज्य सरकार ने सदन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 सहित विभिन्न विधेयक पेश किए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस पर कल चर्चा कराई जाएगी। वहीं पेश किए गए अन्य विधेयकों में मध्य प्रदेश निरसन विधेयक, मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, मध्य प्रदेश श्रम शक्ति संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संशोधन विधेयक सहित कई अन्य विधेयक भी शामिल हैं। मंत्री गौतम टेटवाल ने मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2026 तथा मध्य प्रदेश उपकर संशोधन अध्यादेश 2026 सदन के पटल पर रखे। समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को लेकर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये हमारी प्रतिबद्धता है कि सभी को समान अधिकार मिले।
7: यूसीसी हमारा कमिटमेंट है। कल हमने कैबिनेट की बैठक में उसको विधानसभा की ओर अग्रेषित किया, आज विधानसभा में टेबल हुआ है और हम जल्द से जल्द इसको पारित करेंगे। अभी के लिए, वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए यूसीसी जरूरी, समानता के लिए, एक रूपता के लिए यूसीसी जरूरी है। इस देश की महिलाओं के सुनहरे भविष्य के लिए और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए यूसीसी जरूरी है। जो विरोध कर रहे हैं वो महिलाओं के हितों का विरोध कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहते हैं।
6: संसद का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो गया। 25 दिन चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि ज्ञान भारतम

0: मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इस कदम से अनुसंधान का कार्य सुगम बनाया गया है ताकि उन्हें आम जनता के लिए सुलभ किया जा सके। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर के स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गए हैं। लोकसभा के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। ये लड़कियों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ सबसे अधिक पूर्व अनुमोदन करने वाला बड़े राज्य की श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। ये सम्मान योजना के अंतर्गत बायोमेट्रिक आधारित प्री ऑथराइजेशन प्रक्रिया के प्रभावी, पारदर्शी तथा सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश ने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, तकनीकी आधारित सुशासन और जनहितकारी कार्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गुरुजन सदैव पूजनीय वंदनीय हैं। गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान विज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के समिति कक्ष में आगामी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के आयोजन की तैयारियों के संबंध में बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को बढ़ावा देते हुए पुरातन भारतीय ज्ञान परंपरा तथा भारतीय गुरु शिष्य परंपरा के आदर्शों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशव्यापी महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व का आयोजन किया जाए। इसमें स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ साथ निजी शिक्षण संस्थानों तथा खेल, नाटक, चित्रकला, संगीत तथा अन्य कला संस्थानों की भी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को एक और राष्ट्रीय सम्मान मिला है। संस्कृति विभाग के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव 2026 को बीटा अवार्ड 2026 में गवर्नमेंट इवेंट ऑफ द ईयर श्रेणी का गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। देहरादून में आयोजित हिंदुस्तान 2.0 नेशनल चिंतन शिविर एवं एक्सपो में यह सम्मान दिया गया। विक्रमोत्सव 2026 को इस वर्ष मिला यह तीसरा राष्ट्रीय सम्मान है। संस्कृति सलाहकार एवं शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के संकल्प को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।
2: विक्रमोत्सव का जो सिलसिला मध्य प्रदेश में पिछले 20-22 साल पहले आरंभ हुआ था, उससे देश में और दुनिया में रिकग्निशन मिल रही है, प्रतिष्ठा मिल रही है और वह देश और दुनिया का जो सांस्कृतिक नक्शा है उसमें एक विशेष स्थान वो अर्जित करते जा रहा है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इवेंट इंडस्ट्री ICEI द्वारा भी पिछले दिनों 15 और 16 जुलाई को देहरादून में जो सारी इवेंट है, वेडिंग है, पर्यटन, हॉस्पिटलिटी और इससे जुड़े हुए जो उद्योग के अग्रणी प्रतिनिधि, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, होटल और रिसोर्ट संचालक आदि आदि जो विभिन्न क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति में, उनकी सहभागिता में विक्रमोत्सव को बीटा अवार्ड से नवाजा गया।
0: प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस एवं नवीनीकरण से संबंधित आवेदनों के त्वरित निराकरण तथा चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने के लिए गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए गृह सचिव कृष्णावेणी देसावतु ने बताया कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 के अंतर्गत नई लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित 60 दिनों की समय सीमा में तथा लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदनों का निराकरण 30 दिनों की समय सीमा में किया जाना है। इसी प्रकार जांच उपरांत प्रतिवेदन 15 दिन के भीतर संबंधित कार्यालय को भेजे जाने के निर्देश हैं। उन्होंने ये भी बताया कि निजी सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित आवेदनों के निराकरण में अनावश्यक विलंब को रोकने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी संदेश का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने नए मसौदा नियम बनाए हैं जिनके कारण 11 करोड़ टीवी चैनल बंद हो

रहेंगे तथा केबल और डीटीएच शुल्क 4 से 6 गुना बढ़ जाएगा। इसमें भारी लाइसेंसिंग शुल्क भी लागू होंगे और लाखों नौकरियां खत्म होंगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि सरकार ने ऐसा कोई नियम पेश नहीं किया है। अब रुख करते हैं मौसम का। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के करीब 90% हिस्से में 23 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भिंड, मुरैना, अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल और इंदौर सहित नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच के ग्राम डुंगलावदा स्थित शासकीय आईटीआई में 23 जुलाई को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 20 जुलाई से बढ़ाकर अब 24 जुलाई कर दिया है। नर्मदापुरम के मगरिया स्थित 75 एकड़ की गौशाला में बारिश के दौरान गौवंश के संरक्षण के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत आज जबलपुर, शिवपुरी और झाबुआ में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीहोर के पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय की बालक वर्ग 15 की फुटबॉल टीम का चयन राष्ट्रीय पी सुब्रतो फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जो झारखंड में आयोजित होगी। आगरमालवा के जिला पंचायत सभागार में विकसित भारत जीराम जी योजना पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। धार कलेक्टर ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों को 100% निराकरण करने के निर्देश दिए हैं और बैतूल जिले की जीवनदायिनी एवं मोक्षदायिनी सूर्यपत्री माँ ताप्ती के जन्मोत्सव के अवसर पर आज लाखों श्रद्धालु मुलताई पहुंचे और माँ ताप्ती के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनवे वाली सभी भैया बहनों को वर्षा बहन की राम राम। भाइयों बहनों कैसे हैं आप? हम उम्मीद कर रहे थे कि आप सब अच्छे होंगे। भाइयों बहनों अपन तो देख ही रहे हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और आज बारिश हुई सी ठंडक भी हो गई है, गर्मी से राहत भी मिल गई है। तो भैया हमको चाहिए कि हम बरसात के पानी को संरक्षण करें और ई के लें जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। ये एक राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है भैया कि वर्षा के पानी को बचाया जा सके और उसको उपयोग करके भूजल स्तर सुधर सके। और यही वजह से ये अभियान शुरू करा गया है और जाकि जो मूल विचारधारा है वो यही है कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स। ई को मतलब यही है भैया, बारिश को पानी जहाँ गिरे जब भी गिरे उसे वहीं सहेजो जाए। छतों घरों कार्यस्थलों पर इन सभी जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगावो है ताकि बरसात के जल को संरक्षण हो सके और जाके संगे संग बारिश के पानी को जमीन में भेजवे के लाने रिचार्ज पिट को निर्माण करो जा रहा है और साथ ही साथ पुरानी बोरवेलों कुओं बावड़ियों की मरम्मत करके उन्हें दोबारा उपयोग लायक बनाओ जा रहा है और साथ ही साथ जो भी तालाब हैं उनकी सफाई करके उनको पानी भी रोकवे की उनकी जो क्षमता है बढ़ाई जा रही है। तो भैया बहनों हमें भी यही करने हैं कि हम बरसात के जल को संरक्षण करें, हमें अपनी तरफ से भी पूरी पूरी कोशिश करनी है। और ई के लिए अपन जी कर सकते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं वो खेतों में गड्ढा बनवा सकते हैं कच्चा पक्का। इससे क्या होगा भैया कि इससे पानी को इकट्ठो करो जा सकता है और इससे क्या होगा भूमिगत जल स्तर भी बढ़ेगा और जो पानी है उसको स्टोर भी करो जा सकेगा और जो पानी स्टोर करेंगे उसको हम आगे अपने उपयोग में सिंचाई के काम में ले सकते हैं। और जो हमारी माता बहनें हैं वो छत पर अपनी जो भी बर्तन है टंकी गगरी ये सब रख कर भी पानी जो पीने का पानी है उसको बर्तनों में स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे जो बरसात को जल होते बहुत ही शुद्ध जल होते हैं उसको हम कई महीनों तक पीवे के काम में उपयोग कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों चर्चा तो आपसे आगे भी जारी रहेगी और अब हम आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भाइयों बहनों, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज है अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस हर साल 20 जुलाई यानी कि आज के ही दिन मनाया जाता है। भाइयों बहनों, क्या आपको पता है कि जी दिन यानी आज 20 जुलाई के दिन 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार चंद्रमा की सतह पर जाने वाले दो मानव नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, इन दोनों व्यक्तियों ने कदम रखा था और उसी ऐतिहासिक घटना की याद में जे दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग और चंद्र अन्वेषण के बारे में जन जागरूकता बढ़ावे के लिए जे दिवस की एक आधिकारिक रूप से शुरुआत करी थी। तो भाइयों बहनों, जे दिवस मनावे को मुख्य उद्देश्य यही है कि चंद्रमा की खोज, विज्ञान और भविष्य के चंद्र अभियानों जैसे भारत के चंद्रयान मिशन और नासा का आर्टिमिस कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों ने जो उपलब्धियां हासिल करी हैं उनको जश्न मनावो है। और यही अवसर पर विभिन्न देशों के जो अंतरिक्ष एजेंसियाँ हैं, शिक्षण संस्थान हैं, तो ये सब वेबिनार और प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं। तो भैया ये बात तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस के बारे में। और भाइयों बहनों, अब अपन देख ही रहे हैं कि अब कार्यक्रम को समय हो रहा है। आज है सोमवार और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुंदेली गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी, जिसमें आप ही की फरमाइश पर आप ही की पसंदीदा बुंदेली गीत सुनाए जाते हैं। तो आज हम आपको सुनवावे जा रहे हैं आप ही का ये पसंदीदा गीत मदन मोहन ब्रजवासी की आवाज़ में, ओ चंदा तेरी निर्मल। तो भाइयों बहनों, सुनाते हैं जी लोकगीत।

भाइयों बहनों, आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल जिसका नाम है शतरंज, इसके बारे में तो सुनो ही हुई है, और इसे अंग्रेजी में चेस भी कहते हैं। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को यानी कि आज के ही दिन दुनिया भर में मनाओ जाता है, और जे दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना भई थी और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर विश्व स्तर पर शांति, शिक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, ये जो शतरंज है बहुत ही पुराना खेल है। शतरंज को खेल जे खेल की शुरुआत भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान लगभग 6वीं शताब्दी में भई थी, और उस समय इसे चतुरंगा के नाम से भी जाना जाता था। और आधुनिक समय में 20 जुलाई 1924 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ को गठन भव है, और जे दिन के महत्व को देखत भए यूनेस्को के प्रस्ताव के बाद पहली बार 1966 में विश्व शतरंज दिवस मनाओ गओ था, और ई के बाद फिर 12 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके इसे एक आधिकारिक रूप से मान्यता दी, जब से ही ये दिवस आज के ही दिन 20 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाओ जा रहा है। जे दिवस मनावे को उद्देश्य भैया बहनों ये ही है कि हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनमें तार्किक क्षमता को विकास हो सके। जी खेल के माध्यम से बच्चों और युवाओं में एक

की आवाज़ में। भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं बुंदेली गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी, और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है अमलतास अम्ब्रीन होम्स कटारा भोपाल मध्य प्रदेश से, योगेश्वर सिंह भारतीय, प्रेम भाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, गोपाल भारतीय और कृष्णा भारतीय ने। तो सुना थे जे लोकगीत।

और भाइयों बहनों, इसी कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवावे जा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक के स्वर में ये लोकगीत। और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, अमर सिंह भारतीय, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय, श्रीमती ललिता बाई भारतीय ने। तो बहनों सुनत हैं जे लोकगीत।

भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू करी गई एक योजना है और एक राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और भाइयों बहनों, ये योजना को मुख्य उद्देश्य यही है कि हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल, यही मंत्र के साथ सिंचाई को एक जो दायरा है उसको विस्तार करवो है, जल उपयोग की दक्षता बढ़ावो है, ताकि ये योजना के तहत जल संरक्षण, खेत स्तर पर सिंचाई के जो भी बुनियादी ढांचे के संग विकास कर सके और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी हो सके और कृषि उत्पादकता को एक आधुनिक बनावे पे भी जोर दिया जाता है। तो भाइयों बहनों, ये योजना को मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सूक्ष्म सिंचाई है, जैसे कि ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, इन सब प्रणालियों को बढ़ावा देवो है ताकि पानी को संरक्षण हो सके। जे पानी की बचत के संगे संगे उर्वरकों के जो सटीक उपयोग हैं उनमें भी मदद करत है। हर खेत को पानी मिले, जल स्रोतों को निर्माण हो और वर्षा के जल को संरक्षण हो सके, यही ताकि भूमिगत जल स्तर बढ़ सके और संग संग सिंचित पानी को आगे उपयोग हो सके। वितरण नेटवर्क के विस्तार और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र को विस्तार करवो है। देश के सभी जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें जो भी किसान हैं उनके नाम पर जो कृषि योग्य भूमि जो किसान भाई हमारे रखत हैं, ये योजना को लाभ उठा सकते हैं, वो जी योजना को लाभ उठावे के लिए पात्र हैं। और जाके संग संग जो सूक्ष्म सिंचाई उपकरण होते हैं, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई, इनकी स्थापना करवे पर सरकार द्वारा 45% से 80% तक को अनुदान उन्हें प्रदान करो जाते हैं। और छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी और मध्यम जोत वाले किसानों की तुलना में अधिक सब्सिडी दी जाते हैं। तो भाइयों बहनों, हम तो यही कहते हैं कि आप जी योजना को लाभ उठाएं और अच्छे से खेती हो, हर खेत को पानी मिल सके और उत्पादकता बढ़ सके, ये योजना को मुख्य उद्देश्य है। और ये के लिए हमें भी कोशिश करवो चाहिए कि हम बरसात के जल को संरक्षण करें, अपने खेतों में, अपने घरों में जितने हो सके, हमें कोशिश करनी है कि हमें वर्षा की एक एक बूंद को संरक्षण करनी है। और भाइयों बहनों, अब हम आपको सुनवावे जा रहे हैं बुंदेली गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी में ये अगला गीत। और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम बिडौरा, तहसील सेवरा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से लोकेंद्र सिंह गुर्जर, रामवीर सिंह गुर्जर, इंद्रपाल सिंह गुर्जर, शिशुपाल सिंह गुर्जर, यशपाल, जयपाल और मनोज गुर्जर ने। और साथ ही साथ बस स्टैंड रामटोरिया, तहसील घुवारा, जिला छतरपुर, बुंदेलखंड से बहादुर सिंह चक्रवर्ती, नंद किशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, बड़े भैया हरिराम, बड़े भैया दशरथ, श्रीमती शीला भाभी, जसोदा भाभी, भगवती भाभी, महादेवी, ममता देवी, रामकली, सावित्री, अंश, अंशिका, मोहिनी, गोलू, नीरज, समस्त रामटोरिया बुंदेलखंड निवासी। तो भाइयों बहनों, सुनते हैं जी गीत।

भाई बहनों, अभी आप सुन रहे थे बुंदेली गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी। तो भाई बहनों, अब अपन देख ही रहे हैं कि घड़ी की सुई इशारों कर रही है, अपने कार्यक्रम को समय समाप्त हो रहा है। तो आपकी वर्षा बहन आपसे विदा लेत है। राम राम, जय जवान जय किसान।

ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज दिनभर सदन में कामकाज बाधित रहा और कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहाँ चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य

मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखे जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया एआई वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को एआई सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत ITI PMSETU योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से NCERT द्वारा AI विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार CBSE भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में AI उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें CBSE से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि NCS परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र MCC स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक JDD ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति CP राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से NPP के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंकीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉक्टर सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जे राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा कोंकल संगमा, डॉक्टर सतीश पूनिया और प्रकाश बड़ाइक ने

हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मानसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में चार दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया। हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं।
सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों

0: पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पूर्वी यूरोप में भारत के राजनयिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 राष्ट्रों की यात्रा पर कल मोल्डोवा पहुंची और बाद में फिर वो नॉर्थ मैसिडोनिया और फिर बाद में रोमानिया पहुंचेंगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी, आपका बहुत स्वागत है।
4: बहुत धन्यवाद।
3: प्रोफेसर जोशी, राष्ट्रपति सबसे पहले अपने पहले चरण में कल मोल्डोवा पहुंची हैं और ये गौरतलब है कि ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा होगी मोल्डोवा की। 20 जुलाई से 21 जुलाई तक ये यात्रा होने वाली है। इस यात्रा को आप कैसे देखती हैं, अगर हम खास मोल्डोवा की बात करें तो?
4: निशित जी, ये हमारे भारतीय राष्ट्रपति की एक ऐतिहासिक यात्रा है मोल्डोवा की। यदि मोल्डोवा और भारत के संबंधों की बात की जाए तो कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर बहुत अच्छा सहयोग है दोनों देशों के बीच में। और मोल्डोवा की यदि बात की जाए तो छोटा देश है यूरोप का, लेकिन ये सामरिक दृष्टिकोण से अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बड़ा महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के लिए। यदि हम पूर्वी यूरोप की बात करें तो इसके द्वार के रूप में मोल्डोवा को जाना जाता है। यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमने हाल ही में एक ऐतिहासिक FTA साइन किया, हिस्टोरिक डिफेंस डील साइन की। तो सामरिक दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मोल्डोवा भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी अब नजर आता है। और जब भारत ग्लोबल साउथ की बात वैश्विक स्तर पर करता है, ग्लोबल साउथ को नेतृत्व देने की बात करता है और विशेषकर अंतरराष्ट्रीय जब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर रिफॉर्म्स की बात करता है, गवर्नेंस में रिफॉर्म्स की बात करता है, तो वहां मोल्डोवा भारत की बात को इको करता हुआ नजर आता है। तो एक गहरा संबंध दिखाई पड़ता है दोनों देशों के बीच में। और व्यापार की दृष्टि से मैं कहूं तो फिर निवेश को देखते हुए, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट्स को देखते हुए, आईटी सर्विसेज के क्षेत्र में, प्रोफेशनल मोबिलिटी के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुलते हुए नजर आते हैं। तो चाहे कूटनीतिक स्तर पर देखें, सामरिक स्तर पर देखें, व्यापारिक सहयोग की ओर देखें, ऊर्जा सहयोग की ओर देखें, मोल्डोवा भारत का आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। और हमारी राष्ट्रपति जब इस देश की यात्रा पर हैं तो दोनों द्विपक्षीय स्तर पर और बहुपक्षीय स्तर पर मुझे लगता है दोनों देशों के बीच में सहयोग और ज्यादा गाढ़ा होगा।
3: राष्ट्रपति के साथ दल में बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन भी और बिजनेस कम्युनिटी भी साथ में वहां पे गए हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मौजूदा जो हालात हैं, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स चल रही हैं, उसमें जो भारत का ये आउटरीच है, खास करके ऐसे देशों में, अगर हम यूरोप की, आपने यूरोपियन यूनियन की बात की, जो मदर ऑफ ऑल डील्स, जो ट्रेड डील हुआ था, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण है भारत का ये आउटरीच टुवर्ड्स मोल्डोवा।
4: पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि वैश्विक राजनीति में लगातार एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है, जिसमें एक और रशिया यूक्रेन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो पश्चिम एशिया के संकट ने पूरे विश्व के सामने नई नई चुनौतियों को प्रस्तुत किया है, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर मानवीय सुरक्षा तक। ऐसे में भारत अपनी सकारात्मक कूटनीति के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता हुआ नजर आता है और लाइक माइंडेड देशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में साझा सहयोग की और साझा विकास की बात करता है। तो हम याद करें कि अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे महत्वपूर्ण देशों की यात्रा संपन्न की। इसके पहले वो यूरोप के दौरे पर थे, इसके पहले उन्होंने पश्चिम एशिया के, अफ्रीका के देशों का दौरा किया, यूरोप के कुछ और देशों का दौरा किया। तो ये जो एक आउटरीच प्रोग्राम है, इसके जरिए भारत ने न सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को सफलतापूर्वक पूरा करने का काम किया है, भारत ने वैश्विक स्तर पर इस बात का संदेश दिया है कि युद्ध किसी भी बात का समाधान नहीं है। आज का जो विश्व है उसमें शक्ति की परिभाषा में तकनीकी सहयोग, ऊर्जा के क्षेत्र में

0: सहयोग और जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। और इस दृष्टि से मोल्डोवा हमारा एक महत्वपूर्ण साझेदार नजर आता है, न सिर्फ बहुपक्षीय स्तर पर ईयू के मेंबर के रूप में जो हमने एक एफटीए कर रखा है, तो निवेश के, को मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग जो द्वार है संभावनाओं के वो खुलते हुए नजर आते हैं। द्विपक्षीय स्तर पर फिर जब जो कूटनीतिक लक्ष्य लेकर के भारत वैश्विक स्तर पर बात करता है, चाहे वो ग्लोबल साउथ का एजेंडा हो या फिर अलग अलग हम गवर्नेंस में रिफॉर्म्स की बात करते हो या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हो, तो वहां पर फिर हमको मोल्डोवा एक सहयोगी के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए मोल्डोवा का ये दौरा हर प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: प्रोफेसर जोशी, और राष्ट्रपति अपने यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसिडोनिया पहुंचेंगी। प्रोफेसर जोशी, हम ये समझना चाहेंगे कि नॉर्थ मैसिडोनिया का कितना प्रभाव, किस प्रकार आप इसे देखती हैं?
0: देखिए, नॉर्थ मैसिडोनिया के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और भारत उन यूनाइटेड नेशंस के 40 देशों में से एक है जिसने यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन फॉर नॉर्थ मैसिडोनियाज एडमिशन टू यूनाइटेड नेशंस जो 1993 में हुआ था उसको को स्पॉन्सर किया था। और नॉर्थ मैसिडोनिया की एक एम्बेसी नई दिल्ली में 2008 से है। दोनों ही देशों के यदि हम सामरिक सहयोग की दृष्टि से बात करें, सांस्कृतिक सहयोग की बात करें या आर्थिक सहयोग की, तो दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। और नॉर्थ मैसिडोनिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के एक सदस्य देश के रूप में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रदान करता है हमारे सारे प्रोडक्ट्स के लिए, तो हमारे लिए एक मार्केट के रूप में। फिर नॉर्थ मैसिडोनिया हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है तो उस दृष्टि से, और एक को मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग हब ये भारत को मानता है, तो इस दृष्टि से भारत के बिजनेसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि मैं आपको दूसरे यदि क्षेत्र बताऊं तो फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दोनों देश लगातार अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं। और ये भी बता दूं कि यदि हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो मदर टेरेसा नॉर्थ मैसिडोनिया से ही ताल्लुक रखती थी, तो फिर बाद में ये इंडियन सिटीजन बनी। तो यदि हम ऐतिहासिक सहयोग या ऐतिहासिक रिश्तों की बात करें तो दोनों देशों के बीच में बड़ा गाढ़ा रिश्ता है। और इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के भी भारत नॉर्थ मैसिडोनिया के साथ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो इसलिए राष्ट्रपति का ये दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: जी प्रोफेसर जोशी, यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा होगी नॉर्थ मैसिडोनिया की। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि वहाँ के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जी वहाँ पहुंचेंगे 21 और 22 जुलाई को, और वहाँ नॉर्थ मैसिडोनिया के असेंबली को भी एड्रेस करेंगे। और साथ साथ इंडिया नॉर्थ मैसिडोनिया बिजनेस फोरम, अभी हम थोड़ी देर पहले बिजनेस की भी बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर जोशी, अगर हम देखें, जैसे कि हमने पीछे भी जब बात कर रहे थे मोल्डोवा की, तो बिजनेस खास करके करंट परिप्रेक्ष्य में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना ये आउटरीच इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जबकि हमें किसी भी एक ब्लॉक को पर हम डिपेंड नहीं रह सकते आज के डेट में, ये आज का ये वास्तविक सच है। और दोनों ही पक्ष जो हैं, खास करके भारत की बात करें या नॉर्थ मैसिडोनिया की बात करें, दोनों ही काफी कीन हैं अपने इकोनॉमिक टाइज को और ज्यादा गहरा बनाने में। और प्रायोरिटी सेक्टर्स की आपने बात की, एग्रीकल्चर की बात की, फार्मा की बात की, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैसे आप देखती हैं इसे?
0: देखिए, हमने अलग अलग क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की बात की और मोल्डोवा के साथ भी भारत के इसी प्रकार के घनिष्ठ संबंध हैं। यदि हम व्यापार की दृष्टि से बात करें तो दोनों ही द्विपक्षीय, और फिर मैं ईयू पर आऊंगी, ईयू के मेंबर के रूप में मैसिडोनिया का एक महत्व तो बढ़ जाता है। और भारत जिस तरह से लगातार अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को मजबूत करते हुए, विशेषकर तब जब ट्रंप ने हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए थे, तो भारत ने इस बात को लगातार सुदृढ़ करने का प्रयास किया कि जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं उनके साथ हम साझा सहयोग, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, सामरिक क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, हम इसको आगे बढ़ाएं और लगातार अपने लक्ष्यों की पूर्ति करें। तो फिर इस दृष्टि से मैसिडोनिया के साथ फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आईटी सर्विसेज के क्षेत्र में सहयोग महत्वपूर्ण जाता है। और फिर ईयू के मेंबर के रूप में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमको ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो हमारे जो बिजनेसेस हैं और हमारा जो विशेषकर लघु और मध्यम उद्योग है उसके लिए फिर ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संभावनाओं का क्षेत्र खुल जाता है इन यूरोपियन देशों के साथ यदि हमारा सहयोग बढ़ता है तो, क्योंकि भारत लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि ये जो अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज अभी तक की रही हैं इन पर भारत काम करे। और इस प्रकार के देशों के साथ जो भारत की बात को अंतरराष्ट्रीय मंच पर इको करते हैं, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे साझा सहयोग की, सबके विकास की बात हो, तो फिर ऐसे देशों के साथ आगे बढ़ा जाए।
1: प्रोफेसर जोशी और राष्ट्रपति अपनी यात्रा के अंतिम चरण में जुलाई 23 से लेकर जुलाई 25 तक रोमानिया की यात्रा पर होंगी। गौरतलब है कि ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की तीन दशक के बाद ये पहली यात्रा होने वाली है। और फिर से हम बता दें कि ये यात्रा वहां की राष्ट्रपति के निमंत्रण पर यह हो रहा है। तो रोमानिया का जो ये विजिट है प्रोफेसर जोशी, ये कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, रोमानिया की और भी देखें तो भारत और रोमानिया के बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशंस 1948 से ही हैं, और एक सामरिक सहयोग की दृष्टि से देखें तो दोनों ही देश लगातार अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं। ये फिर एक ऐतिहासिक यात्रा है जो हमारे राष्ट्रपति की पहली बार रोमानिया की यात्रा होने वाली है किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की। तो चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था का या आर्थिक सहयोग का क्षेत्र हो, तकनीकी सहयोग का क्षेत्र हो, सामरिक पार्टनरशिप की हम बात करें, तो फिर हर प्रकार से ये दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है। 1948 में दोनों देशों के बीच में संबंध विकसित हुए और फिर इसके बाद एम्बेसी लेवल के जो कूटनीतिक संबंध है वो 1957 में स्थापित हुए। 2023 में दोनों देशों ने अपने कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्षों को पूर्ण किया है, मनाया है। और रक्षा के सहयोग में यदि मैं बात करूं तो दोनों ही देशों ने एक ज्वाइंट कमिटी बनाई है डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर के, और कैसे को मैन्युफैक्चरिंग के, को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं इसको लेकर के दोनों देशों ने एक बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन प्लान बनाया, जिसमें कि जो कन्वेंशनल हमारे रक्षा सहयोग के क्षेत्र हैं उसके अलावा साइबर डिफेंस, ज्वाइंट ट्रेनिंग और कैसे इंडस्ट्रियल कलेबरेशन को हम बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि मिलिट्री इंडस्ट्री जो कॉम्प्लेक्स है इसमें हम कैसे दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी शामिल कर सकते हैं, इसकी बात है। फिर हम यदि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो दोनों के बीच का बायलेटरल ट्रेड बहुत बड़ा अमाउंट, और रोमानिया का लेकिन जिस प्रकार से लोकेशन है, भारत के साथ जिस तरह का सहयोग है, ईयू में इसकी जिस प्रकार की मेंबरशिप है, तो ये एक मार्केट एक्सेस भारत को देता है। और जो भारत की अलग अलग 500 कंपनियां हैं वो यहाँ रजिस्टर्ड है, तो भारत की कंपनियों के लिए यूरोप में ये महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, आईटी के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। फिर रोमानिया एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनके दिखाई पड़ता है और भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है, भारत के ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात को ये भी साझा करता है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत के लगातार सहयोगी के रूप में देखा जाता है। तो इस दृष्टि से भी हमारी राष्ट्रपति का ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: जी, रोमानिया यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है और इससे हम दोनों के बीच में, भारत और रोमानिया के बीच में संबंध और भी गहरा, खास करके आर्थिक संबंधों की बात करें तो और भी गहरा। गौरतलब है प्रोफेसर जोशी की तीनों राष्ट्र, मोल्डोवा हो, नॉर्थ मैसेडोनिया हो, रोमानिया, इन तीनों राष्ट्रों ने पिछले वर्ष जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो उसमें बहुत ही स्ट्रांगली सॉलिडारिटी सपोर्ट और एक बहुत ही साथ दिया था भारत का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर जोशी कैसे देखते हैं इसे आप?
0: जी बिल्कुल, जैसे कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि मोल्डोवा, मैसेडोनिया और रोमानिया, ये तीनों देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करता है, तो इसमें ये देश भारत के बड़े सहयोगी के रूप में नजर आते हैं और ये बिल्कुल कहने से नहीं चुकते। भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसमें भारत का लगातार साथ दे रहे हैं, और इसीलिए इस दृष्टि से भी ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे राष्ट्रपति का इन तीनों देशों का। और आपको ध्यान होगा कि जब हमारे ऊपर दुर्दांत पहलगाम अटैक हुआ था और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, तो ये तमाम देश जो है ये भारत के साथ बहुत ही स्ट्रांगली हमको खड़े हुए दिखाई पड़े।
1: प्रोफेसर जोशी, और जाते जाते अक्सर जो दौरे होते हैं, राष्ट्रपति जी के दौरे हों, प्रधानमंत्री जी के दौरे हों, वो अगर हम यूरोप की बात करें, क्योंकि अभी यूरोप की चर्चा हो रही है, यूरोप की बात करें, बड़े राष्ट्र हैं जैसे फ्रांस हो गए, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, ये सारे देश, ये तो अपनी जगह अपने महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो तो साथ में समेटे हुए हैं ही, लेकिन ऐसे जो छोटे देश हैं जैसे हम मोल्डोवा की बात करें, मैसेडोनिया, रोमानिया, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप कैसे समझती हैं इसे, कैसे इसे आंकती हैं कि ये जो दौरा है राष्ट्रपति जी का पूरे यूरोपियन यूनियन या यूरोप महाद्वीप की अगर हम बात करें, तो कैसे आपस में इसे एक एसिमिलेट करते हुए आप देखती हैं इसे आप?
0: देखिए निशीत जी, ये किसी भी देश को छोटा या बड़ा समझ करके कूटनीतिक दायरों में बात करने से बेहतर होता है कि हम उस देश के सामरिक महत्व को समझे, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस तरह से कूटनीतिक संबंधों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही स्तर पर भारत के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये देखते हुए ये इन तीनों ही देशों की अपनी एक भूमिका है भारत के साथ जो इन तीनों देशों के संबंध है वो द्विपक्षीय स्तर के अलावा, जब बहुपक्षीय स्तर पर हम ओवरऑल एक यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं या यूरोप के दूसरे देशों के साथ बात करते हैं, तो फिर उस दृष्टि से इन देशों के साथ सकारात्मक संबंध न सिर्फ पूरे यूरोप में, फिर भारत की जो एक सकारात्मक आउटरीच है उसको बढ़ाने में सहयोगी सिद्ध होते दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस तरह से ग्लोबल साउथ के देशों के नेतृत्व की बात कर रहा है या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, तो वहां ये एक वोटिंग नेशन के रूप में यूनाइटेड नेशंस में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये एक देश एक वोट के रूप में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये भारत की बातों को, भारत के उद्देश्यों को लगातार इको कर

0: तो इस दृष्टि से भी इन देशों का भारत के साथ सहयोग और हमारे राष्ट्रपति के साथ दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: जी प्रोफेसर जोशी, आप हमारे साथ जुड़ी, बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद निशीत जी।
2: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी यूरोप में भारत के राजनयिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशीत कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए विधानसभा समीक्षा।
5: प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा, आलेख अलीम बज़मी, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। मध्य प्रदेश विधानसभा के 5 दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत आज ऐसे माहौल में हुई जिसने साफ संकेत दे दिए कि आने वाले दिन सरकार और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराहट के गवाह बनने वाले हैं। पहले ही दिन सदन में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश हुआ, वहीं विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इन सबके बीच 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कुल मिलाकर पहले दिन का स्वर राजनीतिक टकराव, संसदीय बहस और आगामी रणनीतियों का मिश्रण रहा। सत्र की शुरुआत परंपरागत ढंग से दिवंगत जनप्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। सदन ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए, लेकिन ये शांत वातावरण अधिक देर तक नहीं टिक सका। प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई और सदन का तापमान तेजी से बढ़ गया। पहले दिन की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना समान नागरिक संहिता विधेयक का सदन में प्रस्तुत होना रही। सरकार ने इसे सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसके समय और मंशा पर सवाल उठाए। शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा कल करवाई जाएगी। इससे यह भी संकेत मिला कि UCC आने वाले दिनों में सदन का सबसे बड़ा राजनीतिक और वैचारिक मुद्दा बनने जा रहा है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने समान नागरिक संहिता विधेयक के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा,
6: UCC हमारा कमिटमेंट है। कल हमने कैबिनेट की बैठक में उसको विधानसभा की ओर अग्रेषित किया, आज विधानसभा में टेबल हुआ है और हम जल्द से जल्द इसको पारित करेंगे। अभी के लिए, वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए UCC जरूरी, समानता के लिए, एक रूपता के लिए UCC जरूरी है। इस देश की महिलाओं के सुनहरे भविष्य के लिए और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए UCC जरूरी है। जो विरोध कर रहे हैं वो महिलाओं के हितों का विरोध कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहते हैं।
5: इसी बीच सरकार द्वारा UCC के अलावा 13 अन्य विधेयक भी सदन के पटल पर रखे गए। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये विधेयक कार्यसूची में शामिल नहीं थे। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई जिसने पहले दिन की कार्यवाही को और अधिक राजनीतिक बना दिया। दोपहर के बाद सदन का स्वर कुछ बदला। सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े अध्यादेश, अधिसूचनाएं और वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश, उपकर संशोधन अध्यादेश तथा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक टकराव के बीच सरकार अपनी विधायी कार्यसूची को भी आगे बढ़ाना चाहती है। दिन के उत्तरार्ध में किसानों के मुद्दे ने सदन की बहस का केंद्र स्थान ले लिया। नियम 139 के तहत खरीफ सीजन में खाद बीज की उपलब्धता और कम बारिश से उत्पन्न परिस्थितियों पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने खाद वितरण, भंडारण क्षमता और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष पर पुराने मुद्दों को दोहराने का आरोप लगाया। वहीं धार्मिक पर्यटन से जुड़े विषय भी सदन में उठाए गए। भाजपा विधायक अर्चना चिटनिस ने महाराष्ट्र के पंढरपुर स्थित मध्य प्रदेश सदन में वारकरी श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार और भवन के उन्नयन का मुद्दा रखा। सरकार ने बताया कि भवन की मरम्मत और सुविधाओं के विकास पर अब तक लगभग 1,24,00,000 रुपये खर्च किए जा चुके हैं और भविष्य में भी ये कार्य जारी रहेगा। सदन के भीतर जितनी सक्रियता दिखाई दी, विधानसभा परिसर के बाहर भी राजनीतिक संदेश देने की कोशिशें कम नहीं रहीं। सत्र प्रारंभ होने से पहले कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पहले दिन की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी माना गया। पहले दिन की कार्रवाई से स्पष्ट है कि सरकार विधायी एजेंडे, विशेषकर समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर मानसून सत्र का पहला दिन इस संकेत के साथ समाप्त हुआ कि आगामी 4 दिनों में सदन के भीतर केवल विधेयकों पर चर्चा ही नहीं होगी बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, नियमों की व्याख्या और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर भी तीखी बहस देखने को मिलेगी। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।
4: अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा, आलेख अलीम बज़मी का था, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।

मीडियम वेव 188.3 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स और DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत बॉडीगार्ड फिल्म से है, राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं। शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा है, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आपको एक सूचना दे दें, पुलिस आयुक्त नगरी पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जाति अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की

0: जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:45 होने को है। कुछ ही देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 और राज्यसभा की कार्यवाही 6 स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
4: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारिसी स्वेंट स्मारक पर पुष्पांजलि

0: श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली SIT को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे। एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे। देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं। इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
4: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पुलिस हिदायत पर अमल करने और सोशल मीडिया पर अफवाहें या गैर मुसद्दका इत्तिलात फैलाने से गुरेज करने की अपील की। जनाब राजीव रंजन ने शहरियों से मालूमात के लिए मुस्तनद ज़राए पर इन्हिसार करने की भी अपील की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया की इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि एहतजाज कर रहे अभिजीत दिपके को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इन इल्जामात को बिल्कुल गलत करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा है कि वो अयोध्या के राम मंदिर मुबैना चंदा गबन मामले में खसूसी जांच टीम SIT तश्कील देने के इम्कान पर गौर करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों को खबरदार किया कि वह इस मामले को सियासी रंग न दें। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहाना पर मुश्तमिल बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो SIT की तश्कील के बारे में हिदायत हासिल करें कि क्या मुकामी पुलिस की बजाय उस SIT पर भरोसा किया जा सकता है जो FIR दर्ज होने से पहले इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को इस मामले की अगली समाअत करेगी जब उत्तर प्रदेश हुकूमत इस मामले में SIT जांच के बारे में इत्तला देगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने आज कहा है कि पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल की आमिजिश किए जाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोल और कुदरती गैस के वजीर मुमलकत सुरेश गोपी ने कहा कि एथेनॉल की आमिजिश में इजाफे के सिलसिले में कोई भी फैसला तफसीली, साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतल्लिका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि E20 कोई नया ईंधन नहीं है और उन्होंने मजीद कहा कि इथेनॉल एक सदी से ज्यादा दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का पेट्रोल में इथेनॉल आमिजिश प्रोग्राम साल 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुआ था। जनाब गोपी ने कहा कि E20 की जानी मुंतकली रफ्ता रफ्ता शवाहिद पर मबनी और साइंसी जायजे की बुनियाद पर हो रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल की आमिजिश में साल 2013-14 के 1.53% से साल 2025-26 में 20% का इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का मकसद साइंसी जवाज के साथ पेशकदमी करना है और ईंधन के मेयारात में बेहतरी लाना है। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोलदोवा के दरमियान गहरी माशी मसरूफियात की बात की है और कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला नमू के कई शोबों में इश्तराक को वसत देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है।
1: By the growing cooperation, there is immense potential for collaboration across diverse sectors such as digital technology, artificial intelligence, cyber security, fintech, digital public infrastructure, infrastructure development, renewable energy, advancement of manufacturing, logistics, agriculture, food processing, pharmaceuticals, biotechnology. Indian companies are interested in participating in the development projects of Moldova in green energy sectors, including solar energy, battery storage, smart grids, green hydrogen.
0: सदर जमहूरिया आज चिसिनाऊ में भारत मोल्दोवा कारोबारी फोरम से खिताब कर रही थीं। विकसित भारत 2047 का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत एतमाद और मुश्तरका खुशहाली पर मबनी इश्तराक का खाहां है, वहीं मोल्दोवा का स्ट्रेटेजिक महले वकू और हुनरमंद अफरादी कुवत भारतीय कारोबार के लिए उम्मीद अफजा इम्कान की पेशकश करती है।
1: We remain committed to fostering a transparent, predictable, and investor-friendly business environment. I invite Moldovan businesses to come and explore India. I also encourage Indian businesses to look at the opportunities in Moldova. Your enterprise, vision, and commitment will be instrumental in building enduring economic partnerships.
0: सदर जमहूरिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजियों, मस्नूई जहानत, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे, ज़िरात, फार्मास्यूटिकल्स और सेहत देखभाल को मुस्तकबिल के इश्तराक के कलीदी मैदान करार दिया। इससे पहले सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की अपनी हमनसब माया सांदू के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने चिसिनाऊ में स्टेफन शेल माहरे शीस फंट यादगार पर गुलाए अकीदत नजर किए। जम्मू कश्मीर में आज जम्मू डिवीजन में बारिश से वाबस्ता वाकयात में मजीद 4 लोगों की जान चली गई जिससे पिछले 2 दिनों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। सैलाब से मुतासिर राजौरी और पुंछ जिलों में मुसलसल बारिश के सबब बचाव और राहत कार्रवाइयों में रुकावट पैदा होने से कम अज कम 7 अफराद अब भी लापता हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के जिला इंतजाम इलाके के मुख्तलिफ जिलों में शदीद बारिश, अचानक सैलाब और चट्टानों के टुकड़े गिरने के पेश नजर सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ दोनों सरहदी जिलों में बारिश से मुतालिक वाकयात में जान गंवाने वालों के हर कुंबे को 6-6 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: आज की शदीद बारिश ने पुंछ और राजौरी अजला में बचाव कार्रवाई को काफी मुतासिर किया। एक दिन पहले अचानक सैलाब और मिट्टी के तोड़े खिसकने के वाकये में 12 अफराद हलाक और मुतअद्दिद दिगर लापता हो गए थे। दोनों सरहदी अजला में आज देर रात वक्फे से बारिश होती रही, जो आखिरी खबरें मिलने तक जारी थीं। इस वजह से तलाश और बचाव की कार्रवाई में सख्त मुश्किलात पेश आईं। मुसलसल बारिश के बाद मिट्टी के तोड़े खिसकने और अचानक सैलाब के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। इन इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। NDRF, SDRF, जम्मू और कश्मीर पुलिस और फौज समेत हंगामी सूरत हाल से निमटने वाली टीमों को हसास इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर की अहम सड़कें फिर से खोल दी गई हैं, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में पानी सप्लाई की बहाली का काम जारी है। महकमे मौसमियात ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू और कश्मीर में दरमियानी से शदीद बारिश की पेशगोई की है, जिसके मद्देनजर जिला इंतजामिया ने लोगों को मोहतात रहने और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत दी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरकी इलाकों में भी अगले दो दिन तक भारी बारिश की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार जजायर में भी कल गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली में आज हुई बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली। महकमे मौसमियात ने कल दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक कल राजधानी दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 से 33 डिग्री जबकि कम अज कम दर्जे हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। लेबर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद एंडी बर्नहैम ने बरतानिया के नए वजीर आजम की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। कीर स्टारमर के इस्तीफा देने के बाद शाह चार्ल्स स्वयं ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 साल साबिक मेयर को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदऊ किया। इससे कबल कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर अपना आखिरी खिताब किया, जिसके बाद वो बाजाबता तौर पर अपना इस्तीफा देने के लिए बकिंगम पैलेस गए। उन्होंने कहा कि वो जनाब बर्नहैम को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और उन्होंने लेबर पार्टी के नए लीडर को अपनी मुकम्मल हिमायत का अज़्म किया। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक्वामे मुत्तहदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन स्टील से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब यादव ने कहा कि मुलाकात के दौरान आबोहवा की तब्दीली की रोकथाम के तरीक़ेकार को अपनाने, टेक्नोलॉजी के मुंतकली, माहौलियात से मुतालिक मालियात, आलमी सतह पर जायजे और टेक्नोलॉजी के मसावियाना मुंतकली जैसे मौजूदात पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने न सिर्फ कौमी सतह पर अपने तयशुदा अहदाफ़ को मुकर्रर वक्त से पहले हासिल किया बल्कि आबोहवा की तब्दीली के बहरान से निमटने के लिए दीगर शोबों में भी अहम पेशरफ्त की है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि भारतीय टीम ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल मॉर्फोलॉजी और सिस्टमेटिक्स के अलावा प्लांट कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जैसे मजामीन में गैर मामूली जानकारी फराहम की है, जो कि एक अजीम कारनामा है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शोरगुल के साथ शुरू हुआ। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलों पर शोर शराबे की वजह से बार बार मुलतवी करनी पड़ी। मरकजी वजीर JP नड्डा ने नई दिल्ली में मुजाहरीन के साथ बातचीत की। उन्होंने धरना खत्म करने और मामूल के हालात बहाल करने की अपील की। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोलदोवा के दरमियान मजबूत इकतसादी शराकतदारी और आला तरक्की वाले शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया। जम्मू डिवीजन में शदीद बारिश से मजीद चार लोगों की जान चली गई, जिससे दो दिनों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके के मुख्तलिफ जिलों में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुत शदीद बारिश से मुतालिक कल रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। श्रोताओं, क्या आपने इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया है? अगर जवाब नहीं है तो आज का हमारा कार्यक्रम जरूर सुने। मैं फरहत नाज और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जहां हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। लोन चाहिए, वीजा चाहिए या फ्यूचर सिक्योर करना है, ITR हर जगह काम आता है। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा और तेज कर लीजिए और साथ में पेन पेपर भी जरूर रख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको देंगे ऐसे टिप्स जो आपका टाइम, पैसा और टेंशन तीनों बचाएंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए इसीलिए आज हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में सनदी लेखाकार और विशेषज्ञ शरद कोहली जी को और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा जी को। आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार भरत, आपको और सभी लिसनर्स को मेरा अभिवादन।
0: तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। श्रोताओं, आज के अंक में हम समझेंगे कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। फोन लाइन खुल चुकी हैं, आप स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0111-2331-0418, 0111-2331-7717, 0111-2331-4444। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ITR क्या है और किन किन लोगों के लिए भरना जरूरी होता है?
1: देखिए फरहत, इनकम टैक्स रिटर्न अभी जैसे आपने कहा कि आपको बहुत सारे फायदे पहुंचाती है, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। अगर आप इनकम कमाते हैं, पांच इनकम के सोर्सेस होते हैं, आप सैलरी से कमाते हैं, आप बिजनेस से कमाते हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं, आप कैपिटल गेन से कमाते हैं, आपने कोई मकान या शेयर्स बेचे हैं, या फिर एक जो रेसिड्यूअल सोर्स होता है जो बच जाती है इनकम, उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेते हैं। तो ये पांच सोर्सेस होते हैं और आयकर विवरणी इसको हिंदी में कहते हैं। अलग अलग कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और आजकल टैक्स फाइलिंग सीजन अपनी पीक पर है और करीब 11 दिन के आसपास बचे हैं। तो जिन लोगों ने अभी नहीं फाइल किया है, आज उम्मीद करता हूँ आज आपकी और हमारी और अश्विनी जी की बातचीत सुनकर वो और जल्द फाइल करने के लिए मोटिवेट होंगे। और उनके मन में अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए थोड़ी सी इनकम टैक्स का जो कानून है उसकी जानकारी जरूरी होती है अपनी इनकम, क्योंकि हर तरीके की इनकम फराज अलग तरीके से टैक्स की जाती है, रेट तो एक ही होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो फोन करेंगे और उनके मन में कोई जरूर बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं वही बताना वाजिब समझूंगा जो लोग जहाँ पर वो अटक गए हैं, जहाँ उनको डाउट है।
0: जी, और आपने जैसे ही बताना शुरू किया हमारे पहले लिसनर भी हमसे जुड़ गए हैं, रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयकर रिटर्न किस श्रेणी के व्यक्तियों को जो है भरने का प्रोसीजर है, उनकी योग्यता है, और इसको हमें विस्तृत ढंग से बताएं।
1: देखिए रामाशंकर जी, आयकर रिटर्न जो है उन लोगों को भरनी होती है। दो प्रकार की रिजीम होती हैं आजकल जो ऑप्शन दी जाती है एक टैक्स पेयर को, या आप ओल्ड रिजीम में है जहां पर 2.5 लाख रुपए की मिनिमम लिमिट होती है। अगर आप न्यू रिजीम चूज करते हैं, आप मुझे आवाज से हमारे वरिष्ठ माननीय नागरिक लग रहे हैं, और 4 लाख रुपए वहां शुरू होता है न्यू रिजीम में, और आपकी इनकम अगर 4 लाख से ऊपर, आपको ये भी पता होगा कि अब तो 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको रिबेट मिल जाता है और टैक्स नहीं लगता। भारत सरकार ने जो बदलाव किए हैं, अब तो आयकर वालों को बहुत बड़ी छूट दी गई पीछे, तो 12 लाख रुपए तक तो टैक्स लगता नहीं है। तो ये तो आप थोड़ी सी हमें अगर डिटेल बताते। कुछ लोग क्या होता है फरहत के अपनी इनकम को सार्वजनिक रूप से बताते नहीं है, पर ये कार्यक्रम मुझे ऐसा है जैसे आप डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको अपने थोड़ा सा उसके बारे में, हालत के बारे में बताना पड़ेगा, तभी डॉक्टर बता सकते हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा बजाय आप छुपाने के आप बताएं, जहां तक आप बता सकते हैं तो उससे हमें जवाब देने में और सुविधा हो जाएगी।
0: जी शरद जी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइलिंग के लिए चाहिए होते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा फरहत आपने। देखिए ये जो पांच मैंने इनकम्स बताई थी, उन पांच इनकम से मान लीजिए आप सैलरी से कमाते हैं तो आपका एक फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर देता है वो होना चाहिए। इसके अलावा आजकल जरूरी हो गया आयकर में अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल देना, तो मुझे लग रहा है वो बैंक अकाउंट अपने तैयार रखने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई इनकम आपकी सीधी बैंक में आ जाती है। और दो चीज जो मैं जरूरी बताना चाहूंगा, एक फॉर्म 26AS होता है, मैंने उसका नया नाम रखा है, वैसे तो 26AS कहते हैं, मैंने उसका नाम रखा है 26 आमना सामना, क्योंकि आपका आमना सामना हो जाता है अपनी अपनी पूरी इनकम से, तो उसको जरूर चेक करें। और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम AIS कहते हैं, एनुअल इंफॉर्मेशन या एनुअल इनकम स्टेटमेंट होती है, उसका भी मैंने एक नाम रखा है, उसको मैंने लिखा आईना इसे समझिए, क्योंकि वो आपको दिखा देता है पूरा का पूरा कि आपने क्या क्या किया है साल भर में, कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई शेयर्स लिए हैं, कहीं और से आपकी इनकम आई है, तो ये दो डॉक्यूमेंट जरूर चेक करने चाहिए। इसके अलावा आप सैलरी हैं तो आपका फॉर्म 16 होगा, बिजनेस है तो आपको एक बिजनेस का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, कैपिटल गेन है आपने शेयर्स बेचे हैं प्रॉपर्टी बेची है उसका हिसाब किताब होना चाहिए, और आपने कोई किराए पे मकान दिया है तो किराएदार का पूरा पैन नंबर वगैरह होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट तैयार रखिए, ये सब। अब देखिए इसमें जरूरी बात जो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि रिटर्न के साथ सारे कागजात दस्तावेज लगाने जरूरी नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप कागज अपने पास रखें ही ना, आपके पास कागज होने चाहिए, क्योंकि कल को आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है, आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन और ये फिगर कहाँ से लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग भरपूर तैयारी में जुटे होंगे और वो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करेंगे।
0: बिल्कुल। अच्छा राम जी, आप बैंकिंग क्षेत्र से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड और एफडी पर अगर टीडीएस कटता है तो आईटीआर इसमें कैसे दिखाएंगे?
3: देखिए कि वैसे तो एक आपका टीडीएस जो है एफडी के ऊपर वो 40,000 रुपए तक, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपका नहीं कटेगा, और सीनियर सिटीजन तो 50 की लिमिट है, लेकिन उसके बाद जो टीडीएस है वो ऑटोमेटिकल, जैसे कोहली जी ने बताया कि आपकी फॉर्म्स 26 में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आप उसके अंदर उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, तो उसके ऊपर जो टैक्स टोटल होगा उसमें से वो रिड्यूस हो जाएगा कि ऑलरेडी 10% कट चुका है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो 10% कटेगा, पैन नहीं है तो 20% बैंक काटते हैं
0: जी। और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, अमित झा। जी अमित जी।
4: नमस्कार। सर कोहली सर को नमस्कार। सर
1: नमस्कार अमित जी।
4: सर मार्केट मंत्रा टीम में आते हैं सर आप?
1: अच्छा अच्छा जी जी जी।
4: हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था, आज तो टैक्स से रिलेटेड है, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि हमारी इनकम ना सर मतलब एक फिक्स नहीं है, जैसे हम कोई सरकारी एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि हमारी इतना सैलरी हो एक्स वाई जेड
1: जी,
4: तो सर तो हमारी इनकम कोई मतलब एक फिक्स नहीं कर सकते, मान लीजिए किसी महीने 20,000 हो गया, मान लीजिए किसी महीने 25,000 हो गया, एक आइडिया बता रहा हूँ
1: जी।
4: तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि टैक्स स्लैब में हम नहीं आते, जो सरकार निर्धारित करती है 5 लाख वाले स्लैब पहला 1, 2, 3 में अगर हम नहीं आते हैं तो क्या हम भी टैक्स भर सकते हैं सर? क्या मतलब किस आधार पर हम टैक्स भरेंगे सर?
1: धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल पूछा है फरहद, और ये सवाल बहुत सारे श्रोताओं के मन में होता है, और मैं अमित के इस सवाल के जवाब में एक आंकड़ा देना चाहूंगा जो बताएगा कि जो अमित ने पूछा है वो कैसे। करीब 8 करोड़ से ऊपर साल में रिटर्न्स फाइल होती हैं, पिछले साल का मैं डेटा दे रहा हूं, पर उसमें से जिन रिटर्न्स में टैक्स असल में जाता है उनकी गिनती 2.5-3 करोड़ के आसपास होती है, हालांकि इस साल का डेटा तो अभी जुलाई के बाद निकल कर आएगा और बिलेटेड रिटर्न्स भी उसमें काउंट की जाती हैं। तो देखिए अमित, अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एक तो होता है जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब, जैसे मैंने बताया नए रिजीम में 4 लाख होता है, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख होता है, तो अगर आपकी उससे नीचे है फिर तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, परंतु अगर आपको जो 12 लाख रुपए तक का रिबेट मिलता है, अगर आप उस रिबेट के अंतर्गत आ रहे हैं और फिर आपके टैक्स नहीं आ रहा है तो फिर आपको फाइल करना चाहिए, या फिर आपका कोई टीडीएस कट गया है पर वैसे टैक्सेबल है, मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट करी हुई है, डिविडेंड कहीं से आया उस पर टैक्स कट गया है और उसको आपको वापस लेना पड़ेगा बिकॉज आपका तो टैक्सेबल नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, और रिटर्न फाइल जैसा फारद ने शुरू में बताया था कि आपको वीजा अप्लाई करना है, आपको कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, बहुत सारी जगह आयकर रिटर्न की जरूरत पड़ती है, तो बहुत से लोग मैंने देखा है कि उनको नहीं भी टैक्सेबल होता है तो वो फाइल कर देते हैं, पर टेक्निकली हम देखें तो उनको फिर जरूरी नहीं है। आप जो बता रहे हैं हमें, अगर आपका 12 लाख रुपए से कम का है तो आप 4 लाख से ऊपर है, 12 लाख से कम है तो आप फाइल करिए, पर अगर 4 लाख से भी कम है तो फिर आप बेशक नॉन फाइलिंग केस कर सकते हैं यानी ले सकते हैं ऑप्शन।

0: अपना रिटर्न कंपाइल करते हैं। और मैं तो आज इस शो के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि जितना मुश्किल आप इसको समझते हैं उतना मुश्किल ये है नहीं। और यही शायद आज आकाशवाणी में पब्लिक स्पीक का लक्ष्य भी है कि आपको आपके मन में कोई दुविधा है, कहीं आप फंस गए हैं, कहीं अटक गए, कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हैं तो आप दिल खोल के पूछिए और स्वतः इसको फाइल करें। ये जो सरलीकरण किया गया है पूरा, ये जो इसका सारा डिजिटल प्रोसेस किया गया, आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के आराम से फाइल कर सकते हैं। और बाकायदा रिटर्न का फॉर्म देखने में फरहत बहुत लंबा दिख सकता है।
1: ये बात एकदम सही कह रहे हैं। हर साल हम लोग भरते हैं लेकिन जब भरते हैं तब एक मन में संशय रहता है, डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना कुछ गलती हो जाए। तो
0: और मैं उसी पे आ रहा था, तो जो फॉर्म है उसके नीचे बकायदा एक मैनुअल की तरह सब इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। सिर्फ ये है कि कुछ लोग थोड़ा सा उसको पढ़ने में कई बार आलस कर जाते हैं या घबराते हैं कि पता नहीं हमारे समझ आएगा कि नहीं, पर आपको हैरानी होगी जान के कि बहुत ही आसान है। आप उसको खुद करके देखिए और आपको खुशी होगी, आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगा कि मैंने स्वयं किया। जी,
1: एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, मकसूद हुसैन। जी मकसूद जी,
2: नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मैं मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से।
0: जी हुसैन साहब बताइए।
2: जी मेरा सवाल ये था, मेरा लड़का जनसेवा केंद्र चलाता, तो उस पर ना गांव के अंदर है जनसेवा केंद्र, तो उस पर जो है अंगूठे से जो है गांव के लोगों के जो है पैसे निकालता है
0: जी।
2: तो उसमें जो है कोई इनकम टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स जो निकालने का जो है साल भर में 20-25 लाख तक पहुँच जाता है जी। अगर इनकम टैक्स उस पर लगता है तो हम क्या करें, वो भी उपाय बताए सर जी।
0: नहीं, जनसेवा केंद्र से आपने बताया हुसैन साहब कि वो पैसे निकालता है लोगों के अंगूठा लगा के, तो ये तो किसी और के पैसे निकालता है कि वो अपने लिए पैसे निकालता है? मुझे तो लगता है जैसे किसी और को मदद करता होगा, तो इसके बदले में उनको हुसैन साहब कोई फी वगैरह मिलती होगी, तो जो इनके इसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन मिलता है, फी मिलती है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो लोगों के पैसे वो 20-25 लाख रुपए साल के निकालते हैं अंगूठा लगा के, फरहत मैं ठीक समझ रहा हूँ, तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, पर उसके बदले में आपको अगर कोई कमाई हो रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो आप हुसैन साहब या तो ये बताइए कि उनको आपके बेटे को कितनी कमाई हो रही है, ये लोगों के पैसे हैं आपके पैसे हैं, पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया। तो अगर अगर आप दोबारा कॉल करें या जब भी जुड़ेंगे तो ये जरूर बताइएगा। जी
1: जी बिल्कुल। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। जी रशीद जी।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
3: मैं छतरपुर से मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है
0: जी,
3: तो क्या 12 मतलब 13 लाख हो जाए या 13,50 हो जाए या 12,80 हो जाए, एक सेंटेंस एक शब्द आता है मार्जिन रिलीफ,
0: इसके
3: बारे में थोड़ा सा बता दें। दूसरा ये कि क्या न्यू रिजर्व में सीनियर सिटीजन को बैंक इंटरेस्ट पर कोई छूट है या नहीं, प्लीज सर, थैंक यू।
0: अच्छा, तो सीनियर सिटीजन्स को पहले आपके मैं दूसरे वाले सवाल को लेता हूँ राशिद भाई, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स को आपने कहा बैंक इंटरेस्ट पे, तो एक सेक्शन पहले हुआ करता था 80TTB उसको कहते थे, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रिबेट होता था वो 50,000 तक होता था। तो आप राशिद भाई पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि जो ओल्ड रिजीम है वहां पर डिडक्शंस मिलती हैं इंटरेस्ट की, पर अगर आप राशिद भाई न्यू रिजीम में जाते हैं तो फिर उसमें चाहे सीनियर सिटीजन हो या ना हो कोई उसमें रिलीफ डिडक्शन उसमें अलाउड नहीं है। न्यू रिजीम को लाने का पर्पज ही यही है कि डिडक्शंस को हटा के आपके लिए जो स्लैब्स हैं उनको आसान बना दिया गया है। अब आपका पहला सवाल था कि 12,75,000 से थोड़ा भी ऊपर जाते हैं, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक स्टडी किया सुना, उसमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है, प्रो रेटा कैलकुलेशन करी जाती है। ऐसा नहीं होता कि सीधा 12,75 से आप 5,000 भी ऊपर हुआ तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, उसका मार्जिनल रिलीफ उसकी एक कैलकुलेशन है राशिद भाई। आपके जहन में जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है और वो उस रिलीफ को आप जरूर लीजिएगा, पर आपने बिल्कुल सटीक चीज पूछी है, बहुत बढ़िया चीज पूछी है फरहत इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ही होता
1: जी बिल्कुल। अच्छा राणा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और लोन लेना चाहता है तो क्या आईटीआर के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है?
4: नहीं, आईटीआर के लिए उसको अगर जो भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको 10 नंबर चाहिए, पैन नंबर चाहिए और बहुत सारे जैसे काम रहते हैं जिसके अंदर लाइसेंस चाहिए या कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए उसके लिए। तो इसलिए वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए आजकल GST भी जो है वो जरूरी हो गया है। कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो व्यापार कर रहे हैं तो GST चाहिए, पैन नंबर चाहिए, ये दो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है।
0: और मैं आपकी इजाजत हो फरहत तो इसमें कुछ अश्विनी इजाजत दें तो मैं ऐड कर दूं। क्या होता है कि दिक्कत होती है जब कोई

0: नाम से काम शुरू करने जा रहा है, तो बैंक वाले उसका अकाउंट ही नहीं खोलते हैं कि भाई हमें कोई प्रूफ चाहिए। तो ऐसे में एक हल निकला है, हल ये निकला है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन एक होता है जिसके अंदर एमएसएमईज को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को उद्यम कैटेगरी में लाके और वहां पर वो रजिस्ट्रेशन करा के, तो इसमें बैंक अकाउंट एक प्रूफ ऑफ एड्रेस एक रजिस्ट्रेशन बन जाता है। जीएसटी भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, और उसमें क्योंकि अगर आप मर्चेंडाइज में डील कर रहे हैं बड़े शहर में तो 40 लाख रुपए तक का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है, तो कुछ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन जीएसटी शुरू में लेने में हिचकिचाते हैं जब छोटा काम होता है, जैसे जैसे काम बढ़ता है। तो बिल्कुल पैन नंबर का आपने ठीक बताया, पैन नंबर और उद्यम का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं।
1: लेकिन बैंक वाले, आप कॉलेज बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन बैंक में आप जाओगे करंट अकाउंट खोलने के लिए तो वो जीएसटी नंबर पहले कहेंगे, उनको ये समझाना और बताना वो मतलब बहुत ज्यादा एडमेंट होते हैं। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई इस लिमिट तक उसको जीएसटी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक प्री कंडीशन बता दे।
0: बैंकिंग महकमे से आते हैं, मुझे लगता है आप बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं।
2: आप लोगों से हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक और लिस्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका प्रश्न ले लेते हैं। नागपुर से एनपी सिंह जी।
3: सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: मेरा नाम एनपी सिंह है, मैंने एब्रीवेशन बताई थी नागपुर।
0: अच्छा अच्छा
3: ओके। शरद जी आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली।
0: अच्छा, प्लेजर सर।
3: एज अ डॉक्टर आई नीड अ प्रिसाइज आंसर। एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, दूसरा थोड़ा लेंथी है
0: जी।
3: पहला ये है कि स्क्रूटनी में किन लोगों की आती है, अनियमितता को छोड़कर, ये लॉटरी सिस्टम होता है। दूसरा आई एम सो सॉरी। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या फर्क है, मोटी मोटी बातें बता दें ताकि हम उसका ध्यान रख सकें।
0: अच्छा,
3: और कौन सी ऑप्शन बेटर
0: जी? आपने स्क्रूटनी का पूछा, मैं क्योंकि कुछ श्रोता नए होंगे जिनको जिन्होंने ये शब्द नहीं सुना हुआ है। स्क्रूटनी का मतलब होता है, एक सिस्टम होता है इनकम टैक्स में, उसको हम कैस बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम होता है। तो उसमें जो AI आजकल सॉफ्टवेयर आयकर विभाग यूज करता है, उसमें जिन लोगों की, मैं कुछ एक उदाहरण आपको देता हूँ, जैसे जिन लोगों की आय सडनली एक साल में गिर जाती है, फरहद आप ध्यान दे रहे हैं, तो उनका फिर एकदम से वो उठा लेता है, या किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा लॉस किया है तो वो एकदम से ध्यान अपनी तरफ खींचता है। आपने कुछ और गलती, आप बार बार रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, ये भी तो ये कुछ ग्राउंड होते हैं। आपने सिंह साहब बहुत रास की बात पूछी है, तो मैं कुछ कुछ आपका जिक्र कर रहा हूं। और दूसरा आपने पूछा ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, देखिए ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम में फर्क है। पहली बात तो दोनों रिजीम सभी टैक्स पेयर्स के लिए खुले हुए हैं, ये सभी श्रोताओं के काम की बात है। जो ओल्ड रिजीम है उसमें जब सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो वो उन लोगों के लिए जिनका डिडक्शंस को मिला के, डिडक्शंस को लेने के बाद टैक्स कम आता है। पर अब एक डेटा ये कहता है, और मेरा अपना आकलन ये था कि करीब 75% टैक्स पेयर्स को अब न्यू रिजीम सूट कर रही है अब की बार, जो जैसा लोग बता रहे हैं। तो न्यू रिजीम उनके लिए है जिनको डिडक्शंस नहीं लेनी है, कोई एग्जेम्पशंस नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से रिटर्न, कुछ बहुत थोड़ी सी डिडक्शंस, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है एनपीएस उसको छोड़ के, बाकी सारी डिडक्शंस न्यू रिजीम में हटा दी गई है। तो मैं सलाह ये दूंगा सिंह साहब आपको कि जो भी, और सभी को, कि जो भी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम इधर जाएं कि उधर जाएं कि दुविधा में फंसा हुआ है, उसके लिए आयकर पोर्टल पर ही एक कैलकुलेशन की ऑप्शन है कि आप अपने इनकम को ओल्ड रिजीम में डाल के देखें, न्यू रिजीम में डाल के देखें, जहां पर कम टैक्स आता है उसको आप चूज कर लें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि एक साल आपने ओल्ड रिजीम ली तो अगले साल आपको फिर हमेशा ओल्ड रिजीम ही लेनी है, आप स्विच भी कर सकते हैं। सिर्फ बिजनेस इनकम जिनकी है उनको ये सुविधा एक ही बार दी जाती है कि वो इस पाले से उस पाले में जा सकते हैं, पर बाकी की इनकम्स है तो हर साल आप ओल्ड और न्यू रिजीम के बीच में सिंह साहब चॉइस रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मोटा लंबा डिस्कशन है और भी क्योंकि कॉलर्स हैं, तो मैं थोड़ा सा क्रिस्प रहने की कोशिश कर रहा हूं।
2: अश्विनी जी भी कुछ कहना चाहते हैं?
1: मैं कह रहा हूं कि भाई ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में, जैसे कोहली जी ने कहा कि ओल्ड रिजीम में बहुत सारी डिडक्शंस मिलती थी, तो उसके लिए लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे LIC में है, NSE में है, FD है या इस तरह की, तो वो या PPF है, वो न्यू रिजीम में भी वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, वो उसका बेनिफिट ना लें फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग जो है वो एक आपके लिए अच्छी जरूरत है।
2: बिल्कुल, बैंकिंग क्षेत्र और आयकर विभाग जो एक तरीके से जुड़ गया है आज, तो तीखी जो नोकझोंक है वो हम लोग कर रहे हैं। और एक और प्रश्न हम ले लेते हैं शिमला से राकेश जी का। जी राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला से बात कर रहा हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि जो जो हमारे जो भारतीय नागरिक हैं विदेश में जाते हैं, लेकिन विदेश से जो है अपने परिवार को पैसा भेजता है, तो क्या वो भी, क्या बोलते, आयकर रिटर्न भर सकते हैं? और मेरा ये प्रश्न है।
0: देखिए राकेश जी, जो विदेश में नागरिक जाते हैं और भारत में

0: पैसा भेजते हैं, तो वहां पर अगर कमाई है और अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इसमें आयकर विभाग में दो तीन कैटेगरीज दी हुई हैं, एक को हम एनआरआई कहते हैं, एक को हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं, और एक को हम रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं। तो इसमें कैटेगरी होती है, पर आपके सवाल से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये शख्स जो है भारत से बाहर ही रहते हैं, पर वो पैसा अपने परिवार को यहां पर भेजते हैं। तो खाली पैसा भेजना राकेश जी टैक्स नहीं लगेगा उस पर। हाँ, उस पैसे को भेजने के बाद जिस भी परिवार मेंबर को वो इनकम मिली है, उसको जब वो कहीं निवेश करेंगे, उससे जो इनकम होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। पर उस व्यक्ति को जो एनआरआई है, उसको केवल भारत में भेजने पर टैक्स नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि 180 दिन अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह जाता है तो वो टेक्निकली फिर नॉन रेजिडेंट हो जाता है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कई सारी राकेश जी बारीकियां हैं कि मान लीजिए वो उसकी यहां पर भी इनकम है, फरहद वहां पर भी इनकम है, तो फिर दो देशों के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी होती है जिससे उसको डबल डबल टैक्स ना देना पड़े। पर आपने जो पूछा था, मुझे लगता है मैंने उसका जवाब दे दिया है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न मेरे पास आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। संजीव जी एनजीओ चलाते हैं और पिछले 2 साल से उन्होंने अपना रिटर्न नहीं भरा है, लेकिन वो अब लॉस की वजह से एनजीओ को क्लोज करना चाहते हैं। तो जब वो क्लोज करेंगे तो क्या उनके लिए जो पिछला रिटर्न है वो मतलब भरना जरूरी हो जाएगा?
0: देखिए, अगर तो एनजीओ रजिस्टर्ड है और सरकारी तरीके से रजिस्टर्ड है, फिर तो भरना पड़ेगा। हो सकता है उनसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि एनजीओ फरहद दो तरीके के होते हैं। एक एनजीओ होते हैं जिन्होंने आयकर के अंतर्गत एग्जेम्पशन ली हुई होती है, क्योंकि एनजीओ आप मुनाफे के लिए तो काम करते नहीं हैं, आप तो जन सेवा के लिए करते हैं, तो उनको फिर आयकर के अंतर्गत एक अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके एग्जेम्पशन लेनी पड़ती है। अगर उन्होंने ये ली हुई है फिर तो इनको फाइल करनी पड़ेगी। पर अगर वो आयकर में अनरजिस्टर्ड एनजीओ हैं तो फिर हो सकता है बिना उसके भी वो उसको रैप अप कर पाए। और मैं ये जानकारी दे दूं, आपके सवाल से एक बहुत जरूरी सवाल निकलता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं हमने 3 साल से फाइल ही नहीं करी, तो अब क्या होगा, क्या हम फाइल कर सकते हैं, गलती हो गई, रह गई जाने में अनजाने में। तो उनके लिए आयकर में एक नया प्रावधान किया गया जिसको हम ITRU कहते हैं, ITR अपडेटेड, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। उसमें शर्त यह है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी पिछले साल से, 3 साल की कर सकते हैं, पिछले साल से कम 25%, 2 साल पुरानी है तो 50%, 3 साल पुरानी तो 60% ज्यादा इनकम अगर आप डिक्लेयर करेंगे तब आपको सरकार ये इजाजत देगी कि आप पुरानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वरना पुरानी रिटर्न फाइल नहीं होती है। और वो फिर कंपलसरी, जब अगर ऐसी इनकम पकड़ी जाती है तो उसको फिर हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कैटेगरी में लाके उनको नोटिस वगैरह, थोड़ी सी फिर मुसीबत का सबब बन जाता है।
1: शरद जी, प्रश्नों का दौर जारी है। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, प्रकाश जी। जी प्रकाश जी।
2: भरत जी, आपको दोनों विशेषज्ञों को सहप्रेम नमस्कार। प्रकाश जांगड़ बोल रहा हूँ जयपुर के।
0: सर हमारा भी सब प्रेम,
1: आपको भी बहुत नमस्कार।
2: सर सीधा सवाल मेरा राणा जी से है।
0: जी
2: राणा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग आदमी है और वो अपना छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहता है, छोटा उद्योग जैसे क्या कुटीर उद्योग बोलते, तो उसमें बैंक में क्या सुविधा एक आम जन के और दिव्यांग के बीच कोई फर्क है या क्या, थोड़ा सा इस पर स्पष्ट करें।
3: नहीं, वैसे मेरे हिसाब से दिव्यांग के लिए कोई ऐसी कोई अलग कैटेगरी नहीं है, लेकिन उनको वो सुविधाएं देते हैं, मतलब एडिशनल वो कुछ जो अगर लोन लेना चाहते हैं या इसका कोई भी व्यापार करना चाहते हैं उस तरह का उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है बैंक के अंदर कि भाई वो उस कैटेगरी में लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको कोई फैसिलिटीज मिलती हूँ एडिशनल वैसा कुछ नहीं है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है द्वारका से रमेश जी का। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल फाइलिंग ITR दैट लीड टू इनकम टैक्स नोटिसेस?
0: हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा है। बहुत गलतियों की, कहते हैं सबसे आसान काम दुनिया का फर्द होता है किसी की गलतियां निकालना। और आपने तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया। देखिए, आपने पैन नंबर गलत डाल दिया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, आपने अपने, सबसे बड़ी गलती होती है अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत डाल दिया, तो वहां तो आपको रिफंड आना होगा, तो रिफंड ही आपका नहीं आएगा। इसके अलावा आपने इनकम गलत हेड में डाल दिया और आपने क्या किया, रिटर्न भरते टाइम वेरिफिकेशन नहीं किया। बहुत लंबी फेरिस्ट है गलतियों की, तो मैं आपको सलाह दूंगा अगर आपको लग रहा है कहीं आप गलती कर रहे हैं, जिन भी जिन्होंने भी ये हृदय ने सवाल पूछा है, तो हमसे आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए जहां आपको अंदेशा हो रहा है कि मुझसे गलती हो, क्योंकि गलती की लिस्ट सारा इतनी लंबी है कि फिर बाकी का सारा समय हम गलतियां को बयान करने में चला जाएगा।
1: बिल्कुल नहीं, हम समय अपना
3: ऐड करूंगा इसमें एक कि कुली जी, अगर ये अगर वो मैनुअल भर रहा है तो उसको समस्या आएगी, लेकिन अगर ऑनलाइन वो आजकल बहुत इजी है रिटर्न भरना, वो भरता है और कहीं गलती करता है तो उसकी सबमिट नहीं होती, अप्रूव नहीं होती।
0: नहीं, उसमें राणा जी ये होता है कि कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली ठीक करता है, पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो नहीं भी ठीक करता,
3: नहीं ठीक करता और वो फिर वो उसको आपको अप्रूव या सबमिट नहीं करने देता।
0: नहीं नहीं, वो हो मान लीजिए मैंने फिगर ही अपनी गलत भर दी, इनकम
3: फिगर गलत है लेकिन जैसे अकाउंट नंबर गलत है या कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो उस गलती को वो बताता है कि ये नंबर जो है जाके आप,
0: काश ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं, पर उसमें उसमें बहुत सारी चीजें गलत चली जाती हैं और फिर वो 26 AS बिना देखे फाइल कर दिया, AIS बिना देखे फाइल कर, मैंने कहा ना गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी है।
1: ध्यान से भरिए अपनी हर एक चीज, डॉक्यूमेंट सही तरीके से रख के एक एक चीज डिटेल सही से डालिए तो शायद आप गलती करने से बच जाएंगे। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, अक्षय कुमार जी। अक्षय जी
4: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार
4: पैनल को
0: नमस्कार।
4: सर पिछले साल जिस यूजर आई डी, तो यूजर आई डी से ही होता है, जिस पासवर्ड से हम भरे थे वो पासवर्ड इस बार जब हम भर रहे हैं तो इसमें लिख के आ रहा है कि ये पासवर्ड गलत है। मैं एक दो बार ट्राई किया तो लिख के आ गया कि आपका लॉक कर दिया गया,
0: तो
4: अगर अनलॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए जब हम उसमें ट्राई कर रहे हैं तो बोल रहे हैं आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है, जबकि मैं कई सालों से भर रहा हूँ, रेगुलर आईटीआर भरने वाला।
0: तो अक्षय जी इसमें ये कर सकते हैं आप, वैसे तो फॉरगॉट पासवर्ड का उसमें ऑप्शन होता है जैसे आम होता है, और आपका हो सकता है कि मोबाइल नंबर, नहीं तो तुरंत मोबाइल पे ओटीपी आता है और उसके जरिए आप कर सकते हैं आप, क्योंकि आप फंस गए हैं यहाँ पर, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, एक सीपी ग्राम्स करके वेबसाइट है उसमें आप ये तुरंत कंप्लेंट डालें, और सीपीसी बैंगलोर है उसके फोन नंबर भी है, क्योंकि अब समय कम है, वैसे तो बहुत जल्दी उसकी सुनवाई होती है, तो सीपी ग्राम्स का एक ई निवारण पर, ई निवारण के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए सीपी ग्राम्स में आप जाके डालें, अपना पैन नंबर दें, अपना नाम बताएं और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताएं, तो आपके ऊपर तुरंत कॉल आएगा। या मैं आपको सलाह दूंगा सीपीसी बैंगलोर में फोन नंबर उसका ऑनलाइन दिया हुआ है, आप निकाल के उसको फोन करें, क्योंकि ये तो आप फंस जाएंगे, समय कम है, 11 दिन बचे हैं, पता लगा कि इनका अक्षय जी का जो है मामला अटका रह गया, तो हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर पेनल्टी लगे।
1: जी शरद जी, हमारे पास इस समय बहुत कम है तो इसीलिए हम लोग एक और लिसनर का जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं, हरिद्वार से रवि जवालिया जी। रवि जी
5: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
5: जी, मैं रवि जवालिया हरिद्वार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करो कोई बंदा मतलब इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, तो वो दो तीन साल तक नहीं भर रहा है, तो उस पे क्या गवर्नमेंट क्या पनिशमेंट देगी? सर सर मैं इसे जानना चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
0: अरे अरे रवि जी, आप क्यों क्यों नहीं भर रहे हैं आप, पहले तो ये है, पर चलिए आपने पूछा है तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। बहुत उसमें सख्त पेनल्टी का प्रावधान होता है, उसमें आपके ऊपर टैक्स इवेजन का, मतलब आपकी अगर 12 लाख से ऊपर है आप नहीं भर रहे हैं तो टैक्स इवेजन का शक आपके ऊपर बैठ जाएगा, पेनल्टीज बहुत भारी है। मैं पेनल्टीज बता के फरहद इनको डराना नहीं चाहता हूँ, पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब जागे तब सवेरा, अब जितना हो गया सो हो गया, इस साल से आप फाइल करिए, और पिछले 2 सालों की भी आप रवि आप ITRU जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ITR अपडेटेड फाइल कर सकते हैं, थोड़ा सा टैक्स फालतू जाएगा, कम से कम पेनल्टी से आप अपने आप को बचा पाएंगे।
1: और अब थोड़ा सा समय बचा है तो हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि अपने श्रोताओं से एक अपील आप करें।
0: बस मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि पहली तो मैंने जो बोला उसको दोहराना चाहूंगा कि खुद फाइल करने की कोशिश करें और समय पर फाइल करें, सारे अपने कागजात अपने सामने रख के फाइल करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले एक दफे उसको दोबारा चेक कर लें, और सबसे जरूरी बात 26AS और AIS को एक दफे वेरीफाई कर लें। ऐसा तो नहीं वहां कोई एंट्री है जो आप नहीं दिखा रहे हैं, या कई बार AIS में फर्क ऐसी एंट्री आ जाती है जो आपकी होती नहीं है, किसी ने पैन नंबर गलत डाल दिया किसी और के, तो वहां पर फीडबैक का ऑप्शन होता है, तो 26AS और AIS को बिल्कुल ना भूलें। और एक जरूरी बात जल्दी से बता दूं, ऑटो फिल्ड रिटर्न्स आ रही हैं आजकल अपने आप भरी हुई, उसमें आप उस पे आंख बंद करके यकीन मत करिए, एक दफे उस इन्फॉर्मेशन को चेक जरूर करें।
1: बिल्कुल अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
3: जी बिल्कुल, और इसको हम इग्नोर नहीं करें और वेट नहीं करें कि 31 जुलाई के बाद एक्सटेंड होगा, यानी डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड हो ना हो आप 31 जुलाई लास्ट डेट मान के जो है रिटर्न भरिए।
1: जी, और अगर कोई सवाल हो तो आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी दोनों मेहमानों का कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप स्टूडियो में मौजूद रहे और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब दिया।
0: शुक्रिया।
1: और इसके साथ ही मुझे भी दीजिए इजाजत, और हमने सीखा आज की ITR सिर्फ टैक्स का कागज नहीं है, ये आपकी आर्थिक पहचान भी है, तो जरूर भरें, टाइम से भरें। और इसके साथ ही फरहत नाज को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।

0: अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
2: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्तीय संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धनपालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी

0: सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। मान्य सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर यह अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर 1, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
1: प्रश्न नंबर 1,
2: प्रश्न संख्या 1, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
3: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के दोड़िया, कोकड़ा और वार्ली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है?
4: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से देंगे? मोदी जी ने प्राण दिलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण दिलवाते हुए गुलामी को, मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मेनू है। ये मेनू को कमीशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डीजल डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च जीवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा। और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैन्युस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुके हैं और उसमें से 3,74,000 मैन्युस्क्रिप्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी उसको भी सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
0: सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको प्रयास में दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आंधी फिल्म से लिया है। आवाज़ें लता मंगेशकर, किशोर कुमार की है। गुलजार की शब्द रचना, संगीत आर डी बर्मन का।

लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज़ में गाए मौसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए अब सुनिए कमलेश तिवारी का राग यमन में ख्याल गायन। तबले पर आपके साथ संगत की है ध्यानेश्वर देशमुख ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे कमलेश तिवारी का राग यमन में ख्याल गायन। तबले पर संगत की थी ध्यानेश्वर देशमुख ने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को है। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the NEET paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to six former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
5: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the